मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 34 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हर सुबह भगवान का संदेश है, उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को फिर से आवाज दो। आज का दिन किसी और जैसा नहीं, क्योंकि कल से बेहतर बनने का निर्णय जो हम लेंगे आज,

नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। चाहे धूप हो या बारिश, किसान कभी हार नहीं मानते। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। चाहे धूप हो या बारिश, किसान कभी हार नहीं मानते। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। इन्हीं किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर टी दामोदरन से की गई भेंटवार्ता। विषय है केला की उन्नत बागवानी। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, केला की व्यावसायिक बागवानी की जहां योजना है इस साल, तो इसकी उन्नत बागवानी कैसे करें, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से निदेशक डॉक्टर टी दामोदरन साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां केला की व्यावसायिक बागवानी शुरू करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: नमस्कार। अगर केले के बात आते हैं, पहला है समय का रोपण, कब किस समय हमें करना है और कौन सी खेत पे करना है। अगर खेत है पूरा यूपी में आप लेंगे, हर खेत पे कर सकता है उसर को छोड़ के, बाकी सब खेतों में कर सकता है। रोपण करने का समय है जुलाई का पहले हफ्ते यानी जून का लास्ट महीने, जब मानसून शुरू होता है उस समय से लेके किसी भी अवकात पर जुलाई 31 तक पूरा रोपण खत्म करना चाहिए हमें। उसका आगे अगर करेंगे फिर सर्दियों में दिक्कत आ जाएगा, फिर आप अगले साल का जो उपज है उसमें आपको कटाई आ जाएंगे।
1: शुरुआत करें कि खेत का चुनाव, जैसे आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में संभावना है, लेकिन खेत कुछ खास हो, मिट्टी कैसी हो, खेत की तैयारी में क्या कुछ खास करना?
2: बालुई मिट्टी वाला को हमें केले का खेती के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बालुई मिट्टी होगा तो आपका पानी रुक नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं इस मौसम में कितना गर्मियां हमारा इस सुपोषण क्षेत्र में होता है। अगर इस गर्मियों में अगर पानी दे के किसान, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो भी खेत चुने बालुई का अलावा वहां पे कर सकते हैं। अति आवश्यक है किसान का पास सिंचाई का सावधान भी होना चाहिए, और हर बार किसान सिंचाई करने के लिए उनके पास पूरा सुविधाएं अपने पास होना चाहिए।
1: प्रजाति कुछ खास?
2: प्रजाति G9 ग्रैंड 9 करके एक प्रजाति है, इसी को पूरा यूपी में हम लोग करते हैं।
1: टिशू कल्चर
2: का के, और पौधे भी लगाना है, टिशू पौधे ही लगाना पड़ता है। और किसान कृपया आप जो शक्कर वाला जो लेते हैं उसको आप जरूर को दूरी रखिए, सिर्फ टिशू वाला पाउडर ले लीजिए।
1: डॉक्टर साहब, कुछ रोग दोक और हानिकारक कीटों की समस्या रहती है, तो शुरू में ही किसान बागवान भाई क्या कुछ तैयारी करें कि उनका जो भी पौध है वो रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे?
2: इस सिलसिले पे अगर किसान भाई बहनों को करना है, क्योंकि खास तौर पे इस क्षेत्र पे केले का मिजा के संबंधित जो रोग है, आपका उकटा रोग है, बहुत काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है,
1: पनामा विल्ट
2: है। और जो भी है ये, तो इसके अलावा भी जो आपका बैक्टीरियल एरविनिया विल्ट बोलते हैं, उस पर जो हम लोग बोलते हैं राइजोम राट बोलते हैं या कॉलर राट बोलते हैं, ये ज्यादातर किसानों में, एको पेड़ को भी ये छोड़ते नहीं है। और जो मेड़ के नीचे जो आपका नालियां जाएंगे उसी में आपको पानी सिंचाई में देना पड़ेगा, सीधा खेत में नहीं जाना। अगर पूरा आप मेड़ में दे देंगे ये बीमारी आ जाएगा। और पौधे चुनने में भी कम से कम 5 या 4 पत्तियां उसका ऊपर होना चाहिए, उसी पौधे को आप चुनना पड़ेगा। और अगर किसान का अगल बगल का क्षेत्र पे पनामा रोग का प्रभावित क्षेत्र में, जैसे आपका अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया या आपका अंबेडकर नगर हो गया और लखीमपुर हो गया, इधर महाराजगंज, इस तरह पे जहां पे रोग का ज्यादा खतरनाक संभावना है, वहां किसान कुछ हमारा फ्यूसिकांट का दवाई मिलते हैं, एक मार्केट में भी मिलता है और हमारा पास से भी मिलता है, उस दवाई को जो पौधे है उसमें 1% का ड्रंचिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 10 ml 1 लीटर पानी से मात्र के इसका करके पूरा पौधे को ड्रंचिंग करा के तब मेड़ में लगाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे केला की उन्नत बागवानी के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: 9198149968 9198149968। अगर केले का खेती करना है, आप

0: आपको मेड़ पे पौधे लगाना है, और मेड़ पे लगाने के बाद गड्ढे में फ्यूसिकांड का दवाई का डंसिंग करना पड़ेगा, और तीसरा और पांचवा और सातवां महीने में फ्यूसिकांड का 3% घोल का आप बनवा के इसको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा प्रति पौधे। पांचवा सातवां महीना में कम से कम प्रति पौधे में 1 लीटर का फ्यूसिकांड दवाई देना पड़ेगा।
1: डॉक्टर टी दामोदरन साहब आज आप कार्यक्रम में आए और केला की उन्नत बागवानी कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केला की उन्नत बागवानी विषय पर डॉक्टर टी दामोदरन से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब भी हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए रास्ता खोलते हैं और ये सब एक छोटा सा सुविचार सिखा जाता है। आज के सुविचार में सुनिए साधना के बारे में। स्वर शीला मिश्रा का है।
3: शरीर की महिमा विचित्र है, कितनी शक्तियाँ इसके भीतर निहित हैं इसका हमें पूर्णतया बोध नहीं होता और न उन शक्तियों को प्रकट करने पर हमारा ध्यान ही होता है। लोग तो ऐश आराम में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपने अंदर की छिपी शक्तियों को विकसित करने का साधन करना नहीं चाहते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को क्षेत्र कहा है। क्षेत्र को भाषा में खेत कहते हैं। खेत का मतलब ये कि जो बीज उसमें हम बोएंगे वही जमेगा और फल पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो इसके लिए जैसा खेत बनाया जाएगा, जैसी खाद दी जाएगी, बीज भी वैसा ही पुष्ट और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करेगा। यदि खेत अच्छा नहीं बनाया जाएगा और उसमें उचित खाद आदि नहीं दी जाएगी तो बीज की वृद्धि न होगी। ठीक वही दशा हमारे शरीर की भी है। इस शरीर के साथ जैसा संसर्ग बनाया जाएगा उसका प्रतिफल भी वैसा ही होगा। इसलिए इस बात को सदा स्मरण रखना चाहिए कि जिन जिन लोगों से या जिस प्रकार की विचारधारा से हम प्रभावित होंगे तदनुकूल ही हमारी अंतर्निहित शक्तियों का विकास होगा। जमीन में कोई व्यक्ति घास नहीं बोता, किंतु उचित बुआई और खाद के अभाव में जैसे घास कांटे आदि अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं वही दशा हमारे शरीर की भी समझनी चाहिए। अच्छे बीज और अच्छे फल के लिए जिस प्रकार अच्छी जुताई और खाद की आवश्यकता है उसी प्रकार इस शरीर द्वारा उचित गुणों के विकास और प्रसार के लिए इसमें अच्छा संसर्ग और अच्छी साधनाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं सब साधनाओं और व्यवस्थाओं को जो करते हैं वे साधक कहलाते हैं। साधना क्या है? वो एक तरह की ताले की कुंजी है। मान लीजिए किसी घर में ताला लगा है, जब तक ताला खोलकर हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उस घर में क्या रखा है हम जान नहीं सकते। घर में प्रवेश के लिए जैसे ताला खोलना आवश्यक है और ताला खोलने के लिए जैसे कुंजी की आवश्यकता है वैसे ही इस शरीर के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है उसको जानने के लिए अर्थात शरीर रूपी ताले को खोलने के लिए साधना रूपी कुंजी की आवश्यकता है। साधना द्वारा ही हम इस शरीर की अंतर्निहित शक्तियों का प्रादुर्भाव कर सकते हैं और तब हम समझ सकते हैं कि परमात्मा ने अपनी कृपा द्वारा इस मानव शरीर में हमें क्या क्या प्रदान करके रख छोड़ा है और उसके द्वारा हम इस विश्व सृष्टि में क्या नहीं कर सकते। भगवान ने अपनी लीला से इस जीवात्मा को ऐसा बांध दिया है कि उससे निकलना इस जीवात्मा के लिए अत्यंत दुष्कर हो गया है। इसी लीला को कोई माया या कोई कोई प्रकृति के नाम से पुकारता है। परमात्मा ने हमारे चारों ओर माया का ऐसा आवरण डाल रखा है कि उससे निकलकर परमात्मा के निकट पहुंचना इस जीवात्मा के लिए असंभव सा हो गया है। परमात्मा क्या है, माया क्या है, जीवात्मा क्या है, इसकी यथार्थता को जानना अत्यंत कठिन है।

0: आज के सुविचार में आप सुन रही थी साधना के बारे में, स्वर शीला मिश्रा का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

शिव का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी पावन यात्रा है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को स्वर देता है कि जहाँ शिव का वास है वहीं आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है।

मनुष्य चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे किसी अदृश्य शक्ति के सहारे की आवश्यकता महसूस होती है और वो तब ईश्वर के शरण में जाकर कहता है, तुम ही हमारे दुख हरने वाले हो और सही रास्ता दिखाने वाले हो।

माँ अम्बे केवल शक्ति की ही देवी नहीं बल्कि करुणा, ममता और संरक्षण का स्वरूप भी हैं। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों, भय और दुखों से घिर जाता है, तब वह माँ के चरणों में आकर सहारा खोजता है।

जीवन में शांति, सत्य और सदाचार पाने के लिए राम नाम और राम के आदर्शों का अनुसरण आवश्यक है। जब हम राम नाम का गुणगान करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन के उन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास भी करते हैं।

ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम, निस्वार्थ, निर्मल और पूर्ण समर्पण वाला प्रेम। जब मन में अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल भक्ति बचती है, तभी प्रभु का सच्चा अनुभव होता है।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए अब हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 203।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगावकर और रविंद्र साठे। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप सभी श्रोताओं का नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ रहना कोई विकल्प नहीं बल्कि सुखी और सफल जीवन की अनिवार्य शर्त है। आज की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलौंजी छोटे दाने बड़े काम के, ये विषय है आज की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। जानकारी दे रही हैं नीना सुनकर।
1: और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीज की जो आकार में तो बहुत छोटा होता है लेकिन इसके गुण इतने व्यापक हैं कि इसे कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में चमत्कारी औषधि तक कहा गया है। हम बात कर रहे हैं कलौंजी की, जिसे कई लोग काला जीरा या निजेला भी कहते हैं। ये वही बीज है जिसे आपने नान की सतह पर या बिस्किट्स पर या अचारों में देखा होगा, पर शायद इसके औषधीय गुणों की जानकारी हर किसी को नहीं होती है। कलौंजी का इस्तेमाल भारतीय रसोई में बहुत पुराना है। इसके बीज छोटे, काले और थोड़े तीखे होते हैं। इसे जब तेल में तड़का लगाकर किसी सब्जी या दाल में डाला जाता है तो उसका स्वाद एकदम बदल जाता है। कुछ कुछ प्याज और सरसों के स्वाद के बीज की सुगंध। लेकिन कलौंजी का असली कमाल स्वाद में नहीं बल्कि सेहत में है। ये बीज आयुर्वेद, यूनानी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी विशेष स्थान रखता है। कलौंजी में पाए जाने वाले सक्रिय तत्वों की बात करें तो इसमें थाइमोकिनोन नामक एक यौगिक पाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक शोधों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है। ये यौगिक शरीर के अंदर होने वाली सूजन को कम करता है और कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसलिए ये हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों में भी लाभकारी माना जाता है। शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी कलौंजी मदद करती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये एक नेचुरल सहायक के रूप में काम कर सकती है। कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि कलौंजी का नियमित सेवन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करने में सहायक होता है। साथ ही ये इंसुलिन की संवेदनशीलता को भी सुधारता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से शर्करा को नियंत्रित कर पाता है। अब हम बात करेंगे पाचन की, तो कलौंजी यहाँ भी पीछे नहीं है। ये अपच, गैस, पेट फूलना और भूख न लगने जैसी समस्याओं में बेहद असरदार मानी जाती है। सुबह खाली पेट अगर आप एक चुटकी कलौंजी को गुनगुने पानी या शहद के साथ लें तो पेट साफ रहता है और दिन भर ऊर्जा भी बनी रहती है। यही वजह है कि पुराने समय में इसे सुबह सुबह लेने की सलाह दी जाती थी, न सिर्फ शरीर को भीतर से साफ करने के लिए बल्कि दिन भर की थकान से लड़ने के लिए भी। कलौंजी बालों और त्वचा के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। कलौंजी के तेल को आप नारियल तेल या ऑलिव ऑयल में मिलाकर लगाएं तो ये बालों को झड़ने से रोकता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों में चमक लाता है। वहीं चेहरे की त्वचा पर अगर हल्के से कलौंजी के पेस्ट का प्रयोग किया जाए तो ये मुहासों, झाइयों और दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है। आयुर्वेद में कलौंजी को संजीवनी बूटी जैसा दर्जा दिया गया है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर मौसमी संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देता है, खासकर जब मौसम बदल रहा हो, बारिश के बाद, सर्दी या गर्मियों के मौसम में। तब कलौंजी का नियमित सेवन शरीर को बाहरी वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी, जुकाम, गला खराब या थकावट की शिकायत होती है, उनके लिए ये बीज किसी वरदान से कम नहीं है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कलौंजी का उपयोग हमारे पुराने देसी नुस्खों का हिस्सा रहा है। दादी नानी की रसोई में जब बच्चों को पेट दर्द होता था या खांसी जुकाम की शिकायत होती थी तो कलौंजी का पानी, कलौंजी और अजवाइन का काढ़ा या कलौंजी का तेल, ये सब उपचारों में शामिल होते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये उपाय असर भी करते थे, क्योंकि उनके पीछे वर्षों की परंपरा और अनुभव था। आजकल कलौंजी के कैप्सूल और सप्लीमेंट्स भी बाजार में मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपनी रसोई में सीधे उपयोग करते हैं, जैसे कि अचार में, पराठे की लोई में, सब्जी में तड़का लगाते हुए या चाय में चुटकी भर डालते हुए, तो इसका प्रभाव और अधिक प्राकृतिक होता है। हालांकि किसी भी चीज की तरह कलौंजी का सेवन भी संतुलन में होना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में लेने से शरीर में गर्मी पैदा कर सकती है या कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए यदि किसी को विशेष शारीरिक स्थिति है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित लोग,

0: रोग तो वे इसका सेवन डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही करें। श्रोताओं, ये छोटा सा बीज हमें ये सिखाता है कि सेहतमंद रहने के लिए कोई बहुत महंगी दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं होते। हमारी देसी रसोई में ही अनगिनत चमत्कारी तत्व छिपे हैं, जो यदि सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो वे न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाते हैं। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।
1: कलोन जी, छोटे दाने बड़े काम के, इस विषय पर अभी आप नीना सुनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रही थी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी, रात 11:10 पर। विषय है विदेश नीति। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:00 डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह का काव्य पाठ आप सुनेंगे। रात 10:00 नाटक प्रसारित होगा आज।

लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी। रात 11:10 पर विषय है विदेश नीति। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 डॉ. रविन्द्र प्रताप सिंह का काव्य पाठ आप सुनेंगे। रात 10 नाटक प्रसारित होगा आस्था। लेखक हैं के अग्रवाल। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव। निर्देशक हैं अतिश श्रीवास्तव। उर्दू कार्यक्रम में 9:30 पर समाज फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश। सुनिएगा खसूसी प्रोग्राम इब्ने इंशा शहरयार और गोपी चंद नारंग पर मबनी। सदाकार हैं आसिफ इकबाल और शमशुल आरफीन। जिले के अलचल कार्यक्रम में 9:15 पर आज आप सुनेंगे देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर और रात 10:30 पर रविनाथ मिश्र का तबला वादन प्रसारित होगा। गरांगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर आनंद कुमार सिंह की वार्ता बहने सुनेंगी बुजुर्गों के कानूनी अधिकार। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में गन्ने में कृषि रक्षा कार्य विषय पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। इसमें डॉक्टर मनीष कुमार पत्रकारिता की शिक्षा और रोजगार विषय पर जानकारी देंगे। इनसे भेंट की है डॉक्टर नगेन्द्र सिंह रघुवंशी ने। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर संकल्प वाणी @1947 सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण समरस भारत का संकल्प ओबी पर आधारित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर डॉक्टर स्मृति जैन की वार्ता होगी। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर संतोष कुमार यादव से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। विषय है पशुओं में नस्ल सुधार। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें रेबीज से बचाओ इस विषय पर सुनील यादव की वार्ता आप सुनेंगे। साथ ही डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा की वार्ता होगी किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहे सचेत। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर वंदना शुक्ला एवं रत्ना शुक्ला के गाए अवधि युगल गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर संजय श्रीवास्तव के गाए भजन आप सुनेंगे। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा 11:00 से। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

को वृद्ध जनों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और असम्मान के प्रति जागरूक किया जा सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन कंधों ने हमारी जिम्मेदारियां उठाई और जिन अनुभवों ने हमारे जीवन को दिशा दी, आज उन्हें सम्मान, सुरक्षा और स्नेह की आवश्यकता है। वृद्धावस्था जीवन का वो पड़ाव है जहां व्यक्ति अनुभवों की एक विशाल पूंजी लेकर खड़ा होता है। उसके पास जीवन के संघर्षों की कहानियां होती हैं, सफलता और असफलता से मिले सबक होते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य मार्गदर्शन होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आधुनिक जीवन की व्यस्तता, बदलती पारिवारिक संरचना और बढ़ती भौतिकता के कारण अनेक वृद्धजन अकेलेपन, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें सम्मान नहीं मिलता, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है और उनके अनुभवों को महत्व नहीं दिया जाता। यही उपेक्षा धीरे धीरे दुर्व्यवहार का रूप ले लेती है। वृद्धजन दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं, किसी बुजुर्ग को अपमानित करना, उसकी बातों को अनसुना करना, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता छीन लेना, उसे अकेला छोड़ देना या उसकी भावनाओं की उपेक्षा करना भी दुर्व्यवहार के रूप हैं। कई बार वृद्धजन अपने ही घर में स्वयं को अनचाहा महसूस करने लगते हैं। वे अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता रहती है। ऐसे में उनका मौन दर्द समाज की संवेदनहीनता का दर्पण बन जाता है। हमारे भारतीय संस्कारों में माता पिता और बुजुर्गों को देवतुल्य माना गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की शिक्षा हमें बचपन से दी जाती है। संयुक्त परिवारों की परंपरा में बुजुर्ग परिवार के मार्गदर्शक और निर्णयों के केंद्र हुआ करते हैं। उनके अनुभवों से घर में स्थिरता और संतुलन बना रहता था। आज भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आदर का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। तकनीक और आधुनिकता का विकास तभी सार्थक है जब उसमें मानवीय संवेदनाएं भी जीवित रहें। प्रिय श्रोताओं, वृद्धजनों की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि अपनापन और सम्मान है। कई बार एक मुस्कान, कुछ मिनटों की बातचीत और उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना भी उनके जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। जब परिवार के सदस्य उनके साथ समय बिताते हैं, उनके अनुभवों को महत्व देते हैं और उन्हें निर्णयों में शामिल करते हैं, तब वे स्वयं को उपयोगी और सम्मानित महसूस करते हैं। यह भावना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में अकेलापन वृद्धजनों की एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। बच्चे रोजगार या शिक्षा के लिए दूर चले जाते हैं, जीवन की व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं और बुजुर्ग घर में अकेले रह जाते हैं। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पड़ोसी, मित्र, सामाजिक संगठन और युवा वर्ग यदि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं तो वृद्धजनों का जीवन अधिक सुखद और सुरक्षित बनाया जा सकता है। एक समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने कमजोर और वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल सामाजिक सरोकार का विषय नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं, संस्कारों और मानवता की भी परीक्षा है। ये विषय है विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है ताकि समाज

विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार व्यवस्था दिवस हमें यह संदेश देता है कि वृद्धजनों की सुरक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं, यह प्रत्येक परिवार, प्रत्येक नागरिक और पूरे समाज का दायित्व है। हम अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां बुजुर्ग स्वयं को सम्मानित, सुरक्षित और महसूस करें कि वे किसी के साथ हैं। उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी के लिए भी बुजुर्ग प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके अनुभव हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटना सिखाते हैं। उनके संघर्षों की कहानियां हमें धैर्य, परिश्रम और संयम का महत्व समझाती हैं। यदि हम उनके ज्ञान और अनुभव का सम्मान करेंगे तो यह केवल उनका सम्मान नहीं होगा बल्कि हमारी संस्कृति और मूल्यों का भी सम्मान।

मन होगा। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम अपने परिवार, घर और समाज में किसी भी वृद्धजन को उपेक्षित महसूस नहीं होने देंगे। हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तथा उन्हें प्रेम और अपनापन देंगे। याद रखिए, आज जो युवा है वह कल वृद्ध होगा, इसीलिए वृद्धजनों के प्रति हमारा व्यवहार आने वाले समाज की दिशा तय करता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि वृद्धजन हमारे अतीत की स्मृतियां हैं, वर्तमान की सीख और भविष्य की प्रेरणा। उनके चेहरे की मुस्कान ही किसी सभ्य समाज की पहचान है। आइए विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम सभी मिलकर यह संदेश फैलाएं कि सम्मान, सुरक्षा और स्नेह हर वृद्धजन का अधिकार है। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के 2 चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में

0: ही लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
2: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम

0: यूपी, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
2: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अम्बेडकर नगर जिले में पहुँचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता।

0: फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए रविनाथ मिश्र का तबला वादन, ताल है 3 ताल।

0: अभी आप रविनाथ मिश्र का तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी अब यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव

0: भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है।

0: भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षक की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कर्ब कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी

0: टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिसे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पिरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वो स्लोवाकिया के सदर पीटर पिलिगिरिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदु किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलावामी अमन और सलामती, बाहमी इकतसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम

0: रहा है।
1: 19वां मुंबई बैन अलाक्वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाती जुमरे में 52 बैन अलाक्वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाती जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैनुल अक्वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी की खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 01-1-2-3-3-1-0-4-8-1-0-1-1-2-3-7-1-7-1-1-7-1-0-6। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों महققین और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जौर में नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बताते हैं। आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

है हमारे पास सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और परिवार के सभी लोग। और अगला मेल है हमारे पास सनावत से ही मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादा खत्री। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फिल्म है अपनापन, आवाज़ है किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगला मेल है हमारे पास मेरठ कैंट से। दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ठिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई का। एक मेल है हमारे पास छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगर, पराग टेलर, पुना रामदेव देवांगन, कृष्णा देवांगन और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी सुनना चाहती हैं सदमा फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। हमारे पास मेल है लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां का, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। और एक मेल है हमारे पास जालौन उत्तर प्रदेश से सतीन चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलोक सुन चंसोलिया का। आप सभी सुनना चाहते हैं नाइट इन लंदन फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

जनपद हरदोई से विजयलक्ष्मी कुशवाहा सुनना चाहती हैं। हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजा है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

साथियों, आपके मेल लगातार हमें मिल रहे हैं, तो अपना ऐसा प्यार जो है वो ऐसे ही बनाए रखिएगा। और ये देखिए, अगला मेल हमारे पास है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का। ये सुनना चाहते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक और मेल है फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और राहुल शर्मा का। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

फिल्म के लिए हमारे पास मेल आया है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इस गीत को सुनने के लिए एक और मेले हमारे पास रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का।

श्रोताओं, आपके मेल इतने सारे हमारे पास आते हैं, इससे हमें पता लगता है कि आप इस कार्यक्रम को कितना रिस्पांस दे रहे हैं और आपका प्यार आकाशवाणी के लिए कितना है। तो इसी तरह हमें मेल भेजते रहिए, लेकिन आज इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत से दीजिए, अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है बृजेश चंद्र शर्मा का।
2: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 तीन दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजना को स्वसमय पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित तीन तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले जिससे कि आम जन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
3: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी

0: से चल रहा है ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जुड़कर फेस कर सके।
1: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौध रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
1: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गयी। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ कार्य करें जिससे कि योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावनाओं के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है, इसके लिए शिक्षक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दुना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों, मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। NDRF के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए NDRF एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
5: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 की टीम है बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि

0: से एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
1: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के दो युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम हराया है। गाजीपुर के नवली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव, मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों, पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
2: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
1: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज लो मैं आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ मैं शम्सुल आरफीन और मेरे साथ हैं
2: आसिफ इकबाल।
1: सलाम अर्ज है।

0: पैदा होने वाला वो बच्चा जो आगे चलकर इब्ने इंशा के नाम से मशहूर होने वाला है। पैदाइश मौसम गर्मा में, लेकिन उसकी फन तहरीर आवाम के दिलों में एक अजीब ठंडक महसूस कराती है।
1: इंशा जब सफरनामे लिखते हैं तो कारी को लगता है जैसे कोई दोस्त सफर के किस्से सुना रहा हो, और जब शायरी या मिजाह लिखते हैं तो उसमें एक अलग तरह का लुत्फ होता है।
0: जी हाँ बिल्कुल, उनकी मशहूर गजल के चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, उस रोज जो उनको देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है, उस रोज जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या, उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सके पर छू न सके, जिसे देख सके पर छू न सके वो दौलत क्या, वो

0: परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सामिन, ये वो शेर है जिसने न जाने कितने आशिकों की जबान पर जगह पाई, कितनी महफिलों को रौनक बख्शी और कितने दिलों को अपनी सादगी और हुनर से मशहूर किया। और सामिन, क्या आपको पता है इस शेर के शायर कौन है?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, इस शेर के तख्लीक कार हैं जनाब शहरयार साहब। ये वही शहरयार साहब हैं जिनका पूरा नाम अखलाक मोहम्मद खान था।
0: 16 जून 1936 को वो उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पैदा हुए। उनके वालिद पुलिस अफसर थे और नज्मो जब्त के कायल थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी मुलाजमत अख्तियार करे, लेकिन शहरयार का दिल किताबों और अशार में लगता था। सामिन, कबल इससे कि शहरयार से मुतालिक मजीद गुफ्तगू करें, मुलाहिजा फरमाएं उन्हीं के चंद मशहूर अशार।
1: जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
0: स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का।
1: सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। वालिद की सरकारी मुलाजमत थी, इसलिए उनका अक्सर ट्रांसफर होता रहता था, जिसकी वजह से उनका बचपन हरदोई, बुलंदशहर और कानपुर में गुजरा।
0: और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए और यहीं से उर्दू में एमए किया। उसके बाद यहीं शोबाए उर्दू में मुदर्रिस के फराइज अंजाम दिए। 1996 में प्रोफेसर बन के रिटायर हुए। अलीगढ़ उनकी पहचान बन गया।
1: अखलाक मोहम्मद खान का नाम उनके दोस्तों ने बदल दिया और शहरयार कहने लगे। वैसे शहरयार के मानी बादशाह होता है। वो अक्सर कहा करते थे कि नाम बड़ा जरूर है पर आदमी फकीर हूँ।
0: उनके शेरी सफर का आगाज 20 साल की उम्र में हुआ। 1956 में उन्होंने पहली गजल कही। 1960 से 1970 की दहाइयों में शहरयार के कई शेरी मजमुए मंजरे आम पर आए।
1: इसमें आजम 1965, सातवां दर 1969, हिजर के मौसम 1978 और ख्वाब के दर बंद हैं 1987 शाया हुआ। इन मजमुओं ने शहरयार को मकबूल शायर बना दिया और ख्वाब के दर बंद हैं पर तो बाकायदा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला।
0: इस तरह अदबी दुनिया में उनका मकाम मुस्तहकम हो चुका था, मगर शोहरत का एक नया दरवाजा खुलना अभी बाकी था। दरअसल बॉलीवुड में जब मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म गमन बनाई तो उसके नगमे शहरयार से लिखवाए। उसके बाद इन दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई।
1: और फिर साल 1981 में फिल्म उमराव जान आई। इस फिल्म ने शहरयार को घर घर पहुंचा दिया।

0: जी हाँ, ये नगमा इतना खूबसूरत है कि अपने जमाने में इसने धूम मचा दिया। और मजेदार बात यह है कि आज भी ये नगमा लोगों की जबान पर मचल जाता है और वो गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं।
1: इस मशहूर शायर को अदबी खिदमात के लिए बहुत सारे एजाजात से नवाजा गया, जिसमें सबसे बड़ा अदबी एजाज ज्ञानपीठ एजाज अता किया गया।
0: उम्र के आखिरी बरसों में सेहत के मसाइल ने उन्हें घेर लिया, मगर कलम और फिक्र का रिश्ता बरकरार रहा। उनके अशआर मुसलसल पढ़े और सुने जाते रहे।

0: 13 फरवरी 2012 का दिन उर्दू अदब के लिए बेहद खसारे का दिन साबित हुआ।
1: जी हाँ, 13 फरवरी 2012 के दिन अलीगढ़ में अदब का दरख्शां चराग बुझ गया। शहरयार 75 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए।
0: सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम लफ्ज़ों के तीन जादूगर इब्ने इंशा, गोपी चन्नारंग और शहरयार। कैसा लगा आपको? अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
1: आप अगर हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन
0: और आसिफ इकबाल को दें इजाज़त।
1: आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।

मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के गाए अवधी युगल गीत। लीजिए इनके स्वरों में सबसे पहले सुनिए ये देवी गीत।

अभी आपने सुना वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के युगल स्वरों में ये देवी गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इन्हीं की आवाज़ में ये खेमटा।

0: टप टप टप के पसिनवा। अभी आपने वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के युगल स्वरों में ये खेमटा सुना। संगत कर रहे थे नाल पर अनिल कुमार मिश्र, हारमोनियम पर थे चंदेश पांडे, बांसुरी पर साध्या दिगंत सैकियानी और साइड रिदम पर थे बाल कृष्ण शर्मा। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। अजनबी फिल्म से आवाज है किशोर कुमार की।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू और बर्मिंघम में एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। समाचार अब विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने का समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: इधर भारतीय शेयर बाजारों में भी आज जबरदस्त तेजी का रुख है। सेंसेक्स 1197 अंक की तेजी के साथ 76725.27 अंक पर खुला। निफ्टी भी 339.15 की बढ़त के साथ 23984.85 अंक पर खुला। विश्व नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और

0: से पश्चिम एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया। श्री गुतरश ने के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की भूमिका की सराहना की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समझौते को राजनयिक उपलब्धि बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समझौता जल्दी लागू करने और होर्मुज जलडमरू मध्य में निर्बाध नौवहन फिर शुरू करने की अपील की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में आज नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। पिछले दशक के दौरान हवाई अड्डा अवसंरचना विकास में 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

0: उत्सव MIIF आज से शुरू हो गया। औपचारिक उद्घाटन समारोह शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जबकि फिल्मों की स्क्रीनिंग सुबह से ही शुरू हो गई है।
1: गैर फीचर फिल्मों के बहुप्रतीक्षित द्विवार्षिक फिल्म महोत्सव मिफ का उद्घाटन कॉर्डल बारकर द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फिल्म गुड लक टू यू ऑल, अरविंद बेलार्मिनो और कायला डैनियल रोमेरो द्वारा निर्देशित लघु कथा फिल्म अगापीतो तथा सारा डोसा द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइम एंड वाटर के प्रदर्शन के साथ होगा। प्रख्यात फिल्म निर्माता डेविड एटनबरो को सेंटेनरी ट्रिब्यूट के अंतर्गत उनकी दो फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। 19वें मिफ में 10 मास्टर क्लास और 5 ओपन फोरम चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष के संस्करण में 2 नई क्यूरेटेड श्रेणियां मराठी फिल्म्स और इकोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट भी शामिल की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ के रोमांचक मैच में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू। और बर्मिंगम के एस्बेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
4: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
3: एक ऐसा कार्यक्रम
4: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
3: विकास की बातें, संगीत की मिठास
4: और एक नए भारत की आवाज़।
3: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
4: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
8: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4:00 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आप सुन रहे हैं

आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। अब हम आपको सुनवाते हैं चित्रपट सी में कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है लाइफ इन अ मेट्रो 2। आवाजें हैं सचेत टंडन और आकांक्षा की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आइए अब सुनिए परमाणु फिल्म का गीत यासर देसाई और जीत गांगुली की आवाजों में।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: वजीर फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

आइए अब सुनते हैं यासर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में शादी में जरूर आना फिल्म का ये गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
1: 8700014242।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है फोन एन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। फिल्म संगीत का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में अपने दिल की बात हम तक पहुंचाने के लिए डायल करिए नंबर 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। कीजिए हमसे अपने दिल की बातें, सुनिए कुछ हमारे दिल की भी बातें और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे एक नियमित श्रोता से, जो कि हैं नागदा उज्जैन से। हेलो
4: दीप्ति जी, नमस्ते।
0: नमस्ते प्रेम सिंह जी।
4: जी मैं नागदा उज्जैन जिला बछोड़ा से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: जी,
4: और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: हमको भी अच्छा लग रहा है। और बताइए, हाँ क्या कहना चाहेंगे आज कुछ खास?
4: जी बिल्कुल कहेंगे, ध्वनि तरंगों की ताल पर हम ही आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुन रहे हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, जिसका श्रोताओं को रहता है बेसब्री से इंतजार, जिसमें आते हैं हर राज्य के श्रोता अपने अपनी फरमाइश लेकर अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए, और होती है दीप्ति मैडम जैसे श्रोता करते हैं बात, और होता है बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। चलिए
4: जी बताओ हमें, कार्यक्रम सुनने से ज्यादा ललक होती है आप लोगों से बात करने की, क्योंकि गाने तो हम हर जगह सुन सकते हैं, अपनी पसंद गाना भी मिल जाता है,
0: हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आपकी आवाज सुन के। देखिए अब हमारे भी जहन में आप लोग बस गए हैं एक तरह से, है ना, आपकी आवाज सुन के हम जान जाते हैं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, है ना।
4: जी दीप्ति जी ने बताऊं, अभी बहुत तेज हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पे, और उन्हीं हवाओं की ताल पर में हमें आपके द्वारा हमारी बात हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: तो अब सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
4: जी बिल्कुल, उससे पहले बताऊं अभी हमारे खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, खेतों को समतल बनाया जा रहा है सोयाबीन की फसल के लिए तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा,
4: 25 जून के बाद बरसात होती है तो फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: चलिए आपको शुभकामनाएं, खूब बढ़िया फसल हो, मौसम भी आपका साथ दे, है ना, और आप लोगों की मेहनत बिल्कुल हर हालत में सफल हो जाए, हम यही चाहते हैं, है ना, क्योंकि आप सफल होंगे तो हम लोगों को भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, है ना।
4: हाँ जी बिल्कुल, अच्छी अच्छी फसल पैदा करेंगे आप लोगों के लिए, हम बड़ी मेहनत करते हैं और कार्यक्रम भी सुनते हैं।

0: प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बस होता है। और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप बार बार कोशिश करते रहे,
1: हाँ,
0: आपको जरूर सफलता।
1: और थोड़े बात कम करिए ताकि दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल जाए। तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
0: हाँ जी, किस्मत फिल्म का है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम।
1: ठीक ठीक है, ये है, हाँ ठीक है, सुनवाते हैं आपको, ये आपकी पसंद का गीत। ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, सीहोर मध्य प्रदेश से है ना। हेलो
2: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए जल्दी से।
2: जी मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा रमेश प्रजापति जी, स्वागत है आपका। लेकिन बड़ा शोर हो रहा है वहाँ पे जहाँ से आप बोल रहे हैं।
2: शोर रोड पे से गाड़ी जा रही है कि दुकान के सामने?
0: अच्छा अच्छा, ये तो रोज का शोर है। कैसा लगता है आपको?
2: अच्छा अब क्या करो,
0: आदत पड़ गई होगी।
2: मेन रोड है उससे, मतलब मेन हाईवे है, इंदौर हाईवे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो आपको तो आदत पड़ गई होगी।
2: उसी पे दुकान है अपनी, अब दुकान पे तो बैठ के काम करते और यहीं से फोन लगाते।
0: तो ये जो शोर है ये अब आपको एक संगीत की तरह लगता होगा, है ना?
2: जी जी
0: हमारे लिए शोर है, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं, आप दिन भर वहाँ काम करते हैं, आपकी आजीविका चलती है और आपकी आजीविका उन्हीं लोगों से चलती है जो ड्राइवर्स वगैरह या जो भी वहाँ से यात्री गुजरते हैं, वो आते होंगे, रुकते होंगे आपके दुकान से, चाय वगैरह नाश्ता लेते होंगे, है ना?
2: जी जी,
0: तो आपके लिए तो वो एक मधुर संगीत है। यही होता है, जो चीज किसी के लिए कुशोर होती है वो किसी के लिए मधुर संगीत होता है। जिस दिन अगर ना हो

0: 9 बजे, तो उस दिन तो बड़ा अफसोस होता होगा आज क्या हो गया है ना।
1: जी, सुनसान लगता है फिर।
0: हाँ और क्या, बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, सुनवाएं फिर आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म स्वाद फिल्म का है, तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
0: ठीक है,
1: और हाँ। आप एक दो मित्र को याद कर लो।
0: हाँ, हाँ बिल्कुल, मित्रों को तो भूलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल याद कर लेना चाहिए।
1: सबसे पहले तो आपको
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है
0: जी,
1: और पूनम जी है कानपुर से
0: जी,
1: और आशुतोष जी है, संगीता जी है
0: जी, सबके लिए आपकी पसंद का गीत।

0: सकते तो आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है
1: जी,
0: और पूनम जी है कानपुर से
1: जी,
0: और आशुतोष जी है, संगीता जी है
1: जी। सबके लिए आपकी पसंद का गीत, आपने सुहाग फिल्म का गीत सुनवाने के लिए बोला है ना
0: जी,
1: तेरी
0: जी,
1: रब
0: जी,
1: ने
0: जी,
1: बना दी जोड़ी, सुनवाते हैं।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो,
0: आप जरा रेडियो सेट से दूर हो जाइए प्लीज।
1: जी सर।
0: जी अब बताइए, अपना परिचय दीजिए। आप हरदोई से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, जरा अपना सब बताइए।
1: मैं गजराज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील संदीरा।
0: जी क्या कहना चाहेंगे गजराज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे बताइए।
1: अरे मैडम साहब, क्या कहना चाहते हैं कि अब उम्र तो ज्यादा हो गई, 80 साल उम्र हो गई।
0: कोई अरे 80 साल, 80 साल आजकल क्या ही होती है, आप 100 साल बनाएंगे बताइए।
1: अरे ये सब आशीर्वाद आप लोगों का है।
0: अरे सब आप लोगों की मेहनत है। देखिए आप लोग गांव में रहते हैं, बढ़िया हवा खाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, शुद्ध हवा है नहीं, तो आप लोग और आप लोगों ने जो जीवन भर मेहनत की है हाथ पैरों से अपने, तो उसका जो असर है ना वो इस उम्र में दिखता है। आप थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाइए प्लीज।
1: जी
0: तो वही हम कह रहे हैं कि आप तो 100 साल पूरे करेंगे आराम से, कोई उम्र नहीं हुई अभी, 80 साल कुछ नहीं होता है। ठीक है
1: सर, मैं बहुत सा काम कर दिया है, मैं तो पहले किसान रहा हूँ।
0: हाँ हाँ वही तो हम कह रहे हैं आपके।

0: अंधा।
1: हाँ, उसके बाद मैं लखनऊ प्राइवेट नौकरी के लिए 16 साल रहा लखनऊ।
0: वाह, ये भी बढ़िया है।
1: तो हमने किसान मंडी भवन 11 मंजिल भोगती नगर ये असाना और अलीगंज सब कुछ बनाया मैंने। दो देर
0: बताया था आपने, मुझे पहले भी बता चुके हैं आप इस कार्यक्रम में। तो आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है और उसी का असर है कि आप शरीर से और दिमाग से बिल्कुल चैतन्य हैं और बहुत बढ़िया हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं।
1: मैंने नैनीताल तक कराया, सुल्तानपुर, फैजाबाद, हमीरपुर।
0: हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आगे भी आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच में रहिए कि हाँ, 80 साल तो कुछ नहीं है, अभी तो 100 साल तो आराम से कटेंगे हमारे, है नहीं? और क्या,
1: ये सर आप लोगों को दुआएं हैं।
0: बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं और हमारी यही दुआएं कि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलता ही रहे, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है ना?
1: अरे मैडम साहब, 1 मिनट में, 3 लड़का है, 3 बहुएं हैं, 7 पोता है, 3 पोता है,
0: बताइए, इतना इतना भरा पूरा परिवार है, सबको आप जी खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनको और क्या चाहिए, है नहीं? तो ये है कि आपकी छत्र छाया में पूरा परिवार बिल्कुल समृद्ध होगा, बढ़िया होगा। तो बस आप बने रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और 100 साल पूरे करिए, और हमारे कार्यक्रम में 100 साल तक फोन लगाते रहिएगा, ठीक है? बिल्कुल। तो आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, इसीलिए आप घर संसार फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, है ना?
1: अरे ये सुना दीजिए, चाहे दो हंसों को जोड़ा बिछड़ गया।
0: अरे नहीं, बिछड़ने का गीत नहीं सुनाएंगे हम, तो अच्छा वाला गीत सुनाएंगे आपको, ठीक है? चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये अच्छा वाला गीत, ठीक है? चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं उन्नाव से हमारी अगली कॉलर से। हेलो
1: जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: मैं ग्राम पाली पोस्ट पाली ब्लॉक बीघापुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से दीक्षा पाली बोल रही हूँ।
0: दीक्षा पाली, आपसे तो बात हो चुकी है हमारी पहले भी।
1: जी जी हाँ, दो बार हो चुकी है।
0: कैसी हैं आप दीक्षा जी?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या कहना चाहेंगी?

0: कार्यक्रम में।
1: बस सुनते हैं, अच्छा लगता है। बहुत दिन से सुन रहे हैं, जो बचपन से सुन रहे हैं, करीब 40 साल हो गए सुनते सुनते।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, मेरे पापा मेरे जन्मदिन मैं जब हुई थी तो सन 75 में रेडियो लाए थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, मैं बचपन से सुनती आ रही
0: तो
1: हूँ
0: उस रेडियो से तो आपका बचपन का नाता है, मतलब आप जब पैदा हुई तभी रेडियो आ गया आया, तो आपकी और आपके रेडियो की उम्र तो बराबर ही होगी ना।
1: जी, बराबर है। और फिर बचपन में सुनती थी, फिर शादी हो गई, फिर ससुराल में फिर सुनते सब लोग थे, से घर आंगन है, गृह लक्ष्मी है। अरे सुबह से लेके शाम तक मुझे पूरा याद था कितने घंटे समाचार आते हैं
0: हाँ
1: रेडियो
0: वाह,
1: से।
0: क्या
1: हाँ,
0: बात।
1: और वहाँ दिल्ली से, लखनऊ से, प्रादेशिक हर समाचार, कितने समय पर इंग्लिश वाले आते हैं, उर्दू
0: वाह,
1: वाले आते हैं, सब याद थे मुझे सारे कार्यक्रम।
0: मतलब एक तरह से आपकी बचपन से जो एक पढ़ाई भी हो गई आकाशवाणी से जुड़ने से,
1: जी, हमने
0: क्योंकि
1: बहुत कुछ सीखा रेडियो से, गृह
0: ये
1: लक्ष्मी कार्यक्रम, ग्रहायण से
0: हाँ।
1: सुन के मैं खाना भी बनाती थी,
0: अरे
1: उनको देख
0: वाह।
1: कर सुनकर। कोई नए नए रेसिपी बताते थे, उसे नोट करके मैं उसको बनाती घर में। और अभी भी
0: वाह
1: मुझे बहुत शौक है, फोन
0: हाँ,
1: में देख करके, किताबों में पढ़ के बनाती रहती हूँ
0: वाह
1: कोई
0: क्या
1: सी
0: बात
1: चीज।
0: है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, और ये जानकर खुशी हुई कि आकाशवाणी आपके जीवन का अभिन्न अंग है ना। तो
1: मुझे रेडियो बहुत पसंद है, मैम इतना पसंद है कि उसको लगा लो, काम करते रहो।
0: ये तो है, ये तो बात सही कह रही हैं बिल्कुल आप। तो इसीलिए तो हमारे सब श्रोता हमसे जुड़ते हैं कार्यक्रम में और अपने दिल की बात कहते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और
1: मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं सोचती हूँ कि आप जब आए तब मेरा फोन जरूर लग जाए, क्योंकि आपकी बातचीत हमें, हम लोगों को इतनी पसंद है कि जैसे क्या बताएं, आप मेरी गुरु बन जाती हो।
0: हमको भी यही लगता है कि हम अपने श्रोता से सामने से बात कर रहे हैं और उनसे एक अच्छा संबंध बन गया है हमारा ना, तो इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
1: जी, थोड़ा दो दो
0: हाँ
1: दो तीन
0: हाँ
1: नाम ले लें।
0: बिल्कुल,
1: हमारे
0: ले
1: पति हैं
0: लीजिए।
1: श्री भीमलाल पाली, मेरे बड़े बेटे हैं उल्लास पाली, छोटे बेटे हैं उत्कर्ष पाली, एक भैया हमारे घर में बीघापुर से, उनकी वाइफ हैं कमललता, वो भी बीघापुर से हैं,
0: अच्छा,
1: और हरदोई से राजेश
0: चलिए,
1: विद्यार्थी भैया। बस
0: तो आप सुनना
1: अब
0: चाहती हैं
1: लोग
0: नागिन फिल्म का गीत, लता
1: पूरी टीम
0: मंगेशकर
1: को
0: की, लता मंगेशकर की आवाज़ से
1: धन्यवाद।
0: में, ठीक है, तो सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं की आवाज भी हमारे लिए बिल्कुल बांसुरी की धुन की तरह है, है ना। हमारा भी मन डोलता है और हमारा मन करता है हम अपने श्रोताओं से खूब सारी बातें करें। तो अब इस वक्त में जुड़ गए हैं हमारे एक नियमित श्रोता शिमला से, राकेश जी। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार राकेश जी, कैसे हैं शिमला से? आप कभी कभी तो बारिश भेज देते हैं और फिर उसके

0: बाद फिर यहाँ गर्मी पड़ जाती है जबरदस्त।
1: जी। तो आज हिमाचल में मौसम साफ है, अभी लगातार बारिश आ रही थी, और
0: हाँ
1: बस अब 10-15 दिन का आप इंतजार कीजिए, फिर बारिश की बरसात
0: अरे
1: होगी, यहाँ
0: वाह,
1: हिमाचल से पूरी
0: मतलब आप
1: बारिश आ
0: भेज देंगे,
1: जाएगी।
0: चलिए ठीक है। बस इसी उम्मीद
1: जी
0: में तो हम लोग जो है मतलब ये है ना कि एक एक उम्मीद की वजह से क्या होता है, हर दिन आराम से कट जाता है। अच्छा चलो आज गर्मी है, कोई बात नहीं,
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: दिन
1: जी
0: में तो
1: जी
0: आ ही जाएगी बारिश, कोई बात नहीं, जून का महीना है अभी तो, मतलब आधा ही हुआ है ना, तो
1: जी जी
0: बस।
1: तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एक श्रोता कह रहे थे, जो 80 साल की एज में, बोलते हैं
0: हाँ
1: कि गर्मी बहुत है गर्मी, लेकिन ओ गर्मी तो आती है, क्योंकि अब जब जुलाई आएगा तो फिर गर्मी से राहत मिल जाएगी,
0: नहीं, फिर
1: लेकिन
0: जरूरी भी तो है ना, अभी हमारे यहाँ क्या है, आम है, आम लगे हुए हैं,
1: जी
0: अगर गर्मी नहीं होगी तो आम पकेंगे कैसे पेड़ों पर, और
1: बिल्कुल
0: जब
1: बिल्कुल,
0: पकेंगे नहीं
1: गर्मी
0: तो
1: भी
0: हमको
1: जरूरी है,
0: बढ़िया आम
1: लेकिन
0: मिलेंगे कहाँ
1: मौसम
0: से।
1: हर हर चीज में जरूरी है, जैसे सर्दी हो चाहे गर्मी
0: अब
1: हो,
0: जाड़ों में आपके
1: लेकिन
0: यहाँ जब बर्फ पड़ती है तो सेब का बरसात होती है, सेब के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही यहाँ पर आम के लिए गर्मी बहुत जरूरी है, बारिश भी जरूरी है जो थोड़ी बहुत इस बार मिल गई है ना, तो लेकिन गर्मी भी तो जरूरी है, तो हर मौसम जरूरी है अपने वक्त के लिए, वक्त पे होना चाहिए, नहीं होता है ना वो गलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो अच्छा लगा आपसे बात करके राकेश जी, तो खूब
1: जी
0: शिमला का मौसम एंजॉय कीजिए, और
1: बिल्कुल
0: हम लोग भी उम्मीद में बैठे हैं कि हमें भी मौसम बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपके लिए सेब भी तैयार होने वाले हैं
0: हाँ,
1: कुछ
0: सेब
1: देर।
0: तैयार करिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है।
1: जी जी जी जी जी
0: तो आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा दीजिएगा।
0: ये आपने पसंद किया है कल की आवाज़ फिल्म का गीत, आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में है ना,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: सुन
1: बिल्कुल
0: ली।
1: सुना जी, धन्यवाद धन्यवाद।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

0: सकते हैं
1: अम्बला, कार्यक्रम में मिलते हैं
0: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
1: उन्होंने
0: आपकी कॉल को होल्ड पर रखा
1: बसंती
0: है।
1: लाल जी, हेलो हेलो, ये बात कुछ अजीब ही सी है। आप हमें कॉल करते हैं, हाँ होल्ड पे ऐसे कर देते हैं, गलत बात इंतजार। हेलो, इतना शोर आ रहा है, इतना शोर आ रहा है, हम किस
2: लखनऊ।
1: हेलो, हाँ किससे बात हो रही है हमारी? हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार, मंदसौर से, मध्य प्रदेश से बसंती लाल जी बोल रहे हैं।
3: जी जी जी, मैम बहुत अच्छा पहचानते आप।
1: बीच में आप कहाँ चले गए थे?
3: जी मैम,
1: बीच में आप कहाँ चले गए थे जब हमने कॉल उठाई आपकी?
3: हाँ मैम, वो क्या है कि एकदम आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमी आवाज मिल रही है आपकी।
1: अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज? आप अपने आसपास की आवाज कम करिए तब। भाई
3: अब आने लगी मैम आपकी आवाज, बहुत अच्छी।
1: तो क्या कहना चाहेंगे?

0: मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी बहुत दिनों के बाद फोन लगा है आपके प्रोग्राम में और आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
1: ओह कोई बात नहीं।
0: काफी टाइम हो गया, 3-4 महीना हो गया।
1: अरे बाबा रे। चलिए कोई नहीं, आज तो बात हो गई है तो अब आप और कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे?
0: गर्मी का बहुत सामना करा इन दिनों और अभी बारिश आने वाली है तो बासी वगैरह खाना नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ ये तो है, बासी खाना तो नुकसानदेह होता है, ये तो हमारे सभी श्रोता बहुत समझदार हैं, समझते होंगे इस बात को। और
0: मक्की वगैरह लगी रहती है बारिश में तो आप जानते हैं। और
1: हाँ बारिश में तो सावधानियां बिल्कुल अपनानी चाहिए क्योंकि अगर आपका
0: कहीं ना कहीं जैसे पानी इकट्ठा होता नाली वगैरह में दवाई वगैरह छिड़काव करना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे पहले ना, बारिश आने से पहले अपने आसपास की जो नालियां है ना उसकी सफाई करवा लीजिए क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय में आपको
0: कूलर में भी पानी भरा रहता उसको भी सुखा ले आप, जो गर्मी लग रही है
1: मच्छरों का आतंक आ जाएगा, शुरू हो जाएगा जहाँ बारिश शुरू हुई मौसम जो है थोड़ा ऐसा हुआ तो मच्छर आ जाएंगे और उनको पनपने नहीं देना है, इसका ध्यान रखना है ना, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जब सेहत अच्छी होगी तभी सारे काम अच्छे से कर पाएंगे आप, है ना। तो जीवन में
0: बीमारी
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं बीमारी आने से पहले सावधानी बरतना
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत समझदारी की बात कही आपने, बिल्कुल सही बात।
0: कहीं ना कहीं कोरोना काल आया था तो अपन साबुन वगैरह से हाथ धोते रहते थे बार बार,
1: वो चीजें आगे भी अपनानी चाहिए, रखनी चाहिए उस चीजों को, उनको भूलना नहीं चाहिए, है ना, जो केयर करी थी इसीलिए जो बच पाए, है ना। तो इसलिए आगे भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, इसके लिए सफाई बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने, तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।
0: जी मैम, मुझे गाना सुनवाते।
1: आप सुनना चाहते हैं लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गीत, है ना।
0: क्या बतलाए जाने जाना कुछ मित्र
1: क्या करते थे साजना। हाँ जल्दी से ले लीजिए।
0: मांगीलाल चंदेल है, रोहित भट्टाचार्य है, अविनाश जी है और विजय पांडे जी है और दिनकर जी है और सतीश है और बहुत सारे सुनने वाले
1: सभी के लिए। चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हैं बेहटा सिंह यादव जी। हेलो
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्ते।
1: मैं दीदी ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर
0: जी
1: उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेहटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है आपका बेहटा सिंह जी। कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है। इस समय जो भी है काम चालू है थोड़ा घर का, तो उसी में थोड़ा व्यस्त थे और अभी लंच हुआ है तो हम सोचा फोन लगा लिया।
0: तो क्या काम कर रहे हैं घर का?
1: जी दीदी क्या कि एक दुकान रेडी कर रहे हैं घर की।
0: अच्छा।
1: तो प्लाट लिए थे तो वही किराने की दुकान खोलने वाले हैं, तो थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, जो भी है रेडी हो जाए तो फिर दुकान खोल दी जाए।
0: वाह बहुत बढ़िया। और फिर जब दुकान खुल जाएगी
1: सारे की भी काम चल रहा है।
0: हाँ
1: तो साथ में खेती किसाने की भी काम चल रहा है, ये भी देख लेंगे।
0: हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया। तो ये है अच्छा है, किराने की दुकान खोल लेंगे तो वहाँ पर भी अपना रेडियो सेट लगा लेंगे अच्छे से और फिर
1: बिल्कुल आसानी हो जाएगी। वैसे भी कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, मतलब खेती किसानी के भी काम करते थे ना।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो दीदी रेडियो साथ में लिए रहते तो कोई दिक्कत नहीं करता है, सुनने अपना काम वो भी करते थे रेडियो और अपना काम हम भी करते।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है ना। सारा आप काम भी करें, एंटरटेनमेंट भी साथ में होता चला जाए, मनोरंजन आपका और ज्ञानवर्धन भी, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। और आकाशवाणी अपने श्रोताओं को ये सब देने के लिए सदैव तत्पर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
0: तो अब सुनवाएं आपके पसंद का गीत।
1: हाँ जी दीदी, फिल्म ड्रामे का डान और गीत की बोल रहे खाई के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला।
0: हाँ हाँ।
1: और कुछ मेरे मित्र रहेंगे मानी लाल चंदेल जी हो गए, फूलचंद मनकारी से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, मणिराम पाल हो गए, जिनका चित्रकूट धाम से हो गए।
0: ठीक है, तो यमुना बेल्ट के किनारे से सुनने वाले हैं बेहटा सिंह जी छोरा गंगा किनारे वाला। ठीक है तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार नमस्कार।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। कार्यक्रम में फोन कीजिए और हमसे बात कीजिए। कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे एक और नियमित श्रोता से, जो अपना परिचय अपने अंदाज में आपको देंगे।
1: हेलो
0: हेलो।
1: सत्य और अहिंसा को ही भारत कहते हैं।
0: हम्म।
1: और मानवता के लिए जीने वालों को भारतीयता कहते हैं।
0: हम्म।
1: और

0: इसके विपरीत जो भी जाएगा उसको उसी की भाषा में जवाब देना हिंदुस्तान की आक्रामकता कहते हैं, हिंदुस्तान की आक्रामकता कहते हैं।
1: वाह, अब आप अपना
0: बीबी जी इसको विशेष तौर पर मैंने डायलॉग इसलिए मारा है क्योंकि ये नया भारत है।
1: हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या परिवर्तन आ गया है ना भारत में, भारतीयों में।
0: हम अपनी पुरानी चीजों को अभी नहीं भूले, सत्ता और अहिंसा पे अभी विश्वास करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: मानवता के लिए जीते हैं, और जो इसके विपरीत जाता है उसको उसी की भाषा में जवाब भी देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने, वाह क्या बात कही है आपने। अब इसी अंदाज में अपना परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम बहेरी, जिला बांदा, जो मेरे से यहाँ से चित्रकूट धाम 35 किलोमीटर दूर है, दिनकर सिंह रूबरू हो रहा हूँ दीदी जी आपसे।
1: दिनकर जी, आपकी आवाज सुन के ही हम समझ गए थे और आपका अंदाज सुन के ही, इसीलिए हमने कहा आप अपने अंदाज में अपना परिचय दीजिए, तब मजा आता है जो आप बोलते हैं।
0: दीदी, और पिछली बार भी मेरा फोन लगा था तो मैं ये समझिए कि जब आप आती हैं
1: जी
0: तो डबल जाल लगा देता हूँ मैं। और नहीं तो पूरे पूरे हफ्ते सिंगल जाल में ही काम चलता है,
1: सिंगल जाल से चल जाता है।
0: जी, और दो बार मेरा फोन और इस बीच दे लग गया जो है पिछले हफ्ते से।
1: अच्छा,
0: लेकिन लगे ना लगे मैं मौका देता हूँ दूसरों को कि भाई आप डबल जाल डालिए चाहे ट्रिपल डालिए, लेकिन मैं अगर आप आएंगे दीदी जी तो डबल जाल लगा देता हूं।
1: अच्छा, चलिए अपनी जान जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, सही सलामत रखिए, है ना। तो आपसे हमेशा बात होती रहेगी, आपकी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाएं।
0: जी दीदी, दो तीन मेरे मित्र हैं, बिल्कुल, सबसे जो स्ट्रांग मित्र हैं मांगीलाल चंदेल जी,
1: जी जी,
0: बेटा सिंह का फोन लगी गया
1: जी,
0: विजय पांडे, हंस अजीज
1: जी,
0: के सायर
1: जी,
0: और फूलचंद पाल जो है इस समय कार्यक्रम नहीं सुन रहे छतरपुर में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं।
0: उसके बाद जो है हमारे प्रेम दास बाबा जो बुजुर्ग है 80 साल के हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा एनर्जी है उनके पास।
1: जी,
0: हमारे जो है देवी शंकर शुक्ला जी है,
1: रिटायर
0: प्रिंसिपल है, उनके लिए गीत डेडिकेट रहेगा। और सावस्ती से एक छोटा बच्चा है हिमांशु।
1: ठीक है, तो सबके लिए आपकी पसंद का गीत ये है मेरी जंग, मेरी जंग फिल्म का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं बांदा जिले से श्रीचंद निषाद जी से। हेलो
1: जी, जी जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार श्रीचंद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक है जी, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, कार्यक्रम बढ़िया सुन रहे हैं।
0: नहीं तो सुन रहे ना, तो अपनी बात भी तो कुछ कहिए।
1: अपनी बात कहने में कम रहता, सुनने में ज्यादा रहता जी।
0: ये तो वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हमारे दिल में अगर कुछ बातें होती हैं तो वो हमें जरूर कहनी चाहिए सबसे, है ना?
1: जी जी जी, इतने अच्छे अच्छे कॉलर आते हैं, इतना ध्यान से सुनता हूँ।
0: अच्छा हाँ।

0: ये तो है। खैर, हमारे इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता कुछ तो कहें, कुछ तो कहें, जैसा कार्यक्रम का नाम है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो इसीलिए हम चाहते हैं आप भी कुछ कहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं, आजकल क्या करते हैं, आप परिवार में कौन कौन है, आप किस तरह से अपने घर में सबको बांध के रखे हुए हैं, कैसे करते, कुछ क्या होता है ना कि आपके अनुभव से भी दूसरों को सीखने को मिलता है, तो कोई भी ऐसी बात आप कह सकते हैं।
1: किराने की दुकान है दीदी की, उसी में बैठते हैं, उसी में रेडियो चलता है।
0: और छोटे बच्चों की भी आवाज आ रही है आसपास से
1: जी, यही बच्चे कुछ सामान वाल लेने आए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है, आप तो बच्चों के साथ में भी घिरे हुए हैं और उनकी बातें भी करते होंगे, उनसे भी कुछ अपनी बातें कहते होंगे, है ना?
1: जी,
0: तो अच्छा लगता है और बढ़िया। तो अब आपकी आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। आपने गीत चुना है ये जंजीर फिल्म का, है ना, लता मंगेशकर की आवाज में। तो सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: जी, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं झुमका सिटी बरेली से हमारे अगले कॉलर अंसारी जी। हेलो,
1: कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का कि कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का। मोहब्बत में सजा तो मुझको ही मिलनी थी, मैंने चाहा था उसको अपनी जान से भी ज्यादा।
0: वाह, ये शेर तो सीधे दिल पे लग गया।
1: नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सैर तैरी करने का एक शौक है। वो
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शौक है।
1: नहीं, इसलिए रेडियो अपनी जिंदगी है।
0: बिल्कुल, देखिए शाहनूर अंसारी जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप, देखिए क्या होता है कि जब हमारे दिल में जज्बात हैं, हम इंसान हैं तो जज्बात भी होंगे ही, है ना। बिना उसके फीलिंग्स के कोई जिंदगी नहीं होती है, ठीक है ना। तो और उनको उनको एक उसमें पिरोना, शायरी में, एक शब्दों में पिरो के शायरी के थ्रू आप अपनी बात कहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बात मतलब वाकई दिल को छूती है। सही कह रहे हैं हम, और बहुत अच्छा शौक है।
1: लखनऊ का तो मैं मैम बहुत दीवाना हूँ, मुझे लखनऊ के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मैम आज थोड़ा तबीयत खराब थी तो इसलिए घर पे आराम कर रहा था।
0: ओहो, क्या हो गया?
1: बस मैम जुकाम, थोड़ा घर पे काम था तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई थी।
0: ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए अपना और दवा वगैरह लीजिए और जो भी एहतियात बरतिए, है ना, तो सब ठीक हो जाएगा।
1: मैम जी, मेरा पता बता दूं मैम?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइए
1: जी। मैम जी, मैं ग्राम पोस्ट हरपुर मटकली जिला बरेली से सारू नूर अंसारी बात कर रहा हूँ, और जी आपके हंसी का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ।
0: चलिए, अच्छा लगा।

0: अच्छा लगा आपको, हंसी पसंद आई।
1: ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हर ऑडियंसर का अपना अपना एक अंदाज होता है।
0: हाँ।
1: हंसी का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है मैं, और बाकी जो ऑडियंसर आते हैं उनका तरीका भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सबका अलग यूनिक होता है, तभी तो हम सब अलग हैं अपने में, है ना। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, बहुत खुशी होती है, एक अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है आपसे।
1: मतलब मुझे रेडियो के कॉल लगाने का अब से कुछ साल पहले बहुत शौक था, मगर अब जब से मैंने लखनऊ सुनना शुरू किया, जब से ये मोबाइल ऐप पे आ गया है ना मैं,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: तो मैं आपका कार्यक्रम सुनता ही रहता हूँ।
0: अच्छा।
1: कॉल लगाने का भी मन नहीं करता, सिर्फ आप लोगों का कार्यक्रम सुनने का मन करता है। अच्छा लगता है, दूर दूर कुछ होता है आपके लखनऊ में जड़ते हैं।
0: ये तो हमको भी अच्छा लगता है,
1: यूपी की राजधानी लखनऊ में, तो हमें भी बहुत गर्व होता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं आप।
1: मैं भी गाने से अपने ये जरूर करना चाहूंगा कि आकाश बनाने वाले दिल कांच का बनाया होता, कि आकाश बनाने वाले दिल कांच का बनाया होता, तोड़ने वाले के हाथ में जख्म आया होता, और वो जब भी देखते अपने हाथों को तो कम से कम उन्हें हमारा ख्याल तो आया होता।
0: ओहो, बहुत दर्द है इसमें तो, बहुत दर्द है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, मोहरा फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: काश कहीं ऐसा होता,
1: काश कहीं ऐसा होता, दो दो लहतो सीने में, शबनम अब्बासी के साथ सुनना।
0: ठीक है, जरूर सुनवाएंगे, सुनिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे कार्यक्रम की चुलबुली रायबरेली से रिंकी पिंकी से। हेलो,
1: सजाए रखना उम्मीदों को आंखों में सजाए रखना, गिरती हुई पलकों को उठाए रखना, परवाने हर एक शब्द से आएंगे मगर खुद के लिए सम्मा को जलाए रखना। नमस्ते दीप्ति।
0: नमस्ते नमस्ते, वाह क्या बात कही आप, तो आप भी शायरी लिखने लग गई हैं खूब।
1: जी, आपको सुनते सुनते और आपकी मोहब्बत में हम भी शायराना हो गए हैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: जी कहते हैं ना कि हर एक सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, तो मेरे पीछे मेरी रेडियो और मेरी दीप्ति दीदी का हाथ।
0: आए हाय क्या बात है, चलो।
1: उनकी इतनी प्यारी आवाज, इतनी अच्छी स्माइल है कि हम लोग उन
0: चलिए हम भी बहुत आपको भी, मतलब आपको भी सुन के लगता है कि आप भी कितनी प्यारी होंगी, है ना रिंकी पिंकी दोनों ही बहने।
1: प्यारी आप है, उससे कम ही हम प्यारे
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी अपने को कम ही समझता है।
1: दीवाने दीवानियां इतनी हो गई हैं कि मैम आपके कार्यक्रम में कॉल करना बहुत ही मुश्किल होता है,
0: तब भी कॉल लग ही जाता है आपका।
1: नसीब है कि मैम आपके कार्यक्रम में मेरी कॉल लग गई।
0: हाँ लग गई, पिछली बार भी लग गई, इस बार भी लग गई, फिर क्या है ना।

0: चलिए तो
1: मैम,
0: सुन,
1: जब अपने फेवरेट अनाउंसर से बात करने का मौका मिलता है, और ये खुश नसीबी हर किसी को नसीब नहीं होती, बस किस्मत वालों को ही मिलती है ऐसी खुश नसीबी।
0: चलिए कोई नहीं, सबकी नसीब खुश नसीब हो, है ना, सभी लोग
1: जी,
0: खुश
1: और मैं
0: नसीब हो।
1: अपने अंदाज में अपना परिचय बता दूं अपने श्रोताओं को।
0: हाँ,
1: जी, मैं रेडियो की वही जानी पहचानी आवाज पिंकी रिंग की बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: वाह क्या बात है, अंदाज आपका भी अलग ही हो गया बिल्कुल, है ना।
1: जी, बस
0: चलिए
1: रेडियो से ही सब कुछ सीखा है।
0: बहुत अच्छी
1: अगर
0: बात,
1: मेरे अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो इसके पीछे हमारे रेडियो को ही क्रेडिट जाता है। तो
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो सुनवाए,
1: कैसी हैं आप?
0: बढ़िया है, आपके आपका गीत सुनवाए
1: जी
0: तो
1: जी मेरी बहन बात कर लो थोड़ी। चलो
0: रिंकी पिंकी, हम तो रिंकी पिंकी एक ही साथ बोल
1: रिद्धि जी,
0: देते हैं। हाँ
1: नमस्ते। कैसी
0: जी नमस्ते
1: हैं रिद्धि
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रिंकी पिंकी, आप सबके, आप
1: जी?
0: दोनों के लिए और आपके सभी लोगों के लिए, आपकी पसंद का
1: मैं
0: जल्दी
1: दो नाम लेना चाहेंगे,
0: से
1: बस
0: जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से।
1: पूनम दीदी हैं कानपुर से, अनु अनु पांडे जी हैं गोंडा से, और गुंजन तिवारी जी हैं, शबनम जी हैं, और मैम दो तीन लोग हैं जो गाने में हमें डेडिकेट करते हैं, उनका नाम
0: सब
1: तो याद नहीं है,
0: कोई
1: उनको
0: बात नहीं,
1: भी हमें
0: सबके लिए
1: डेडिकेट
0: सबके
1: करते
0: लिए
1: हैं,
0: सबके लिए,
1: और जो
0: हाँ
1: भी सुन रहे हैं उन सभी को।
0: सबके लिए। चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार,
1: मैं
0: ओके बाय।
1: आपको

0: कार्यक्रम में जल्दी से मिल लेते हैं हमारे कार्यक्रम के आज के आखिरी कॉलर से। हेलो रामबाबू शर्मा जी।
1: दीदी को नमस्कार।
0: नमस्कार रामबाबू जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए सबको।
1: जी दीदी, ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, रामबाबू शर्मा।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बहुत बढ़िया हूँ, प्रोग्राम सुन रहा था, खाना खा रहा था।
0: हाँ हाँ,
1: और बात हो रही है तो खाना खाना ही बंद कर दिया।
0: अरे क्या खाना खा रहे थे ये तो बता दीजिए।
1: दाल रोटी है और
0: इससे बढ़िया क्या होता है, यही अमृत है ना, दाल रोटी तो अमृत है, अमृत सबको खाना चाहिए। हाँ तो अच्छा, तो ठीक है, तो खाना खाना बंद कर दिया है, तो अब आप जल्दी से बात करके और आपका गाना सुनवा देते हैं, ठीक है?
1: हाँ जी दीदी, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, उसमें गाना है यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। और दीदी केसरी सिंह राजपूत जी, गजराज सिंह लोधी जी और पूनम जी और मिंटू तिवारी जी और दीदी सभी श्रोताओं के लिए और आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: दीदी बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: नमस्कार।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है, भारत में

0: हील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले।

0: बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया,
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खा

0: जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
2: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
0: अप्पू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
0: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
0: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
0: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
0: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ।
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था

0: जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू, क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं

0: गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गईं।

0: उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, धुन बनाई खयाम ने। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम गोरा और काला, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल सुरों में आप सुन रहे थे एक नज़र फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए अब सुनते हैं शागिर्द फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत जिसकी धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म इज्जत से, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म का ये नगमा। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: चार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर

0: सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री राम नरेश ने ग्राम रीवा सीवा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि सतीश कुमार उर्फ जंगली 2 जनवरी 2026 से लापता हो गए हैं। सतीश कुमार की आयु लगभग 25 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, गोल चेहरा, इकहरा मजबूत शरीर और रंग गेहुआ है। श्री सेमई ने ग्राम गंगापुर थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि आरती 18 मार्च 2026 से लापता हो गई हैं। आरती की आयु 18 वर्ष, कद करीब 4.5 फीट, सामान्य शरीर और रंग गोरा है। श्री दिनेश कुमार ने ग्राम सैदनपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि अर्चना देवी 10 फरवरी 2026 से लापता हो गई हैं। अर्चना देवी की आयु लगभग 21 वर्ष, कद 5 फीट, इकहरा शरीर, रंगे हुआ और चेहरा लंबा है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आप हमें इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

श्रोताओ, हम आपको आज के सायंकालीन प्रसारण के कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। आज शाम 7:31 पर स्वास्थ्य मैगजीन स्वास्थ्य वार्ता में आप सुनेंगे सुनील यादव से उनकी वार्ता रेबीज से बचाव। डॉक्टर अभिषेक कुमार शर्मा मिश्रा बताएंगे किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह का कविता पाठ प्रसारित किया जाएगा। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में संजय श्रीवास्तव के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। आज रात 10 बजे के अग्रवाल का लिखा नाटक आस्था प्रसारित किया जाएगा। संपादन एवं प्रस्तुति कीर्ति श्रीवास्तव की, निर्देशन अतिश श्रीवास्तव का। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रविनाथ मिश्र का तबला वादन प्रसारित किया जाएगा। रात 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय होगा विदेश नीति।

30 मिनट पर, शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में पशुओं में नस्ल सुधार के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर संतोष कुमार यादव और उनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

0: के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से कॉमर्शियल परवाज़ खिदमात आज से शुरू हो गईं। पहले मरहले में 1.2 करोड़ मुसाफिरों की क़ुव्वत वाला ये एयरपोर्ट मुस्तक़बिल में 22.5 करोड़ मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। आखिरी मरहले में 5 रनवे होंगे जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास की रियासतों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज़्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है।
2: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: वज़ीर-ए-आला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आज़मगढ़ डिवीज़नों में महकमा तामीरात आम्मा के काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेज़ी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में गुज़िश्ता 12 बरसों में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त बदल गई है।
3: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमाया तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उन्वान से एक खसूसी सीरीज़ नशर कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248

0: 40 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनन का वंदना के नमस्कार। बहनी, गर्मी के मौसम, चटक घाम और उमस, ये सब मिल के हमरे वातावरण का तो प्रभावित करते हैं, साथ में प्रभावित करते हैं हमरे स्वास्थ्य का भी। अच्छा, बहुत मनई ये समस्या रहा है कि वे जब भिनसारे उठत हैं तो उनकी देही में चटक पन्ना ही रहा है, वही थके थके अलसाए अलसाए से रहते हैं। अब बहुत मनई यह सोचत हैं कि चटक गर्मी के मारे ऐसन है, मुला यदि रोज रोज शरीर में थकान बनी रहे तो सावधान हो जाए, काहे से कि ये केवल गर्मी के कारण ना ही होता है, हो ही सकत है कि आपके ब्लड प्रेशर जो ने घटा हो या बढ़ा हो, और हाँ, अगर उलझन बनी रहा है या बार बार पसीना आ रहा है तो यही के संबंध हृदय के बीमारी से भी हो सकत है। तो ऐसन में लापरवाही ना ही करें बहनी, और बिना समय गंवाए डॉक्टर के पास जाए के उनका दिखाओ और उनके सलाह के अनुसार दवाई और दिनचर्या का अपनावें। एक बात और श्रोता बहनी, कि अपने शरीर में पानी की कमी ना होए दें, समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पियत रहें, साथ में अधिक तेल मसाला वाला चटक भोजन करें से भी बचें। ई गर्म मौसम में घर के बना आमे के पना, नींबू के शिकंजी, गुड़ दही के शरबत, माठा सौंप के शरबत और नारियल पानी पियत रहें, साथ में मौसमी रसदार फलन के भी उपयोग करें। घामे से आए के तुरंत पानी ना ही पिए, बल्कि तनिक देर समथाए लें, तब कुछ खाए के तबे पानी पिए, मने गुड़ के डली, मिश्री, बतासा ये सब खाएं फिर पानी पिए। और हाँ, यदि गर्मी में चक्कर आ रहा है या अचानक से आंखन के सामने अंधेरा छाए रहा है तब वो डॉक्टर के पास जाए के उचित सलाह लेके उपचार करवावें, यही का टारे नहीं। तो बहनी, ई गर्मी में सावधानी बरतें, यदि शरीर में कोनो परेशानी है या शरीर ऐसा संकेत दे रहा है जो उन सामान्य नहीं है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए के उनके परामर्श लें और इलाज करवाएं। तो ई तो रही गर्मी में रखे वाली अनेकों सावधानी के बात, और अब बात की जाए तनिक गीत गौनई के। तो गर्मी के मारे भीगी चुनरी के बारे में मनसेधु से कौन बात कही जा रही है, चलो सुना जाए नकटामा। स्वर हैं डॉक्टर अंजू भारती बहनी के।

0: श्रोता बहनी, हम सब जिनकी उंगली पकड़ के चलब सीखें, जौन हमरे घर के रौनक और परिवार के नींव हुए, उहे हम सबके घर परिवार के बूढ़ परनिया मनई, जिनके आदर सम्मान हम सब करित है। मुला बहुत से ऐसो परिवार हैं जहां बूढ़ पुरनेन का सूना कोना माना जात है, मने उनके साथ नीक तना से बातचीत नहीं कीन जात है, उनका अपशब्द बोले जात हैं, हिंसा भी कीन जात है। यह खातिर बताओ चली कि आज यानी 15 जून का हर बरस विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनावा जाता है, जिसके उद्देश्य बुजुर्गन के साथ होए वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार और उपेक्षा के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर मन इनका जागरूक करब है। श्रद्धा बहनी, अपने देश में भी बुजुर्गन का कुछ कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वही सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन बिता सकें। तो यह बात पर आज हम लेके आए हैं भेंटवार्ता, बुजुर्गों के कानूनी अधिकार, जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं आनंद कुमार सिंह भैया, और उनसे हम ही बातचीत करा है। तो चलो सुना जाए। श्रोता बहनी, हम सभी का कुछ न कुछ कानूनी अधिकार दीन गए हैं, जिनमां बूढ़ पुरनियन के भी अनेकों कानूनी अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मुला बहुत से कानूनी अधिकार हमरे बूढ़ पुरनिया नहीं जानत हैं और वे शोषण का सहत रहत हैं, तो उनके कौन कौन से अधिकार हैं यह जाने समझे खातिर आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित कीन हैं आनंद कुमार सिंह जी का, जो उनकी एक वकील हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके आनंद भैया
1: जी। धन्यवाद।
0: सबसे पहल जो प्रश्न है हमारा आनंद जी से, वह ये है कि का बुजुर्गन का अपने सगरे कानूनी अधिकार पता होते हैं?
1: कुछ लोगों को तो पता होते हैं, पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता है उनको क्या कानूनी अधिकार हैं। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है अभी।
0: अच्छा आनंद भाई।

0: या अगर बच्चे अपने बूढ़े माता पिता के ख्याल ना ही रखते हैं तो उनके बारे में कानून का कहते हैं?
1: देखें, पहले तो ये था कि जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट था 1956,
0: जी,
1: उसके सेक्शन 20 में ये व्यवस्था थी और सामाजिक रूप से भी हम लोग ओबलाइज थे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि अब ये धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है और लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना बंद कर दिए। तो ये समस्या सबसे पहले 1999 में इसके ऊपर जो है वे कॉन्फ्रेंस हुआ और ये देखा गया कि एक ओल्ड पर्संस जो एक्ट बनाया जाए जिसमें कि इन बातों का ध्यान रखा जाए जो हमारा सामाजिक दायरा धीरे धीरे बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए सिमट रहा है, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक्ट जाकर के बना 2007 और उसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड पर्सन सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2007। तो करीब करीब 8 साल लग गए एक्ट बनाने में, लेकिन वो काफी अच्छा एक्ट है और अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का या परिवार के किसी बुजुर्ग का ध्यान नहीं रख रहा है तो उसके अंदर वो जा करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: अच्छा, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि यदि केवल बुजुर्ग दंपत्ति के लड़का बच्चा नहीं है तो उनके खातिर कानून में का प्रावधान है?
1: हाँ, ये क्या है कि अगर उनके लड़के बच्चे नहीं है तो उनकी संपत्ति का जो वारिस होगा उसको फिर उनका उनके ऊपर वो मेंटेनेंस की मांग उनसे कर सकते हैं, जो उनके मरने के बाद जो उनकी संपत्ति को प्राप्त करेगा।
0: एक बात यह हो, आजकल बहुत देखा सुने का मिलता है भैया कि बुजुर्ग अपन संपत्ति अपने लड़कन बच्चन के नाम कर दें, बाद में हुई उनके देखभाल नहीं करते हैं, तो ऐसन में कानून का कहते हैं?
1: हाँ, देखें, इस पर बड़ा डिबेट हुआ था
0: जी,
1: क्योंकि एक तो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसमें अगर एक बार आप गिफ्ट कर देते हैं, सेल डीड कर देते हैं, तो वो फिर रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते।
0: अच्छा।
1: लेकिन 2007 एक्ट के सेक्शन 23 में ये प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर किसी बुजुर्ग ने अपने किसी लीगल एयर को, अपने किसी उसको अगर उसने संपत्ति गिफ्ट कर दिया है या वरासत कर दी है, तो वो उसको रिवर्ट बैक करा सकता है, ये कह करके कि संपत्ति पाने के बाद ये हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं और ये मान्य होगा, उसके लिए कंप्लेन करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत जो सीनियर सिटीजन को दी गई है।
0: तो ये जो कंप्लेन है हम कहां कर सके थे?
1: ये देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल बना दिया गया है, आप सीधे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बना हुआ है और उस ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया है SDM को।
0: अच्छा।
1: जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, तो आप उसके यहाँ जाकर के सीधे एप्लीकेशन दे सकते हैं।
0: आनंद भैया, एक प्रश्न हम यह जानना चाहब कि ट्रिब्यूनल में का बुजुर्ग स्वयं केस लड़ सकते हैं या वकील के माध्यम से केस लड़ सकते हैं?
1: हाँ, ये देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि 3 तरीके के जगह ऐसे हैं जहां पर कि वकीलों को बार्ड किया गया है। एक तो पहला पारिवारिक न्यायालय था
0: जी,
1: उसमें भी वकीलों को बार्ड तो किया गया पर एक छोटा सा झरोखा खोल दिया गया कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो वकील के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा लेबर कोर्ट था, लेबर कोर्ट में भी यह झरोखा खोल दिया गया, पर सीनियर सिटीजन एक्ट में वकील को, अधिवक्ताओं को कम्प्लीटली एब्सोल्युटली बार कर दिया गया है। आप स्वयं बुजुर्ग जाएंगे, वहां कोई अधिवक्ता नहीं जा सकता।
0: अच्छा।
1: क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक पारिवारिक मामला है जिसमें बुजुर्ग अपने बच्चों के खिलाफ मुकदमा करता है कि हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे और वो वहां पर कोई समाधान निकलेगा, इसीलिए वकीलों को मना ही कर दिया गया है। तो बुजुर्ग को ही जाना है, वकील के माध्यम से आपको जाना ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: ताकि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो सके।
0: अच्छा भैया, यू बतावे कि ट्रिब्यूनल केस में जो उन्हें कितना समय और पैसा लागत है, का ये आम मने खातिर आसान है?
1: देखें, जो ट्रिब्यूनल का है पहले दिन ही आपको राहत दे देगा। अगर बुजुर्ग कोई जाता है जिसकी उम्र, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो SDM पहले दिन ही उनको बुला करके और पहले दिन ही कोई समझौता वो करा देगा और वहां पर विजिटेशन राइट भी होगा, वो किसी थाने के SHO को बोल देगा कि आप जा करके रोज या हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दिन जा करके देखेंगे कि इनका कोई हैरेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस हिसाब से ये एक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है।
0: भैया यह बतावे कि कोनो बुजुर्ग अपन खर्चा पानी वहन करे में नहीं समर्थ हैं, तो का लड़कन बच्चन से खर्चा मांग सकत हैं हर महीना?
1: बिल्कुल, इसको मेंटेनेंस में वो हर महीने SDM एक तो 2 चीजें करेगा। एक तो पहला काम करेगा कि उनकी सुरक्षा के लिए वो उनको प्रोहिबिशन ऑर्डर देगा कि भाई आप इनके साथ कोई हैरेसमेंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये करेगा कि आप इनको इतना मंथली देंगे और इनका खाने पीने का ध्यान रखेंगे जैसी भी परिस्थिति जिस परिवार की हो। इसीलिए SDM को बनाया गया कि वो परिस्थितियां देख करके केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेगा। कोई एक प्रकार की चीज नहीं, उसमें प्रोटेक्शन भी है, उसमें मंथली भी दे सकता है, उसमें ये भी कर सकता है कि नहीं इनके पास तो पर्याप्त पेंशन है, आप इसमें से

0: इतना पैसा निकाल कर इनकी दवा पे खर्च करेंगे, इनके सेहत पे खर्च करेंगे, किसी तरीके का ऑर्डर दे सकता है जो उनके लिए सबसे अच्छा हो।
1: अच्छा भैया, यह बात है कि आजकल बेटवन का बेटियन का बराबर माना गवा है, तो क्या बेटियन के भी जिम्मेदारी है माता पिता के संहारे के, या सिर्फ बेटवन के ही जिम्मेदारी बनत है?
0: देखें, अगर आप हिस्टोरिकली लें, ऐतिहासिक रूप से, तो हिंदू में तो बेटा बेटी दोनों की जिम्मेदारी अपने पेरेंट को मेंटेन करने की, और मुस्लिम्स में सिर्फ बेटे की है, और क्रिश्चियन और पारसी में ऐसा कोई ला नहीं है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 है, उसमें बेटा बेटी दोनों के ऊपर समान जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने की, लेकिन पहली जिम्मेदारी ट्रेडिशनली वो बेटे की होती है। अगर बेटा नहीं करता है तो बुजुर्ग जो है अपने लड़की से भी मांग सकता है, अपना मेंटेनेंस मांग सकता है।
1: अच्छा आनंद भैया, यह बात हम जानना चाहब कि बहुत मने ही अपने घर के बूढ़ पुरनिया से मारपीट करत हैं या अपशब्दन के इस्तेमाल करत हैं, तो ऐसन में उन मनईन पर कौन सी धारा लाग सकत है और सजा के का प्रावधान है?
0: देखें, अगर मारपीट कर रहा तो क्रिमिनल एक्ट है, तो सबसे इसके बीएनएसएस से पहले जो है आईपीसी में तो समान प्रोविजन लगा करता था, बुजुर्गों के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं था। पर ये जो 2007 में एक्ट आया है, इसमें अलग से प्रोविजन है और इसमें 5,000 रुपया फाइन और 3 महीने तक की सजा होगी अगर उनको उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका हैरेसमेंट किया जाता है।
1: भैया, एक बार फिर से संपत्ति के बात करब कि यदि बुजुर्ग मने इनका लागत है कि धोखे से कोनो कागजात पर साइन करा लीन गवा है, तो उनके पास का कानूनी रास्ता रहा है?
0: देखें, एक तो पहले से चला आ रहा है कि सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। अच्छा। उसमें बहुत समय लगता है, उसको कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड बोलते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन जो नया एक्ट 2007 का बना है, उसके सेक्शन 27 में वो एसडीएम के पास जाकर के एप्लीकेशन देंगे, उस एसडीएम उस एप्लीकेशन पर वो सामान्य जांच करेगा और ये पाएगा कि इनको धोखे से लिखवा लिया गया है, तो वो फिर रजिस्ट्रार को लिख देगा कि ये धोखे से हुआ है, आप इस रजिस्ट्री को कैंसिल कीजिए, और रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, उनको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक प्रोविजन है सेक्शन 23 का 2007 में।
1: अच्छा,
0: ये कहीं नहीं है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में।
1: अच्छा, एक बात यह भैया कि पेंशन, बैंक खाता, एफडी में नॉमिनी के का अधिकार होते हैं, का नॉमिनी सारा पैसा ले सकते हैं?
0: देखें, ये एक बहुत मिथ है कि नॉमिनी को सारा पैसा मिलता है। एक्चुअली नॉमिनी को सारा पैसा ऐसे मिलता है कि वो ट्रस्टी के हैसियत से रिसीव करता है, यानी मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने आपको कहा कि आप ये पैसा लीजिए, 100 रुपया लीजिए, तो 100 रुपया आप हमसे लेंगी, पर आपको 25-25 रुपया सब में बांटना होगा, आप सिर्फ रिसीव करेंगी, पैसा तो लीगल एयर्स को ही जाएगा, नॉमिनी का सिर्फ इतना ही अधिकार है। लोग एक पॉइंट तक जाते हैं, दूसरा पॉइंट समझते नहीं है। नॉमिनी सिर्फ पैसा रिसीव करेगा, बैंक अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है, और नॉमिनी को पैसा दे दिया, बैंक लायबिलिटी से मुक्त हो गया। लेकिन अगर लीगल एयर को नहीं मिला तो लीगल एयर नॉमिनी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं कि आप हमारा हिस्सा मार के रखे हैं। नॉमिनी को सिर्फ रिसीव करने का पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन तो लीगल एयर में ही होगा।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं।
1: भैया, यह बतावें कि कोनो परिवार में बुजुर्ग के लड़का बच्चा परेशान करते हैं उनका, और संपत्ति बुजुर्ग के बनाई भई है, तो का वही लड़कन बच्चन का अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं?
0: देखें, ये थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। दो तरीके की संपत्ति होती है, एक तो स्वअर्जित होती है और एक खानदानी होती है। तो दोनों का जो स्वअर्जित संपत्ति है उससे तो कम्प्लीटली बेदखल कर सकते हैं, बाकी जो खानदानी है उसमें एक प्रोसेस है, उसके थ्रू भी बेदखल कर सकते हैं, पर उसमें इतना आसान नहीं है बेदखल करना। लेकिन अगर अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो हाँ, बेदखल कर सकते हैं।
1: अच्छा आनंद भैया, यह बात बतावें कि जो उन बूढ़ पुरनिया मनई वकील के फीस नहीं दे सकते हैं, उनके खातिर फ्री लीगल एड कैसे मिला?
0: देखें, इसके लिए तो सरकार ने व्यवस्था की है, अगर कोई बुजुर्ग फीस नहीं दे पा रहा है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर जिले में होती है, उसका अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसके ऑफिस में चला जाए और वहां पर एक बकायदा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस रहता है, वहां रजिस्टर मेंटेन होता है, उनको एक बढ़िया से बढ़िया वकील वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अब कोई अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब पैसा कोई कांस्टेंट नहीं रह गया है।
1: भैया, ऐसा कोनो हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट है जो हर बुजुर्ग का सेव कर ले चाहिए अपने लगे?
0: हाँ हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो उस पर कॉल करें, उस पर कॉल उठता है और तुरंत पुलिस आती है या समाज कल्याण मंत्रालय से कोई ऑफिसर आता है।
1: अच्छा,
0: बुजुर्ग को देखने के लिए
1: 24 घंटे
0: 24 घंटे के अंदर आता है, 24 घंटे ऑपरेटिव भी रहता है।
1: अच्छा भैया, आपसे एक प्रश्न हम और जानना चाहब कि

0: जौन मनई वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उनके खातिर का कानूनी अधिकार है अगर उनके देख रेख वहाँ पर सही से नहीं हो रही है तो?
1: देखें, जो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 1999 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ही आया था कि ओल्ड एज होम बनेगा, हर चार जिले में एक ओल्ड एज होम बनेगा जिसमें बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि पेंशन की बात है कि जो ओल्ड एज पेंशन मिलेगी, उसके बाद था जेरियाटिक केयर की बात थी कि हर हॉस्पिटल में एक जेरियाटिक वार्ड होगा जिसमें इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी देखभाल होगी। तो वहाँ के नियम कानून अलग होते हैं, जो वृद्धा आश्रम बनते हैं जिनको समाज कल्याण विभाग बनाता है तो वहाँ के नियम कानून अलग होते हैं। समाज कल्याण विभाग वहाँ पर उसकी देखरेख करता है, जो समाज कल्याण अधिकारी रहता है उसके खिलाफ भी कंप्लेन होती है, और उसको अगर उस वृद्धाश्रम में उसकी नहीं देखभाल हो तो समाज कल्याण अधिकारी को भी कंप्लेन किया जा सकता है, उसका पूरा बजट सरकार देती है।
0: अच्छा, तो अच्छा भैया, चलत चलत अंतमा हमरे युवा पीढ़ी का कौन लीगल संदेश दीन चाहते हैं आप, ताकि 30 साल बाद उनके माता पिता का आपके पास यानी वकीलन के पास न जाए पड़े?
1: देखें, हमको अपनी परंपराओं से जुड़ना पड़ेगा। भारत में ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ी चिंता और शर्म की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चार आश्रम थे। एक था भाई ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास था, और चारों आश्रम की अपनी अपनी मर्यादा थी। कभी कोई ऐसा नहीं हो कि कभी किसी के ऊपर बोझ बना। अब आदमी यदि अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकता है तो हम किस प्रकार के समाज की रचना कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए 2007 का एक्ट बनाने में इतना समय लगा।
0: भैया, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें जो उन्हें कानूनी रूप से हमका बतायो बुजुर्गन के बारे में कि उनके का अधिकार हैं और कैसे अपने अधिकारन का जो है पाए सकत हैं, आप हमारे स्टूडियो में आयो, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमका बतायो, इके खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो श्रोता बहनी, अब हम सब सुनाई भेंट वार्ता बुजुर्गों के कानूनी अधिकार, जिके बारे में तमाम उपयोगी जानकारी दीहीन आनंद कुमार सिंह भैया और उनसे बातचीत हम हिनकिन रहे यानी वंदना श्रीवास्तव। और श्रोता बहनी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए बोला वैसे पहले बढ़ चला जाए एक छोट से अंतराल की ओरिया।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ, सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
6: आज ही सर्च करूंगा।
4: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
0: श्रोता बहनी, घर परिवार में जहां नैहरे में बहनी के साथ हम सब बोलित बतियाई थे, रूठित मनाई थे, तो ससुरे में ननन रानी से ऐसा रिश्ता हमार सबके बन जात है। कबो हंसी ठिठोली तो कबो रूठम मनाऊ। अब ये जो नकटा अब हम सब सुना जा रहे हैं वही माँ ननन रानी के बारे में कौन बात कही जा रही है यह सुना जाए। स्वर है अनुभा राय बहनी के।

श्रोता बहनी, ई बेरिया तो गर्मी खूब पड़ रही है और ऐसन माँ कौनो भी खाए पिए वाली चीज बनाए के धर दे तो वही 6-7 घंटा माँ ही खराब होए लागत है। अच्छा, वह आम के भी मौसम है और आमे के अचार खटाई बनावे के यही सही समय भी होत है। मुला अचार तो बनाए लो पर वही का सहेज के साल भर राखब बड़ा काम हो जात है। अब बहुत सी बहनी हो रही बड़े मन से अचार बनौती हैं, मुला उनके अचार जल्दी खराब होए लागत है। तो अचार का खराब होए से बचावे खातिर कुछ बातन का जरूर ध्यान में राखें बहनी। मने अचार में सरसों के तेल अतना डारो कि अचारे में फफूंद न लागे। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन या मर्तबान में ही अचार जो उन्हें संजोवें। प्लास्टिक के बर्तन में अचार जल्दी खराब होते हैं, साथ में स्वास्थ्य खातिर भी ठीक नहीं होते हैं। मर्तबान का घामे माँ नीकी तना से सुखाए के फिर वही माँ पहले थोड़ा तेल डाल दो, फिर अचार भरो। अचार निकारे खातिर जो उन्हें सदैव सूखा चम्मच ही उपयोग करें। गीला हाथ या चम्मच तो समझो अचार खराब भवा। गर्मी में नमक और तेल ही प्रिजर्वेटिव है। कम डरी हो तो खट्टा होई के अचार झाग छोड़ सकत है। तो अचार बनावत के तेल नमक के मात्रा के ध्यान रखें। और हाँ, हींग और पिसी राई भी जरूर डालें, काहे से दुइनों में एंटी फंगल गुण होते हैं। और यदि रखे भाई अचार में ऊपर सफ़ेद परत दिखाई पड़े तो घबराए के जरूरत नहीं बहनी, वह फफूंद है। ऊपर की परत चम्मच से निकाल दो, फिर बाकी अचार में थोड़ा सरसों के

तेल गरम करके फिर ठंडा करके डार दो, अचार सही हो जाई। और हाँ, अचार का जल्दी गलावे का होए तो वही में थोड़ा सा जामुन या गन्ना के सिरका भी मिलाए दो, और अचार का नमी वाली जगह में ना ही धरें। तो इन सब बातन के ध्यान रखें बहनी, और बनावे ई आमे के सीजन में आम के अचार, कटहर भी जो उन्हें मिलत है तो वही के अचार, नींबू मिर्चा के अचार और बड़हर के अचार स्वयं खाओ और दूसरेन का भी खवाओ। और बहनी ई गर्मी जो उन्हें खाए पिए के खातिर अनेकों रसीले फल जो उन्हें आवत हैं गर्मी में, है ना जी, मां कारे कारे जामुन तो खूब मन का लुभावत हैं। ऐसन लागत है कि बिरवन पर गुच्छन मां करिया करिया बड़ी बड़ी मोटी जो उन्हें लटक रही हैं, और ई अगर खाए का मिल जाए तो का कहने। तो यह बात पर चलो सुना जाए खेमटा, स्वर हैं कुसुम वर्मा बहनी के।

अश्वता बहनी, यह गीत के साथ अब कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है। तो आज के कार्यक्रम आप सबका कैसन लाग, ये के खातिर हमका पाती पठोब और ईमेल पठोब ना भूलो। तो पाती पठोए खातिर पता लिख लो, घर आंगन कार्यक्रम द्वारा के निर्देशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ। पिन नंबर है 2260001। और जौन श्रोता पंच ईमेल के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ा चाहते हैं, वही ईमेल के पता लिख लें, घर आंगन airlko@gmail.com। तो श्रोता पंचो, आप सब जो उन्हें कार्यक्रम पाती और ईमेल पठो ना भूलो। और अब ई मनोकामना के साथ आप सब से विदा लेते हैं श्रोता बहनी हो रही कि हमरी सबय श्रोता बहनी हो रही सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, साथ में आनंद पूर्वक गर्मी के मौसम का बितावें, आम और जामुन खात भय, यह कामना के साथ वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

फना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजों में। गीत सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनी राम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव, राम प्रसाद और देवी शंकर शुक्ला और कृष्ण कुमार सिंह कुरसठ। आप सबकी पसंद पर साजन फिल्म का गीत, जिसे गाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है अमेठी उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी सूरज नितिन और तुलसी राम ने। फिल्म का नाम 20 साल बाद आवाजें मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की।

0: फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं जवानों के लिए कार्यक्रम में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा ऋचा गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे जी, आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में नौकरी फिल्म का ये गीत।
1: छोटा सा घर होगा।

तेरी छोटी बहना नाजो की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाजो की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये।

0: आई रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आप सबकी पसंद पर आशा भोसले की आवाज़ में जीवनधारा फिल्म का ये नगमा।

दीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप संदेश लिखते हैं, भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। शहीद फौजी हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को याद करते हैं, ये गलहौटी गांव मोगा जिले के रहने वाले थे। शत शत नमन। तो आपकी पसंद पे सुनवाते हैं बेटा फिल्म का गीत, जिसे गाया उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने।

जीवनधारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमन।

फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं जवानों के लिए कार्यक्रम में। हमारे पास एक मेल आया है जिसमें एक अच्छा सा संदेश लिखा है, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। आप लिखते हैं, हमारी ओर से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी लखनऊ परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की, जो कि अब हमारे दिलों की धड़कन बन गई है। हम आपका कार्यक्रम DTH पे सुन रहे हैं, धन्यवाद। इसके अलावा एक और ईमेल आया है, ये है भैया मोनू सेठ का। खालिसपुर ऊंच गांव भेल अमेठी से आप लिखते हैं, तिरंगा सुनाता है हमारी संघर्ष गाथा, केसरिया रंग साहस व बलिदान दिखाता, सफ़ेद रंग सच्चाई व शांति की रोशनी बिखराता, हरा रंग खुशी व हरियाली को दर्शाता। आप सुनना चाहते हैं फिल्म बॉर्डर से ये गीत, जिसे गाया रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों ने। आइए सुनते हैं।

0: स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
4: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का

0: आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव

0: में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राज्य त्योहार के दूसरे दिन राज्य संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में गन्ने में कृषि रक्षा कार्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो बहुत सारे हानिकारक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, उनका समन्वित प्रबंधन कैसे हो ताकि मित्र कीट भी आपके खेत में रहें और

0: सूक्ष्म कीट का प्राकृतिक प्रबंधन होता रहे, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय गन्ने की फसल में कौन कौन से हानिकारक कीट हैं और उनका समन्वित प्रबंधन कैसे करें मिठास के किसान भाई बहन।
1: सभी कृषक भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। चूंकि मिठास की क्रॉप गन्ने की फसल है और इस समय जो तापमान है, तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड का चल रहा है। इस तापमान में बहुत सारे ऐसे बेधक कीट होते हैं, बहुत ऐसे चूसक कीट होते हैं, कुछ ऐसे कुतर कर खाने वाले कीट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं।
0: जैसे
1: अगर मैं बेधक कीट की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि नुकसान होता है गन्ने की फसल में तो बेधक कीटों से ही होता है। गन्ना जमता है उसी समय अंकुर बेधक कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है और ये अंकुरण के समय ही होता है और उच्च तापमान में ये परिलक्षित होता है। दूसरा, चोटी बेधक एक ऐसा कीट है जो कि गन्ने को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ये बेधक कीट है। पूरे साल ये गन्ने की फसल पे सर्वाइव करता है। इसकी 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं। पांचों पीढ़ियां गन्ने की समसामयिक समय समय से आके गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। प्रथम पीढ़ी अभी समाप्त हो चुकी है जो कि मार्च अप्रैल के महीने में अभी लगी थी। द्वितीय पीढ़ी मई के द्वितीय सप्ताह से जून के द्वितीय सप्ताह तक रहती है और इस समय उच्च तापमान में द्वितीय पीढ़ी का प्रकोप बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप अभी एडल्ट तितली के रूप में दिखाई दिया। बहुत सारे किसान, जागरूक किसान भाई हमारे उत्तर प्रदेश के, समेकित कीट प्रबंधन के रूप में बहुत सारे ऐसी तकनीकी हैं जिनका उपयोग करके चोटी बेधक की पॉपुलेशन इनकी जनसंख्या को बहुत हद तक कम कर देती है।
0: डॉक्टर साहब, प्रबंधन पर आएंगे, बेधक कीटों की बात चली है तो और कौन कौन से बेधक कीट हैं जो इस समय नुकसान कर रहे हैं फसल को?
1: इसके अलावा एक और बेधक कीट है जो कि उच्च तापमान में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, उसका नाम जड़ बेधक है।
0: अच्छा,
1: जड़ बेधक एक ऐसा कीट है जो कि अप्रैल से जून तक ये बहुत ही सक्रिय होता है। मानसून काल में थोड़ा सा ये निष्क्रिय हो जाएगा, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। इसके बाद जब गन्ना मेच्योरिटी की तरफ जाता है, मिठास उसमें पैदा होने लगती है, अक्टूबर से कटाई तक ये जड़ बेधक गन्ने को नुकसान लगातार पहुंचाता रहता है।
0: और मानसून आने के साथ और बेधक भी आएंगे?
1: हाँ, मानसून आने के साथ साथ जैसे ही गन्ना बनने लगता है उसमें गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाले तना बेधक का प्रकोप शुरू हो जाता है। उसमें प्लासी बेधक के नाम से एक कीट आता है जो बहुत ही खतरनाक कीट है, उसका भी प्रकोप शुरू हो जाता है। गुरदासपुर बेधक का कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो अन्य बेधक कीट है
0: और पोरी बेधक भी।
1: पोरी बेधक, बहुत ही अच्छा आपने बताया, पोरी बेधक जिसे इंटरनोट बोरर कहा जाता है, इसका भी प्रकोप उसी समय जुलाई महीने से ही शुरुआत हो जाती है और गन्ने को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।
0: कहीं कहीं पारिला की भी समस्या?
1: हाँ, इस साल अगर गत वर्ष की चर्चा करें तो गत वर्ष में बहुत ज्यादा पारिला की समस्या थी और इस समय उत्तर प्रदेश में मेरा भ्रमण काल चल रहा है, इस समय पारिला का बहुत ही कम प्रकोप है।
0: अच्छा,
1: कहीं कहीं इसके निम्फ दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके परजीवी कीट इपरिकेनिया मिलानोलिका भी दिखाई दे रहा है
0: पीछे पीछे
1: पीछे पीछे। तो दोनों का बैलेंस प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है जिसकी वजह से पारिला का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आगे नहीं बढ़ पा रही है।
0: तो किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि पारिला का प्रकोप हो गया है उनकी मिठास की फसल में?
1: किसान भाई अपने खेतों में जैसे ही खेत के अंदर घुसेंगे, पारिला एक ऐसा कीट है, चूसक कीट की संज्ञा में आता है, बहुत तेजी से ये फाइटर प्लेन की जैसे उड़ता है। इसकी शरीर बिल्कुल फाइटर प्लेन के जैसे संरचना होती है, भूरे रंग का होता है और आगे इसकी चोंच नुकीला होता है और इसके जो निम्फ होते हैं ये पिंक कलर के सफेदी के रंग के होते हैं और छोटा होगा। तो इस तरह से पहचान सकते हैं किसान भाई। किसान भाई के पहचानने का बड़ा आसान तरीका मैं बताऊं, सारे के सारे चूसक कीट भागते नहीं है।
0: अच्छा,
1: पाइला कीट एक ऐसा स्मार्ट कीट है जो उड़ता है जैसे ही किसान भाई अपने खेत में जाएगा।
0: इसका निम्फ और एडल्ट दोनों
1: उड़ते हैं,
0: यानी प्रौढ़ कीट भी और शिशु कीट भी।
1: शिशु कीट दोनों उड़ते हैं। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इस पे कीटनाशक का स्प्रे करके भी इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: लेकिन जो जैविक उपाय हैं उसको तो अपना सकते हैं।
1: हाँ, किसके अलावा चूसक कीट और भी हैं जो कि मुख्य चूसक कीट है इस उच्च तापमान में, जैसे काला चिकटा ब्लैक बग के नाम से जाना जाता है।
0: हाँ।
1: ब्लैक बग एक ऐसा कीट है जो कि पेड़ी फसल में ये ज्यादातर दिखाई देता है।
0: और इसकी पहचान?
1: ब्लैक बग के जो चींटे होते हैं सामान्य रूप से काले रंग के होंगे, जैसा नाम
0: यानी
1: है,
0: काले चीटे जैसे,
1: काले के चीटे जैसे हो दिखाई देते हैं। गन्ने की गोप में जो कि ऊपरी हिस्सा मुलायम हिस्सा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, उनके पीठ पे दो सफेद धारियां निश्चित रूप से होंगी, इसको देख के किसान भाई पहचान सकते हैं।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक है इनका तो?
1: अगर नुकसान का स्तर उसमें ज्यादा दिख रहा है, गन्ने की फसल पूरी तरह से पीली पड़ गई है, तो उसमें सबसे इसमें तो कीटनाशक का ही स्प्रे करना बेहद लाभप्रद होता है क्योंकि हमें त्वरित निदान करने की आवश्यकता है जिससे कि फसल नुकसान से बच

0: जा सके। एक और चूसक कीट है जो कि इस समय ज्यादातर दिखाई दे रहा है, उसका नाम है थ्रिप्स।
1: अच्छा,
0: थ्रिप्स ऐसी कीट है जिसे चींटी की संज्ञा दी गई है
1: जी।
0: इतनी महीन होती है और इसका आकार लगभग 2 मिलीमीटर छोटा होता है। किसान नंगी आंख से भी नहीं इसको देख सकता। इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये गहरे भूरे रंग का होता है और जो मेल होता है, नर होता है, वो थोड़ा हल्के रंग का होता है।
1: और ये पत्तियों के निचली सतह पे,
0: हाँ पत्तियों की ये निचली सतह पे कम दिखाई देता है। ब्लैक बग नीचे दिखाई देता है, वहीं थ्रिप्स सबसे ऊपर दिखाई देगा और वहां पे दिखाई देगा जहां पत्तियां ऊपर के हिस्सा नुकीला हो जाती है
1: जी।
0: पत्तियां मुड़ जाती हैं, जब पत्तियां मुड़ जाती हैं तो उसी मुड़ी वाले हिस्से में ये थ्रिप्स बैठा रहता है और रात के समय में और सुबह और शाम के समय में ये नुकसान पहुंचाता है।
1: तो जहां भी काला चिकटा या पैरिला की समस्या है या थ्रिप्स की समस्या है या कहीं कहीं सफेद मक्खी की समस्या है, तो इसका प्रबंधन एक साथ हो कैसे डॉक्टर साहब?
0: अब जैसे काला चिकटा है, पारीला है, इसके अलावा गुलाबी चिकटा भी आता है जिसे मिलीबग कहा जाता है, इसके अलावा थ्रिप्स है जो मैंने बताया, एक और सैनिक कीट है जो कुतर कर खाते हैं, ये भी एक प्रमुख कुतर कर खाने वाला कीट है।
1: और माइट की भी समस्या आगे बढ़ सकती
0: है। बिल्कुल, मकड़ी की भी समस्या आ रही है। मकड़ी की समस्या गन्ने में 30 से 120 दिन के बीच में आता है और मकड़ियां कई तरह की होती है, रेड माइट भी होता है और रस्ट माइट भी होता है, वेब माइट भी होते हैं, ब्लिस्टर माइट भी होते हैं, लेकिन समय समय से अलग अलग माइट आते हैं। इनसे भी बचाव करने के लिए कीटनाशक की यदि मैं चर्चा करूं और पायरिला की जैविक प्रबंधन की बात करूं, पायरिला एक ऐसा कीट है कि मेटराइजियम एक फंगस है, फंगस का स्प्रे करके भी हम पायरिला से बचाव किया जा सकता है।
1: यानी माचिस की एक डिबिया 10 ग्राम लगभग,
0: हाँ, इस तरह से
1: एक लीटर पानी के,
0: एक लीटर में 10^7 उसके स्पोर साइज होते हैं, उसका स्प्रे करके पारीला से बचा जा सकता है। अन्य चूसक कीट है उसके लिए चूंकि त्वरित निदान चाहिए फसल की सुरक्षा के लिए, तो कीटनाशक का स्प्रे करना किसान भाइयों को भी हद लाभप्रद होता है। कीटनाशक में यदि नाम की बात करता हूं तो प्रोफेनोफास 40%, साइपरमेथ्रिन 4% की ईसी में आता है, इसका कॉम्बिनेशन में आता है, बहुत सारे ट्रेड नेम बनाते हैं इसको, 300 मिलीलीटर 250 लीटर पानी के साथ मिला के किसान भाई स्प्रे कर दे, प्रति एकड़ की डोज में बता रहा हूँ, इससे निजात पा सकता है।
1: और
0: इसके अलावा अगर विकल्प के रूप में इमिडाक्लोरपिट 17.8 SL की दवाई आती है, 80 से 100 मिलीलीटर प्रति 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करके सारे चूसक कीट से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा और भी दवाएं हैं, क्विनालफास है, क्लोरपाइरीफास भी 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकता है, मोनोक्रोटोफास 36 SL है, 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में स्प्रे करके इन सारी चूसक कीटों से बचाव किया जा सकता है।
1: और जहां माइट या मकड़ी की समस्या है वहां
0: मकड़ी के लिए सल्फर और चूना का इस्तेमाल किसान भाई कर ले,
1: यानी घुलनशील गंधक।
0: हाँ, घुलनशील गंधक, सल्फर 400 ग्राम लेगा और 12 ग्राम चूना लेगा, लेने के बाद 250 लीटर पानी में उसको घोल के स्प्रे कर दे, तो जो भी मकड़ी है चाहे वो रेड माइट हो या वेब माइट हो बड़ी आसानी से समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा यदि कीटनाशक का भी स्प्रे करता है तो निश्चित रूप से ये मकड़ियां अपने आप स्वतः समाप्त हो सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहां बेधक कीटों की समस्या है, अलग अलग पीढ़ियां हैं, तो वहां समन्वित कीट प्रबंधन कैसे अपनाएं?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कृषक भाइयों के हित में। यदि चोटी बेधक की बात करें, अंकुर बेधक की बात करें, जड़ बेधक की बात करें, तो सबसे पहले समेकित कीट प्रबंधन के माध्यम से ही चोटी बेधक को खत्म किया जा सकता है। किसी एक विधि से चोटी बेधक जैसे खतरनाक कीट को खत्म नहीं कर सकते। इसमें से किसान भाई जागरूक हो चुके हैं और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 6390-25312 6389025312 6390-25312। इस समय कृषक भाई अपने फसलों का बेहद ध्यान देके निगरानी करते रहें क्योंकि कल्ले फूटने का समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, इसमें वर्टिकल ग्रोथ करने की आवश्यकता नहीं है, हॉरिजेंटल ग्रोथ पे आप ध्यान दें जिससे कि उसमें समन्वित कीट प्रबंधन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके इसका उपयोग करें जिससे कम से कम कीट लगे और आपके गन्ने में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का विकास हो सके।
1: डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गन्ने में कृषि रक्षा कार्य के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम

0: समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। राधेश्याम ने ग्राम खेतासराय थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि कुमारी पूजा 14 मार्च 2026 से लापता हो गई हैं। कुमारी पूजा की आयु 18 वर्ष, कद 5 फीट, इकहरा शरीर रंग सांवला है और चेहरा गोल है। सहबू ने ग्राम माझा थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि ननकू 23 फरवरी 2026 से लापता हो गए हैं। ननकू की आयु 58 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, इकहरा मजबूत शरीर रंग सांवला है और ननकू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ओशन गौतम ने थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी से सूचित किया है कि कलावती 10 अप्रैल 2026 से डिगसरी से लापता है। कलावती की आयु 72 वर्ष, कद 5.5 फिट, रंग गोरा और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

हम आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे के अग्रवाल का लिखा नाटक आस्था। संपादन एवं प्रस्तुति कीर्ति श्रीवास्तव की, निर्देशन अतिश श्रीवास्तव का।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के गाए अवधी युगल गीत। सबसे पहले सुनते हैं सोहर।

गंगा गीत आप सुन रहे थे वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के युगल स्वरों में। आप सुन रहे हैं अवधी युगल लोकगीत। कार्यक्रम चल रहा है लोक माधुरी। कार्यक्रम का अंतिम गीत झूमर, आवाजें वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला की।

वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के गाए अवधी युगल लोकगीत आपने सुने। संगतकर्ता थे नाल पर अनिल कुमार मिश्र, हारमोनियम पर चंद्रेश पांडे, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर बालकृष्ण शर्मा। अब आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी समाप्त होता है।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को है और अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र

0: यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए आज के शेष वकल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 11:10 से सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। पत्रकारिता की शिक्षा और रोजगार, इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर मनीष कुमार से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत कार्यक्रम युवा तरंग में। और कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको बता दें आज शाम 5:10। कार्यक्रम नई उड़ान लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर स्मृति जैन से रियाज अहमद की बातचीत। विषय है गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल। खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 6:50। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे वार्ता रेबीज से बचाव और वार्ताकार होंगे सुनील यादव। साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा से एक वार्ता जिसका विषय है किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह का काव्य पाठ हम आपको सुनवाएंगे आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में। संजय श्रीवास्तव के गाय भजनों का आनंद श्रोता ले सकेंगे आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। रात 10:00 सुनिएगा नाटक जिसका शीर्षक है आस्था। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे रविनाथ

मिश्र का तबला वादन। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 6:05 पर हम जानकारी देंगे ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई विषय के बारे में। स्वास्थ्य चर्चा में सवेरे 7 नीना सोनकर से जानिएगा अनारदाना स्वाद भी औषधि भी। विविधा कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सवेरे 7:10। जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15। उर्दू प्रोग्राम के तहत कल सवेरे 9:30 पर समाअत फरमाइएगा गुफ्तगु हजरत इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत। कल दिन में 1:15 पर अपराजिता कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी गीतों भरी कहानी गीतांजलि। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन। इस विषय पर डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। युवा तरंग कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं 5:10 पर। वहीं नई उड़ान कार्यक्रम होगा 5:45 पर। 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता सशक्त श्रमिक समर्थ भारत। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार सिंह। खेती किसानी कार्यक्रम में कल 6:50 पर आप सुनेंगे डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह से भेंट वार्ता। विषय है खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय होगा कल 7:45। हिंदी कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 8:00। किशोर चतुर्वेदी के गाय भजनों का आनंद श्रोता ले सकेंगे कल 8:10 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में। उस्ताद विलायत हुसैन खां का ख्याल गायन आप सुन सकेंगे कल के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको बता दें कल 10:30। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। 5:10 हुए हैं। अब सुनिए नई सोच और नई उमंग के साथ कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुष्ठा
1: और मैं हूं आपका प्यारा रेडियो दोस्त मानस।
0: दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और सफलता भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उन लोगों को समय देना भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे घर के बुजुर्गों की।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते दोस्तों, बल्कि वो एक घर की नींव और अनुभवों का खजाना होते हैं। उनके पास जीवन के ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो चाहकर भी हम किताबों में या किस्से कहानियों में नहीं ढूंढ सकते। जब हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी को उनके जीवन से जुड़ी हुई किस्से कहानियाँ सुनते हैं तो उसमें उनका संघर्ष, संस्कार, सीख और जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, ये सारा रस सिर्फ और सिर्फ उनकी ही छाँव में मिलता है। क्यों, सही कहा ना दोस्त?
0: बिल्कुल मानस। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां भी आ गई हैं, क्योंकि कई बार घरों में रहते हुए भी हम अपने मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं।

0: कि बुज़ुर्गों से बातें करने भूल ही जाते हैं, उन्हें समय देना हम भूल ही जाते हैं, और जबकि उनके लिए हमारा जो थोड़ा सा भी समय होता है ना दोस्तों, वो भी बहुत होता है, क्योंकि उसमें भी वो खुल कर हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ये विचार कुछ इस तरह से सीख बनते हैं कि हम अपने जीवन में कठिन से कठिन निर्णय लेते वक्त सिर्फ उनके दी हुई सीख और शिक्षा को ही स्मरण रखते हैं। दोस्तों, बुज़ुर्गों का सम्मान

0: अपने जीवन में कठिन से कठिन निर्णय लेते वक्त सिर्फ उनके दी हुई सीख और शिक्षा को ही स्मरण रखते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों का सम्मान केवल तीज त्यौहार या ऐसे किसी बड़े अवसर पर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के व्यवहार में भी करना चाहिए। इससे उन्हें प्यार और सम्मान की एक प्राप्ति होती है। उनसे प्यार से बात करना, उनसे आते जाते उनके हालचाल लेना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनसे राय लेना और हर बातचीत में समय समय पर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ों में जो हमें संस्कार सिखाती हैं और जो हमें उनका आदर करना सिखाती हैं, ये सभी छोटी छोटी आदतें उन्हें बेहद खुशी और जीवन में उनके एक नई उल्लास देती हैं। दोस्तों, घर के बड़े और आसपास के बुज़ुर्ग हमारे लिए समाज के एक ऐसा आईना होते हैं जो सीख के साथ साथ अनुभव भी सिखाते हैं। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल मानस। और बुजुर्ग हमारे जीवन की वो छांव हैं जिनके अनुभव और आशीर्वाद हमें हर कदम पर संभालते हैं और संबल देते हैं। तो आइए उनके प्रति सम्मान और अपनापन बनाए रखने का संकल्प लें और इसी भावना के साथ अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: दोस्तों, बुजुर्गों के साथ समय बिताने पर हमें उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने और समाज को समझने की यही प्रक्रिया आगे चलकर कई लोगों को ऐसे क्षेत्रों और में आने की प्रेरित करती है जहां वो दूसरों तक जानकारी और जागरूकता दोनों पहुंचा सकें। पत्रकारिता भी ऐसा ही एक क्षेत्र है जो समाज और लोगों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम से, जिसमें श्री मनीष कुमार ने पत्रकारिता की शिक्षा और रोजगार विषय पर जानकारी दी है और जिनसे बात की है डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी ने। आइए सुनते हैं।
2: पत्रकारिता में विपुल संभावनाएं हैं युवाओं के लिए। वो युवा जो ग्रामीण परिवेश से हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही संभावना बनती है, यह हमारा मानना है। लेकिन हमारे मानने में कितना कुछ सत्यता है, क्या कुछ बातें इसमें तकनीकी हैं जिन्हें हम लोगों को जानना चाहिए, सुधार करना चाहिए या फिर संभावनाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमारे स्टूडियो में मनीष कुमार जी हैं। डिग्री है, सब कुछ है, इसलिए बेहतर स्थिति में आपको भी ले चलने की इनमें सोच समाहित है। स्वागत है मनीष।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहली आपसे बात यही हम जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक क्षेत्र है, लेकिन यह माना जाता है कि शहरों के लिए है, गांव के लिए उतना नहीं है, आपका क्या मानना?
3: देखिए, समय के साथ सबकी परिभाषाएं बदलती हैं और हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि किस तरीके से शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जोर पत्रकारिता से जुड़े व्यवसाय का या उसका पत्रकारिता से जुड़े तमाम अवसरों के भी खुले हैं, क्योंकि भारत को गांव का देश माना जाता है। 70% आबादी लगभग अभी भी गाँव में रहती है। ऐसे में किसी अखबार के लिए, किसी मैगजीन के लिए या किसी न्यूज़ चैनल के लिए जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, संभावना है, वो गांव में है। इसी वजह से हम देखते हैं पिछले 10-15 सालों में हम देखें कि जितने भी अखबार हैं उनके अलग अलग संस्करण आ गए जो तमाम छोटे शहरों से निकलने लगे और ग्रामीण इलाकों के कई पेज होते हैं अखबारों में। टीवी चैनल्स में भी जो क्षेत्रीय चैनल हैं उनमें हमने देखा कि यूपी के, बिहार के तमाम जो पहले दिल्ली से चैनल संचालित होते थे वो भी राजधानी, अलग अलग राज्यों की राजधानियों से संचालित होने लगे और उनमें ग्रामीण इलाके की जितनी भी बातें हैं उनको बहुत जोर शोर उठाया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी को बहुत पहले से भी अब और व्यापक तौर पर उसको अखबारों में, मैगजीन्स में, इसके अलावा टेलीविजन चैनल्स में बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों के जितने मुद्दे आएंगे तो जाहिर तौर पर उसके प्रतिनिधि भी गाँव में होंगे, तो उन सबके लिए एक अवसर पैदा होता है।
2: बहुत अच्छी बात आपने कही कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं हमारे बीच, इन मुद्दों में अगर हम तलाशें अपने ज्ञान को या गांव में रहने वाले व्यक्ति को, युवा को, तो वह बेहतर स्थिति में आता है क्योंकि वो खेती भी बढ़िया से जानता है, क्या कब दिक्कत आती है, क्या कुछ उसके इनपुट्स होते हैं, इसके जो तकनीकी पहलू उनसे भी वो रूबरू होते रहते हैं समय समय पर अपने माध्यम से। जब ऐसी स्थिति है तो हम जानना चाहें कि सबसे पहले इसमें कि शिक्षा की व्यवस्था पत्रकार के लिए बहुत जगहों पर तो है नहीं, ऐसा मानना है, सोचना है, लेकिन है, वास्तव में नजदीक है, कैसे आगे कैसे बढ़ें उसमें?
3: देखिए, अब से 5-7 साल पहले तक ये व्यवस्था पत्रकारिता में पढ़ाई और डिग्री लेने की जो व्यवस्था थी वो शहरों तक सीमित थी। उसकी एक वजह ये थी कि शहरों में भी ये शिक्षा बहुत नई है अभी अपने देश में, क्योंकि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसके लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा की अब से पहले जरूरत नहीं महसूस हुआ करती थी। हमारे पहले के जितने भी पत्रकार हैं या जो भी बहुत नामी पत्रकार हैं, आज भी उनके पास पत्रकारिता की कोई बहुत माकूल डिग्री नहीं है, क्योंकि ये

0: ये एक पाठ्यक्रम में या पढ़ाई में शामिल नहीं था, क्योंकि पत्रकारिता को एक मिशन, एक संघर्ष के तौर पर लिया जाता था और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को लोग प्रदर्शित करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अब शैक्षणिक योग्यता की भी जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो कम से कम खुली गए हैं जहाँ से पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा लिया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है जो दूरस्थ शिक्षा के केंद्र हैं या दूरस्थ शिक्षा देने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यदि यूपी में बात करें तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यदि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू खुला विश्वविद्यालय है। तो उससे लोग पत्राचार के माध्यम से डिग्री या डिप्लोमा, जो ऐसे युवा हैं, जो ऐसे छात्र हैं जो पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं लेकिन अपने गाँव से शहर में आके रह के पढ़ाई नहीं करना चाहते, अपने गाँव में रह के वो दूरस्थ शिक्षा के तमाम कोर्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं और उनके लिए एक व्यापक अवसर भी खुल सकता है।
1: दूरस्थ शिक्षा का उतना बढ़िया रेपुटेशन नहीं है मनीष, मुझे लगता है, क्योंकि जो सामान्य विषय हैं जैसे कि वो आर्ट्स सब्जेक्ट जिसमें बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो पारंपरिक हैं, तो लोगों का रुझान उतना कम होता। कहते हैं कि अवसर नहीं मिलता, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो अच्छा ये ओपन यूनिवर्सिटी से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर रखा जाता है। एक सोच है, अब कहाँ तक सच्चाई है वो तो आदमी जो इंटरव्यू देने जाता है, सिलेक्शन होता है, उसके आधार पर वो कहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो अच्छे संस्थान हो कुछ अपने उत्तर प्रदेश में, उन्हें बताएं और वहाँ डिप्लोमा या बेहतर होगा कि डिग्री बोलें, कैसे बेहतर स्थिति को प्राप्त हों।
0: देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये जरूरी बात बता दूं कि आज के दिन भी, अभी भी पत्रकारिता शुरू करने के लिए या पत्रकारिता में आने के लिए रोजगार के तौर पर अभी भी डिग्री या डिप्लोमा की अनिवार्यता नहीं है। यानी अच्छा। कोई अखबार या टेलीविजन चैनल में ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछा ही जाएगा कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है कि नहीं है, बेहतर लेखन शैली और बेहतर भाषा शैली आपकी है कि नहीं, ये एक मूल आवश्यकता है जिसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर यदि डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होता है पत्रकारिता से जुड़े किसी भी कोर्स में, तो आपका भार, आपका वजन और बढ़ जाता है उस मौके के लिए, उस अवसर के लिए। आपने पूछा कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं। ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा मैं बताया, एक बहुत बेहतर है और उसकी फिजा काफ़ी समय से बदल भी रही है और बदली भी है। इसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे यूपी की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, आगरा में आगरा विश्वविद्यालय, झांसी में जो विश्वविद्यालय है वहाँ भी, इसके अलावा लखनऊ में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है वहाँ भी पत्रकारिता का कोर्स चलता है। तो जितने भी अपने विश्वविद्यालय हैं हर जगह, चाहे वो केंद्रीय हों, यूपी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके अलावा जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, सब जगह लगभग पत्रकारिता के कोर्स कराए जाते हैं जिसमें बैचलर डिग्री भी है, यानी स्नातक और परास्नातक दोनों की पढ़ाई होती है। यहां तक कि उसके आगे और जाएं तो एक शोध का जो होता है, रिसर्च होता है, पीएचडी होती है, उसका भी पाठ्यक्रम चलता है, वो भी कराई जाती है। तो अवसर बहुत हैं पढ़ाई के,
1: अवसर बहुत हैं पढ़ाई के, अवसर अपने उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। आपने गिनाया नाम, इतना है कि सभी यूनिवर्सिटियों में है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या इतना वाकई अवसर है, अवसर का तात्पर्य हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज ऐसी उपलब्ध हैं कि लोग पढ़ें और निकल जाएं, पत्रकार बन जाएं?
0: जाहिर तौर पर देखिए, पत्रकारिता के जितने भी कोर्स विश्वविद्यालय में चल रहे हैं उनमें सीट जरूर बाकी विषयों से कम है, क्योंकि हर आदमी पत्रकारिता का कोर्स नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो एक फीवर होता है, एक उसकी ललक होती है, वो सारे युवाओं पर हावी रहती है, पहले वो उसी मौके की तलाश करते हैं। लेकिन जो जुनूनी है शुरू से, जिन्होंने ये ठान रखा है कि उन्हें पत्रकार बनना है, उनके लिए बहुत अवसर हैं पढ़ाई के जहां वो अपने कोर्स पूरा कर सकते हैं,
1: कोर्स पूरा कर सकते हैं। ये सब सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दिया बहुत अच्छे ढंग से आपने कि क्या वस्तु स्थिति इस समय लोगों के मानस में हो सकती है, उसको आपने छाप के रूप में छोड़ा। लेकिन मनीष, एक बात और होती है कि जब हम प्रिंट मीडिया की तुलना करने लगते हैं या बात करते हैं तो अनमने से, जैसे रेडियो का नाम आज लीजिए तो टेलीविजन के सामने लगता है कि बौना है, लेकिन वास्तविकता जस्ट इसके विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा संभावना है या फिर जो प्रिंट मीडिया है यानी अखबार है उसमें है, किसमें है?
0: देखिए, सबसे ज़्यादा संभावना तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अखबारों में है, क्योंकि अखबारों में आज भी ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिपोर्टर्स या दूसरे लोग जो डेस्क वर्क करते हैं उनमें उनका मैन पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि अखबार हर जिले से लगभग उनका संस्करण निकलने लगा है, तब से ये मौके और भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा अखबार ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे ग्रामीण पत्रकार भी होता है, यानी तहसील स्तर पर गाँव में भी उनके अपने पत्रकार होते हैं जो रिपोर्ट

0: रिपोर्टर होते हैं जो अपने अखबार के लिए रिपोर्ट करते हैं तमाम घटनाओं के बारे में। टेलीविजन में ये अवसर धीरे धीरे बढ़ रहा जाए, क्योंकि जरूरत अब गांव तक भी टेलीविजन के भी पहुंचने की है, लेकिन अखबार आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ बना हुआ है। इसका एक उदाहरण बहुत छोटे से दिया जा सकता है कि आज भी कोई बात होती है तो हम यही नजीर देते हैं कि हमने इस अखबार में पढ़ा था। अभी टेलीविजन का ये दौर आना बाकी है जब हम ये कह सकें कि हमने इस टीवी पर देखा था। तो अखबार में अभी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, लेकिन टेलीविजन में जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, अब तो शहरों के भी अपने चैनल होने लगे हैं जिन्हें लोकल चैनल बोलते हैं, तो अब धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और आगे इसमें और ज्यादा आवश्यकताएं और ज्यादा संभावनाएं पैदा होंगी।
1: मनीष, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये संभावनाएं बढ़ रही हैं, विविधता उसमें आ रही है, लेकिन कभी आपने भी सोचा होगा कि प्राइवेट चैनल्स हैं जो आपने सरकारी और उसकी तुलना की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब देखिए ईटीवी को देख लीजिए, आज तक को देख लीजिए, एनडीटीवी है, एबीपी है, तमाम ऐसे ये सब थोड़े रेपुटेड हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छाप बनी हुई है। ऐसी स्थिति में देखते जाएं कि एक ही समाचार को सभी लोग जो है चलाते रहते हैं और दिन दिन भर उसकी चर्चा होती रहती है। रिपोर्टिंग का जो पक्ष है वह अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिस्कशन उसका जगह लेते चला जा रहा है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए रिपोर्टिंग में संभावना ज्यादा है?
0: देखिए, निश्चित रूप से एक देश का मूड है और पिछले समय में हमने देखा है कि उस मूड के हिसाब से राष्ट्रीय चैनल खासकर जो हैं वो उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे पिछले सालों में ये चलन हो गया है कि किस तरीके से किसी एक टॉपिक पे ही शाम के प्राइम टाइम के 3-4 घंटे डिस्कशन के निकल जाते हैं, लेकिन उसे भी देखने सुनने वाले हैं, क्योंकि टेलीविजन का बाकायदा एक ग्रामर होता है।
1: कहने का मतलब वो नहीं था कि देखने वाले तो हैं ही और उससे ज्ञान भी बढ़ता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग का जब हिस्सा कम होगा तो रिपोर्टरों की कम जरूरत पड़ेगी, मेरा कहना ये था।
0: जाहिर सी बात है, और इसमें कुछ न्यूज एजेंसीज के आने से भी कुछ संभावनाओं पे फर्क पड़ता है। जैसे एएनआई है, एएनआई का बहुत तंत्र पिछले समय में न्यूज एजेंसी का बढ़ा है, वहां से जो भी विजुअल्स या जो भी इंटरव्यू का पार्ट होता है जिन्हें बाइट बोलते हैं वो आसानी से मिल जाता है। बावजूद इसके अभी भी मौके पर अपने ढंग से विश्लेषण कर पाना वो एक उसी आदमी को ढंग से या वही रिपोर्टर कर सकता है जो उस संबंधित चैनल का है, क्योंकि एएनआई या कोई भी न्यूज एजेंसी एक ही नजरिए से बाकी सारे लोगों को दिखाती है, लेकिन जब एक व्यक्तिगत तौर पे कोई रिपोर्टर किसी मौके पर जाता है तो वो अपना विश्लेषण खुद करता है। तो ये एक फर्क जरूर है थोड़ा सा, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखबार और मैगजीन्स में जो व्यापकता है अवसर की वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि अखबारों की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। अभी हम जितने टेलीविजन चैनल देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अखबार पूरे देश में प्रसारित हैं, तो वो अवसर अखबारों में ज्यादा है। और पत्रकारिता में सीखने की पहली सीढ़ी यदि अखबार है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, सीखने की सबसे प्रारंभिक सीढ़ी प्रशिक्षण की वो सबसे बेहतर अखबार ही है।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा ही है, और पढ़ते पढ़ते आइए, पढ़ने की आदत पड़ी रहती है तो सीधा सीधे पहुंचिए तो लिखने पढ़ने का काम वहां भी रहता है, इसलिए और भी मन लगता है और आगे बढ़ने का जो ललक होती है वह भी समाहित रहने के कारण और बढ़िया माहौल बनता चला जाता है। चलिए, इतनी बातें जो हम लोगों ने की हैं बहुत हैं, और सभी युवाओं से ये अपेक्षा हम लोग करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं, वो इस तरफ आगे बढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। सभी यूनिवर्सिटीज़ में या ज़्यादातर कॉलेजेस में भी अब ये खुल गए हैं, तो वहाँ से शिक्षा लें और फिर इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों, ये थी पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ जो दे रहे थे श्री मनीष कुमार जी, जिनसे बात करी थी हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने। आशा करते हैं हमारे युवा साथी इस क्षेत्र के बारे में और इससे जुड़ी हुई संभावनाओं के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसे और बेहतरीन तरीके से समझा होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आज के खास सेगमेंट की।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट महान व्यक्तित्व का, जिसमें हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने विचारों से, कार्य से समाज को एक नई दिशा दी है। आज भी हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व की,

0: हम प्यार से द मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की।
1: जी हाँ, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले कलाम साहब ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करी।
0: बिल्कुल ठीक कहा, तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार से बाहर निकलकर समान और सारी समाज की कठिनाइयों को झेलने के बाद उन्होंने निकाल किया, और इसके साथ साथ उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक ऐसी कीर्तिमान स्थापित की जिससे उनका नाम आज भारत के महान वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मानस, और उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, मिसाइल विकास कार्यक्रम में उनकी अहम भूमिका के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उनके योगदान ने देश को नई पहचान दिलाई।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ सन 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका सबसे बड़ा मार्गदर्शन था युवाओं और युवाओं के प्रति युव शक्ति। उन्हें हमेशा युवाओं के प्रति एक रोमांचक और एक नया युग दिखता था। उनका विजन 2020 एक नए भारत और एक विकसित भारत की तरफ खोज था।
1: दोस्तों, आज भी उनके विचार लाखों युवाओं को आगे बढ़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी संदेश के साथ महान व्यक्तित्व में आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों ये था हमारा आज का युवा तरंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब चलते चलते आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम की चर्चा का विषय है कौशल विकास। साथ ही श्री राजेंद्र कुमार की भेंटवार्ता सुनेंगे, विषय नए व्यवसाय के लिए वित्तीय प्रबंधन पर, जिनसे बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। साथ ही कार्यक्रम में होगी प्रश्नोत्तरी और फिल्म संगीत भी। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अनुष्ठा और
1: मानस को इजाजत।
0: नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर कार्यक्रम नई उड़ान सुनने वाले अपने सभी साथियों का आपकी रेडियो दोस्त पारुल स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य, समाज की उम्मीद और मानवता का सबसे सुंदर स्वरूप होते हैं और इसीलिए हर बच्चे को शिक्षा मिले ये उसका मौलिक अधिकार है। शिक्षा मानव जीवन का आधार है। ये केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं बल्कि व्यक्ति को समाज में उपयोगी और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी है। लेकिन साथियों, आज के समय में सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। व्यावसायिक शिक्षा वो शिक्षा है जो विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय या पेशे के लिए तैयार करती है। इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल भी सिखाया जाता है। इसका महत्व इस बात में भी है कि ये शिक्षा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता ढांचा जैसी योजनाएं शुरू की हैं। दोस्तों, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत पड़ता है। इससे रोजगार सृजन होता है और बेरोजगारी की समस्या का समाधान मिलता है। कुशल मानव संस्थान से उत्पादन में वृद्धि होती है। ये महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। आज के समय में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म व्यावसायिक शिक्षा का हिस्सा बन गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकें प्रशिक्षण को आधुनिक बना रही हैं। इससे विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनते हैं और नवाचार व उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना होगा। साथियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाना है, जिससे कि हमारी सफलता और जीवन यापन किसी और पर निर्भर न रहे और हम गर्व से कह सकें कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है।

0: अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: साथियों, अपनी किस्मत, अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में रखने के लिए जैसे समान शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा हम नागरिकों के लिए आवश्यक है, वैसे ही समाज और देश की प्रगति के लिए सामाजिक समरसता अति आवश्यक है। आज हमारी संकल्पवाणी 1947 तक के संकल्प में सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण समरस भारत का संकल्प विषय पर हमारी साथी रीना श्रीवास्तव ने की लोगों से बातचीत और जानी उनकी राय, तो आइए सुनते हैं हम भी।
2: दोस्तों नमस्कार। मुहावरे और कहावतें चाहे किसी भी भाषा में हो अपने आप में जीवन का दर्शन होती हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, मतलब ये कि किसी चेन की सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही उस चेन की असली मजबूती होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कड़ियां कितनी मजबूत हैं, जो कड़ी सबसे कमजोर है वो सबसे पहले टूट जाएगी और इस तरह पूरी चेन भी बिखर जाएगी। यही जीवन दर्शन परिवार और समाज पर भी लागू होता है, यानी समाज में समरसता ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में हमने ये जानने समझने की कोशिश की कि जो लोग धीमे चल रहे हैं, समाज में आगे नहीं आ पा रहे, उनकी क्या परिस्थितियां हैं।
3: क्या नाम लगा आपका?
4: हमारा नाम साजिद है।
3: ये जो आपका काम है पाए वगैरह बनाने का, लकड़ी के पाए आप बना रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं आप?
4: ये लगभग हो गए 35 साल हो गए।
3: तो किस तरह का काम आपका है?
4: हमारा काम हर मेल का है, खराद में।
3: जैसे?
4: जैसे फर्नीचर में दीवान है, बेड है, सेंटर टेबल है, उसके जो वगैरह वगैरह पाए होते हैं खराद के, वही है खराद में। उस तीन ही काम है, तीन पीढ़ी चला आ रहा है। बाबा बैठते थे, पिताजी बैठते थे, फिर भाई बैठता था, फिर हम बैठते हैं। लेबर पे काम करते हैं, जैसे कस्टमर आया पाया ही लेके वही बनाते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं बी कॉम में, बिटिया बीए में, छोटा वाला है सिक्स में, अभी पढ़ाई के चल रही है उन लोग। ये काम बेकार हो गया खराद का, अब फाइबर आ गया है, लोहा आ गया, एल्युमिनियम आ गया, लकड़ी काम हो गया बेकार, रमाई तला गए काम।
3: आपका नाम बताइएगा?
5: अंबरलाल।
3: आपको सब लोग पंडित जी बुलाते हैं?
5: जी जी।
3: तो ये जो आप पोंछा लगाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम क्यों नहीं किया?
5: और कोई नहीं कर पाए।
3: क्यों?
5: अब ये उम्र कहाँ करने की है।
3: नहीं, जब उम्र थी उस समय पे तो ये जो पोंछा आप लगाते हैं ये उसी समय आपने लगाया? ये लगाते हुए कितना टाइम हो गया?
5: अरे काफी दिन हो गया।
3: जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके लिए सरकार की स्कीम्स भी हैं, कुछ सहायता भी मिलती है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, उन सब चीजों के बारे में आपको मालूम है?
5: हमको कुछ मालूम नहीं है।
3: जैसे पेपर में पढ़ा हो, रेडियो पे सुना हो, टीवी में देखा हो,
5: इसके पीछे हम नहीं गए।
3: इस काम को करके आप खुश हैं?
5: खुश हैं।
3: भैया आपका नाम बताइए।
6: अमन।
3: अमन, आपकी जो शॉप है ये आपके पापा की है? आप यहाँ बैठे हैं, मतलब आप शॉप देख रहे हैं अपनी, तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी करते हैं आप?
6: बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ।
3: तो आगे क्या इरादा रखते हैं?
6: आगे का तो अभी कुछ सोचा नहीं है।
3: इतनी सारी सरकार की स्कीम्स हैं, बाकी सहायता भी मिलती है, तभी आपने पता किया इन सब चीजों के बारे में?
6: जी नहीं।
3: तो आगे आप इसी शॉप में बैठना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं?
6: नहीं, कुछ और करना चाहते हैं।
3: क्या?
6: जी अपना इससे ही रिलेटेड,
3: मतलब
6: कि यूं समझ लीजिए कि अपना कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस टाइप का है।
2: हमें जो मिलता है हम ले लेते हैं, कभी परिस्थितियां हमें कुछ देती हैं तो कभी हम ये नहीं सोच पाते कि जितना हम देख पा रहे हैं उससे आगे भी हम जा सकते हैं।
3: आपका नाम बताइए।
5: बाबा जी नाम है।
3: चाय का जो आपका ठेला है कितने सालों से लगा रहे हैं?
5: ये करीब 20 साल हो गए।
3: इसके पहले कोई और काम भी करते थे या यही?
5: दुकान भी थी बगल में।
3: कभी कोई दूसरा काम करने की नहीं सोचा?
5: दूसरा काम क्या करें, जो

0: कर पाते थे, उसके लिए धन भी तो होना चाहिए उतना। आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ी चीज है, कम पैसे में जो काम चल जाए वही करना चाहिए ना। अब जो अब जैसी आर्थिक दृष्टि उसी हिसाब काम कर रहे हैं।
1: तो लेकिन सरकार से लोन वगैरह भी तो मिलता है?
0: मिलता है,
1: उसकी स्कीम्स भी हैं, जैसे जो लोग ठेला लगाते हैं उनके लिए अलग से स्कीम भी चलाती है सरकार।
0: तो हम गए तो वहाँ बैठे रहे, एक दो घंटे गए चले आए, फिर उन्हों का फार्म वार्म दिए भरे भरे चले आए, कल आना परसों फिर चले वापस।
1: तो आपने आगे नहीं उसके बारे में सोचा?
0: गए दो तीन चक्कर वहाँ, कहले कल आना फिर परसों आना, लिखा नगर निगम में भी गए थे हम, हमने वो भी करा रखा रजिस्ट्रेशन भी, उसमें कहा भी, बुलाया भी हमको, गया वहाँ हम गए दो तीन बार,
1: लेकिन कोई बात नहीं बनी।
0: नहीं नहीं चले आए, क्या करें, अब यहाँ जनता भी देखे और वहाँ दो दो घंटे बैठे भी रहे।
1: भैया क्या नाम लगा आपका?
2: हमारा भगीरथ नाम है।
1: यहाँ आप पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? कितने समय से काम कर रहे हैं आप?
2: हमको यहाँ अपने यहाँ हो गए 20 साल।
1: इसके पहले आप कोई और भी काम करते थे?
2: मैं यही काम करता शुरू से।
1: यहाँ पे काम की शुरुआत कैसे हुई?
2: काम की शुरुआत यही हुई, मतलब जो है काम यहाँ सीखने आए थे, तनख्वाह मिलती थी, अपना काम करते हैं।
1: अब 20 साल हो गए आपको, कुछ और करने का विचार नहीं किया मन में?
2: अब विचार है, आप जो पढ़े लिखे ना, ये जो है पढ़े लिखे हैं, नौकरी यही कर रहे हैं।
1: बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं?
2: अब जो ऊपर वाले तैयारी कर रही है सचिवालय की।
1: अच्छा, सचिवालय की तैयारी करवा रहे हैं। अगर मौका मिला होता, कभी आपने पढ़ाई की होती है और आपको कोई मौका मिले, तो आप और क्या करना चाहेंगे?
2: अच्छा, मौका मिले तो नौकरी, कोई मान लो बच्चे हैं, बच्चे नौकरी मिल जाए। हम तो 40-50 साल उम्र हमारी हो रही है, अब नौकरी कहाँ मिल पाएगी सरकारी प्राप्ति।
1: नहीं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या बनना चाहते हैं?
2: मौका मिल जाए कोई बढ़िया, अच्छी नौकरी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है।
1: अच्छा, तो
2: मतलब धूप बयारी में काम करते ऐसे मालूम मिल जाए बुढ़ापा में कहाँ इतनी मेहनत कर पाते हैं, बैठे वाली नौकरी मिल जाए ऐसे
1: तो बहुत अच्छा है,
2: बहुत अच्छा है।
1: कोई हुनर हुनर नहीं सीखना चाहते?
2: हुनर काम नहीं सीख पाएंगे हम।
1: नहीं, अब तो नहीं सीख पाएंगे, मौका मिला होता आपके?
2: मौका मिलता था ले सीख लेते हैं।
1: आपका नाम भैया?
3: राजन।
1: आप ये ऑटो चलाते हैं, लगभग कितने समय से चला रहे हैं?
3: पहले मैं ऑटो चलाता था काफी साल से, फिर मैंने रिक्शा चलाया, अब फिर दोबारा मैं ऑटो चला।
1: ऑटो और रिक्शा चलाने के अलावा कोई दूसरा काम आपने क्यों नहीं किया?
3: और कोई काम है ही नहीं, अनपढ़ आदमी है, कोई काम आता ही नहीं, पढ़े लिखे हम है नहीं जो दूसरा काम करें, इसमारे ऑटो चला।
1: तो ये बताइए कि जैसे बहुत सारी स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, जिसमें कि आप कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं, कुछ फायदा उठा सकते हैं, तो उनका कभी लाभ लेने की सोचते हैं?
3: लाभ लेने का क्या है, हमारे इतने पैसे नहीं होते जो किस्तें दे सकें, इस बारे हम सोचते ही नहीं, इतनी कमाई नहीं रही है अब ऑटो रिक्शों में।
1: अच्छा।
3: जो आगे हम कुछ लेके और उनको वापस कर सकें, इतनी कमाई रह नहीं गई है, इस ये नहीं बात है।
1: अगर मौका मिलता है तो आप कौन सा काम करते?
3: मौका मिलता
1: जी
3: ये तो सोचा ही नहीं और अभी तक नहीं सोचा, लेकिन ये है जो हमने जो हुनर लिया है गाड़ी चलाने का, अब तो यही है बस, दूसरे की तो सोच अब है ही नहीं हमारे मन में, उसी चीज की सोच नहीं है।
1: अच्छा, तो बहुत लोग जैसे ओला उबर ऑटो चलाते हैं, आप भी इस तरह से काम करते हैं या आप सिर्फ सवारी उठाते हैं?
3: ओला उबर में पढ़े लिखे होते थे, ओला उबर चलाते, पढ़े लिखे नहीं है, इस बारे हम ऐसे चलाते हैं।
4: साथियों, हमारे जीवन में भाग्य भी है और कर्म भी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। आइए अब आपको सुमन गुप्ता जी की बातें सुनवाते हैं, जो वैसे तो गृहिणी हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर उन्होंने बहुत काम किया है।
5: आपका नाम बताइए।
6: मेरा नाम सुमन गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम हर किशनदास गौ आधारित उत्पाद है।
1: अच्छा।
6: इसमें गाय से बनने वाले उत्पाद हैं कई तरह के
1: जी।
6: और सत्तू भी बनते हैं हमारे यहाँ, खाद भी हमारी कुछ दीदियाँ खाद भी बना रही हैं।
1: अच्छा।
6: तो इस तरह हमारे 8-10-12 प्रोडक्ट हैं जो छोटे छोटे चल रहे हैं सब्जी का दीदियों का मिला के।
1: जी जी। तो आपका जो स्वयं सहायता समूह है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, तो उसमें कितनी महिलाएं हैं?
6: मेरा स्वयं सहायता समूह है दुर्गा, उसमें तो 10 महिलाएं हैं, मगर हम मास लाख से वीआईपी के रूप में काम करते थे, तो हमारे साथ बहुत ही महिलाएं जुड़ गई।
1: ये जो शुरुआत हुई आपकी स्वयं सहायता समूह में जुड़ने

0: इसके पहले आप क्या करती थी?
1: हाउसवाइफ थी, उसने घर के बाहर नहीं जाना, घर के दरवाजे के बाहर कोई देख ना ले आपको, ऐसे पोजीशन था गाँव के अंदर।
0: जी जी।
1: तो जब हम समूह सहायता समूह में जुड़े और उसके उसमें जुड़ने के साथ ही तुरंत ही हमारा चयन समूह सखी पंचायत में समूह की सखी के रूप में हो गया। तब मैं थोड़ा थोड़ा बाहर निकली, उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग पे गई और आई तो उसके बाद हम समूह में निकलने लगे, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे, सबसे संपर्क होने लगा। फिर 2019 में बीआरपी का चयन हुआ।
0: जी।
1: जब 2019 में मेरा बीआरपी का चयन हो गया,
0: बीआरपी मतलब
1: ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, वो ट्रेनिंग देने का काम होता था समूह की महिलाओं को, समूह ट्रेनिंग देने का काम होता था। तो उससे हम पंचायतों में जाते थे, समूह की महिलाओं को समझाते थे और ट्रेनिंग देते थे।
2: कहने का मतलब ये है कि गृहिणियां भी आगे बढ़कर समाज और राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकती हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो। वैसे सामाजिक रूप से देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, अगर ये मदद उन तक पहुंचा दी जाए तो वो भी मुख्य धारा का हिस्सा बन सकते हैं। सामाजिक समरसता के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों को ऊपर उठाना है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या कहीं पीछे रह गए हैं। ऐसे में हमें उन लोगों से जरूर बात करनी है जो कि उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो कि सामाजिक रूप से पीछे हैं और उन्हें आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अब हम बात कर रहे हैं शालीन जी से, जो कि सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और एनजीओ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में काम कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत, आपने बारे में बताएं।
3: नमस्कार सभी को, मेरा नाम शालीन है और हम समाज के उन पिछड़े वर्गों के साथ काम कर रहे हैं जो वंचित वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, और वो जिनके पास पढ़ाई नहीं है, जो मेन धारा से जुड़े हुए नहीं है, या उन महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं हम अपने संस्था के द्वारा जिन महिलाओं को कभी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई या वो अपने जीवन में कुछ बनना चाहती हैं, स्वावलंबन करना चाहती हैं। तो हम इन महिलाओं और बच्चों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और केवल लखनऊ में नहीं, बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि लखनऊ के आसपास के कई गांवों में भी हम लोग की ये मुहिम चल रही है।
2: अलग अलग ग्रुप्स में समूहों के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, किस तरह की कमियां पाते हैं, जो पीछे हैं उनमें क्या कमी आपने देखी और किस तरह से आप ये पाते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा में नहीं है?
3: जो मेजर कमी हम लोग को दिखती है इनमें, एक तो पढ़ाई की बहुत ज्यादा कमी है
2: जी।
3: और दूसरी, पढ़ाई की कमी होने के कारण ये लोग जो हैं ये अपने राइट्स को, अपने चीजों को बिल्कुल नहीं पहचानते, नहीं ना ये जानते ना उसके बारे में इनको कोई ज्ञान है। तो हम लोग इन वर्गों को सबसे पहले छोटी छोटी पाठशालाओं के द्वारा पढ़ाई से जोड़ते हैं और फिर उनको आगे ला करके और उनके ही चीजों से जोड़ते हैं, जो उनके राइट्स हैं या जो उनके लिए बेनिफिशियल चीजें, हम उनसे इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो हमको सबसे बड़ा लूप होल लगता है इनके और हमारे जो मेन धारा के लोगों में, वो एक पढ़ाई है और एक इनके अवेयरनेस की लैक है। ये एक बहुत बड़ी खाई दिखती है इस चीज पे।
2: आपका सामना कुछ ऐसे लोगों से भी हुआ होगा जो कि पहले बहुत ज्यादा मुश्किल में थे और कुछ सहायता मिलने के बाद वो मुख्य धारा में आए या उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया, तो ऐसे कोई उदाहरण हमारे साथ साझा करना चाहें?
3: जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपने एनजीओ में जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आज से 10 साल पहले 2014 में, तो वो एक ऐसे बच्चे से स्टार्ट हुआ था जो वंचित वर्ग का था और जिसके पास खाने तक को सामान नहीं था, कुछ सोचते हुए निकल रहे थे। तो उस बच्चे को जब हम लोगों ने देखा कि वो कूड़ेदान से खाना खा रहा है
2: जी।
3: तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने उस चीज से हटाया और उसको खाना उपलब्ध करा करके फिर अपनी पाठशाला में लेकर के आए और पाठशाला में पढ़ते पढ़ते आज उस बच्चे की स्थिति ये है कि मेन धारा में भी जोड़ा गया और आज SBI के ब्रांच का जनरल मैनेजर बना बैठा है। तो एक तो वो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। उसके अलावा हमारी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने, जो पढ़ी लिखी तो नहीं है और शायद उम्र की वजह से वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती हैं, तो हम लोगों ने उनको उनके मतलब की चीज यानी उनके स्वावलंबन पे काम करना शुरू किया। तो उनको पहले हम लोग ने, क्योंकि हमारे एनजीओ में आप लोग सब भी जानते हो कि पुराने कपड़े बहुत आते हैं
2: जी जी,
3: हर एक कोई कपड़े डोनेट करता है, तो जो यूज के कपड़े नहीं होते थे हम लोग ने उससे उन लोगों को दरियां, चटाइयां और कालीन बनाने सिखाए और वो आज उन कपड़ों से ही कर करके वो

0: इतनी मेन धारा में जुड़ी हुई हैं कि उनका अपना व्यवसाय है जो कि शायद चार पैसे के लिए भी तरसती थी, अपने बच्चों को कुछ दिला नहीं पाती थी। आज उनके पास अच्छा पैसा आ रहा है इन्हीं पुराने कपड़ों को से कुछ अच्छी चीजें बना बना कर।
1: तो सपना ये है कि हमारे समाज में समरसता हो, न कोई बहुत आगे रहे न कोई बहुत पीछे, हर एक को मौका मिले। लेकिन इसके लिए भाग्य को कर्म से, निराशा को हिम्मत से और व्यक्तिवाद को बंधुत्व से तोड़ देना होगा। इसी संकल्प के साथ अब अपने रेडियो दोस्त रीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

साथियों, इसी सकारात्मक संकल्प के साथ आइए अब आपके साथ साझा करती हूँ आज के कुछ विकास समाचार। भारत सरकार ने वाहनों में 100% इथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। E100 एक ऐसा फ्यूल है जिसमें लगभग 100% इथेनॉल होता है और इसमें पारंपरिक पेट्रोल नहीं मिलाया जाता है। इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जिसे गन्ना, मक्का, चावल और कृषि अपशिष्ट जैसी चीज़ों से तैयार किया जाता है। सरकार की माने तो भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में सरकार E100 फ्यूल के जरिए इम्पोर्टेड तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है। देश में तैयार होने वाला इथेनॉल के जरिए तेल आयात पर होने वाले खर्च भी घट सकते हैं और बताया जा रहा है कि इसका एक बड़ा फायदा किसानों को भी मिलेगा। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार के अनुसार इथेनॉल प्रोग्राम की वजह से अब तक कच्चे तेल के आयात में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है और किसानों को करीब 80,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हुई है। और साथियों, जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार 15 जून यानी कि आज से कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी हैं। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ को कम करेगा और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए उड़ान को बहुत आसान बना देगा। जेवर एयरपोर्ट पर सोमवार को पहली फ्लाइट उतरी। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट लखनऊ से ही गई। जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है जो पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकता है। इसी के साथ साथियों, पिछले 9 वर्षों में गंगा नदी में औद्योगिक प्रदूषण में लगभग 7% की कमी दर्ज की गई है, जिससे नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मिली है, जिसे केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए शुरू किया था। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को नियंत्रित करने और शोधन संयंत्रों की स्थापना से प्रदूषण घटा है। और अब साथियों, कुछ रोजगार समाचार। बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शानदार मौका दे रही है। सेंट्रल बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए बैंक पूरे देश में कुल 4500 खाली पदों को भरने जा रहा है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 12 जून से हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जून है। बैंक द्वारा उसकी ऑनलाइन परीक्षा जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में आयोजित की जा सकती है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट centralbank.bank.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाले यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्रीय परिषद CCRUM ने ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर भर्ती निकाली है। 179 पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्य उम्मीदवार इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसकी ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद आप आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन के ही जरिए किया जा सकेगा, इसीलिए योग अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सही और उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, इसी क्रम में आइए एक

0: उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: और साथियों, इसी के साथ हमारी घड़ी इशारा कर रही है कि आज के कार्यक्रम से मुझे आपसे लेनी होगी इजाज़त। आप अपने सुझाव और अपनी प्रक्रिया ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए आपकी दोस्त, आपकी रेडियो दोस्त पारुल का नमस्कार।
1: बीड़ा के सब रस ले।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, आज शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे वार्ता जिसका विषय है रेबीज से बचाव, और वार्ताकार होंगे सुनील यादव। साथ ही साथ आप सुनेंगे डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा से की गई एक वार्ता जिसका विषय है किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। संजय श्रीवास्तव के गाए भजनों का आनंद आप ले सकेंगे आज रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। रात 8 बजे होगा हिंदी कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह का काव्य पाठ। आपकी पसंद कार्यक्रम में हमें ईमेल भेजिएगा आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर, और कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको बता दें आज रात 9:30। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को 7:45 पर।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः संधेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च संधेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकान्तरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् AI इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास

0: पंचू जय हिंद।
1: सरला बहनी,
0: हाँ विनय भैया,
1: देखो एक समय रहा कि जब हमका तनके तनके काम के बहुत दूर दूर दौड़े के यहाँ पड़त रहे,
0: तो कभी
1: जैसे कि कोनो जमीन का कागज लाए खो तो कचहरी जाओ, अब पता लगा हुआ जो है तहसील गए हो और लेखपाल साहबाज नहीं, डीएम साहब नहीं बैठे हैं, तो बड़ी दिक्कतें होती रहे।
0: और भैया यही सब देखो, अभी जब घर में पढ़ाई लिखाई करो, कोनो फार्म भरे के रहा पड़त रहा तो दूर जाओ कहूँ फार्म भरावे, अब तो घर बैठ के करो।
1: बात है कि पैसा घर से मंगाओ, जब पंच पढ़ित रहा यहाँ से तो जितने पैसा किराया में लग जाता है उतने पैसा घर से लगता है। तो बहुत सारी दिक्कतें रहे, लेकिन देखो अब जो नई सरकार अपन आई, नई सरकार नया एक सोच लाई, तो एक ऐसा क्या हुआ कि हर चीज हर व्यक्ति तक सुलभ हो जाए, चाहे कोनो जानकारी हो चाहे कोनो रुपया पैसा हो। अब रुपया पैसा का होता कि एक क्लिक पर तुरंत पहुंच जाते पैसे, ना नकली नोट का झंझट, ना कटे फटे नोट का झंझट, ना फुटकर के जैसे कहा था कि 12 रुपए का सामान भाव, तो कहा था भैया 12 रुपए तोड़ा के लाओ हम।
0: हाँ, और रस्तम गिरेऊ के झंझट,
1: हाँ गिरेऊ के झंझट, जेब कट जाए, चोरी चकारी हो जाए, तो वो सब चीजें के यहाँ देखो बहुत सारी चीजें जो है बड़ी आसान हो गई हैं और एक अंगुली की टिप के नीचे आ गई, चाहे अपन जमीन से जुड़े कागज हों, चाहे आपका मंडी भाव हो, मतलब जो भी हमारे जीवन की जरूरतें हैं, चाहे अपन कोनो सरकारी योजना हो, तो वही सब अब घर बैठे व्यक्ति पा सकते हैं। और यू कमाल है डिजिटल इंडिया के,
0: बिल्कुल डिजिटल इंडिया कमाल है विनय भैया। और देखो इतनी अच्छी बात है कि जो है सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत सुलभ हो गया है, मतलब कि तनिक सी सावधानी की जरूरत है।
1: सावधानी से जरूरत यू है कि देखो इसमें मौसम भी बहुत तेज हो रहा है, यानी कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, तो सावधानी अपन डिजिटल जिन काम करो मत रखबे करो, साथ साथ मौसम की भी सावधानी रखो। कहते हैं गर्मी बहुत तेज पड़ रही और इस समय अगर सटीक जानकारी ना हो या सटीक परहेज ना हो तो नुकसान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया, कोनो क्लिक करे इस पहले हम सबको एक जांच परख लेक चाहिए, तब रुपये पैसे भेजो। और अब जो गर्मी की बात करो भैया, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, ये हमें अपने स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा सबका ध्यान रख की जरूरत है। और वैसे अपने एक जानकारी भी लेके आए हैं आज अपनी बैठक में।
1: बिल्कुल देखो अपने बैठक में आज डॉक्टर स्मृति जैन बहनी आई हैं, ये बता रही हैं गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल, इनसे बात कही कह रहे हैं रियाज अहमद भैया, तो इसका सुना जाए।
0: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: श्रोताओं नमस्कार, जब बात आती है अपने स्वास्थ्य के देखभाल की तो मौसम कोई भी हो, उसकी अधिकता जब हो जाती है, हद से ज़्यादा जब कोई चीज़ होने लगती है तो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगती है। अगर हम बात करें गर्मियों की तो आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, इसमें तापमान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ज़्यादा सतर्कता ना बरती तो हम लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

0: इसीलिए आज हमने गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर स्मृति जैन साहिबा को, जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में लोगों को सबसे अधिक कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं जिससे कि ग्रामीण जन परेशान होते हैं।
1: देखिए, गर्मी के मौसम में आजकल तो लू, जिसे हम लोग इंग्लिश में हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं
0: जी,
1: वो बहुत कॉमन है। लोग काम करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पानी कम पीते हैं और तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी उनको हो जाता है
0: जी।
1: और पानी अगर साफ नहीं पी रहे हैं तो उसकी वजह से पेट में संक्रमण भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लोगों को बहुत शौक होता है बाहर खाने का, लेकिन वो देखते नहीं है कि पानी किस तरह का इस्तेमाल करा गया है, खाना कितनी देर से बाहर रखा हुआ है
0: जी।
1: तो फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और त्वचा संबंधी भी समस्याएं होती हैं। गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने के चांसेस होते हैं, हीट स्ट्रोक, लू लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं।
0: आपने बात की लू की, यानी कि हीट स्ट्रोक की, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिए कि आपको लू लगे ही ना, आपको यही बचना है कि आपको लू लगे ही ना। इसके लिए आप तेज धूप में निकलने से बचिए, सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक कोशिश करिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप मत निकलिए बाहर, अगर ज़रूरी भी है तो लगातार तेज धूप में मत रुकिए, थोड़ी थोड़ी देर में आप बीच में रेस्ट ले लीजिए। इसके सिवा पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। ORS आप जीवन रक्षक घोल है, वो हर जगह मिलता है, बहुत सस्ता होता है, वो आप पी सकते हैं, बना के रख लीजिए 1 लीटर पानी में और उसे दिन भर पी सकते हैं। नींबू पानी भी पी सकते हैं, छाछ है, नारियल पानी भी आजकल खूब मिल रहा है, वो भी पिया जा सकता है। ताजे फलों का सेवन करें, ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं और कपड़े भी हल्के पहने, सूती कपड़े का प्रयोग करें।
0: एक चीज़ और आपने बताई कि फूड पॉइजनिंग यानी कि खाद्य विषाक्तता, अगर इसकी समस्या आ जाती है तो लोगों को क्या क्या सावधानियां इसे बरतनी चाहिए, और अगर ये समस्या आ जावे तो इसका क्या उपाय है, इससे कैसे बचा जाए?
1: सबसे पहले तो उसको बचने का तरीका यही है कि आप घर पे ही बना हुआ खाना खाइए, ताज़ा भोजन खाइए, और बाहर का खाना जैसे ठेले वगैरह का खाना या फिर भोजनालय वगैरह का खाना अगर आप खा भी रहे हैं तो आप खाने से पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि वो ताज़ा है कि नहीं है
0: जी।
1: दूसरी चीज़, अगर वो हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसके लक्षण पहचानना होगा। जो भी मरीज़ होगा उसको बहुत ज़्यादा पतली लैट्रिन आ सकती है, उल्टियाँ लग सकती हैं, अचानक से कमज़ोरी लग सकती है, तो जब भी ऐसा हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर दिखाएं तुरंत, इसमें लेट नहीं करना चाहिए।
0: और डॉक्टर साहब, एक समस्या और आ जाती है गर्मियों के मौसम में जिसको हम कालरा या डायरिया के नाम से जानते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं?
1: कॉलरा देखिए एक इन्फेक्शन होता है, तो वो ज़्यादातर गंदे पानी के प्रयोग से होता है, तो पानी हमेशा साफ़ सुथरा पिए। आपके पास अगर साफ़ पानी का व्यवस्था नहीं है तो आप पानी को पका के ठंडा करके रख सकते हैं सुबह एक साथ और उसको पी सकते हैं पूरे दिन। और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले हाथ धुलिए अच्छे से
0: जी।
1: जहाँ भी खाना जो है, ताज़ा खाना, हल्का खाना और अपने घर का बना हुआ खाने का प्रयोग करिए। अगर किसी को कॉलेरा हो गया है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डायरिया होती है, चावल के पानी जैसी लैट्रीन होती है, बच्चे को बिल्कुल पतली पतली ऐसा लग रहा है कि चावल का पानी आ रहा है बाहर, तो उसमें तुरंत ही बच्चे को भर्ती करने की, बच्चा या मरीज जो भी होता है उसे तुरंत भर्ती करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पानी और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो शरीर में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। और जब तक मरीज हो घर पे है तब तक उसको बहुत सारा पानी पिलाएं, ORS का घोल बनाएं, जीवन रक्षक घोल बना के पिलाना शुरू कर दीजिए और उसको अस्पताल लेके जाएं तुरंत ही, इसमें भी विलम्ब नहीं करना चाहिए।
0: और डॉक्टर साहब, कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले बुज़ुर्गों और बच्चों के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है, तो अगर गर्मी में बचाव की बात करें तो अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को इससे बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं?
1: उनके लिए तो सबसे पहली सलाह यही है कि वो लोग निकले ही नहीं बाहर, घर से बाहर
0: जी,
1: सुबह 11 से 4 बजे जब धूप तेज होती है उस टाइम घर में ही रहें। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी बुज़ुर्गों को तो पीना ही चाहिए, छोटे बच्चों का अगर बहुत छोटा है तो 1 से 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। पहली बात तो मक्खियों के लिए कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, भोजन खुला ना छोड़ें, उस पर बैठेंगे तभी आपको उससे दिक्कत

0: तो हो सकती है उससे इन्फेक्शन होगा। और मच्छरों को भगाने के लिए तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर से बचने के लिए जो क्रीम आती है या स्प्रे आता है उसको भी यूज़ करना चाहिए।
1: कभी कभार हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, कोई समस्या आती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी की कमी हो गई है, तो पानी की कमी को पूरा कैसे करें और पानी की कमी को पहचाने कैसे?
0: किसी भी व्यक्ति को अगर पानी की कमी हो रही है तो उसका मुंह सूखने लगेगा, जवान सूखने लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर ये शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं,
1: जी
0: कमज़ोरी लगने लगेगी, हो सकता है चक्कर आने लगे, आँखों के सामने धुंधला हो जाए, खड़े ना हुआ जाए, बैठा ना जाए, पेशाब कम होएगी, ये सब तो शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मरीज़ बेहोश भी हो सकता है,
1: जी
0: कोमा में भी जा सकता है। तो उसको बचने का तरीका तो यही है कि आप भरपूर मात्रा में डेली पानी पीजिए। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसका उपाय यही है कि अगर मरीज पी पा रहा है, अपने मुंह से होश में है,
1: जी
0: तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तुरंत ही पानी पिलाइए, ठंडी जगह में ले जाके बैठाइए आराम से। अगर हीट स्ट्रोक है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको तुरंत ही ठंडी जगह पे ले जाइए, पंखा खोलिए, कपड़े हल्के कर दीजिए। और पानी जिसमें ORS जीवन रक्षक घोल है वो हर जगह मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो आप घर पे नींबू पानी भी बना सकते हैं, नारियल का पानी या छाछ भी बना के दे सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी पिलाइए उसे।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और आपने बताई कि इस मौसम में त्वचा से संबंधित भी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या सलाह है कि ये समस्या ना पनपने पाए?
0: त्वचा बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की ऑयली होने लगती है और कुछ लोगों की फट के जो है उसमें एलर्जी के सिम्टम्स आने लगते हैं।
1: जी
0: तो त्वचा पे भी ध्यान रखने के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, गंदे हाथों से अपने चेहरे को ना छूइए। और आपकी स्किन की जैसी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप बहुत
1: जी
0: ज़्यादा ऑयल वाली क्रीम मत लगाइए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको उसी तरह के प्रोडक्ट्स, उस तरह की क्रीम का यूज़ करना होगा। जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको वाटर बेस्ड क्रीम्स का यूज़ करना चाहिए, और जिनकी स्किन ड्राई है उनको ऑयल बेस्ड क्रीम का यूज़ करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में खान पान कैसा होना चाहिए हम लोगों का?
0: खाना हल्का होना चाहिए, ताज़ा भोजन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, बहुत तला भुना भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, बासी रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करिए कि घर ही पे बनाइए और खाइए तुरंत ही।
1: डॉक्टर साहब, समय की एक पाबंदी होती है और समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को और क्या संदेश देना चाहेंगी गर्मियों में अपने स्वास्थ्य की देखभाल के विषय में?
0: सबसे ज़्यादा तो मेरी सलाह यही होगी कि आप गर्मियों में कड़ी धूप में निकलने से बचें। सुबह का टाइम जब 11 से 4 बजे जब धूप बहुत तेज़ होती है, उस टाइम डायरेक्ट सूरज के सामने ना आए, तेज़ धूप में ना निकलें, और पानी अच्छे से पीते रहें। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीजिए, और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हल्का भोजन करिए, हल्के कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, हाथ धुल के खाना खाइए, खाना बनाइए भी हाथ धुल के।
1: डॉक्टर स्मृति जैन साहिबा, आज आप हमारे कार्यक्रम में आईं और गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विनय भैया, देखो कितनी बढ़िया जानकारी है गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल, ये पर जानकारी दी डॉक्टर स्मृति जैन बहनी और बातचीत करें रियाज अहमद भैया, तो दोनों पंच का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल बहनी, धन्यवाद। और देखो हमारा प्रयास रहा था कि जानकारी भी मिले, मनोरंजन भी हो।
2: हाँ।
3: तो देखो जानकारी तो पंच बहन के उपलब्ध कराई दी गई, अब स्वस्थ मनोरंजन की बात है।
2: बिल्कुल भैया,
3: तो स्वस्थ मनोरंजन में आज हम अपने पंचन के खातिर लेके आए हैं लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ अमृत कुंभ, और इसका सुना रहे हैं भैया अरुण कुमार तिवारी। तो सुना जाए।
2: सुना जाए भैया।
4: नीमी तरे छाहे मा सुखिया बहुत समार समार के माटी के कच्चे मटकन पर काबिस घोर के लगावत जात है, साथे साथे कुछ गुनगुनातो जात है, माटी के राम देहिया माटी हमार माई, माटी के घर दुआरी माटी में मिली जाई। माटी के महत्ता सुखिया से बेहतर के जान सकत है भला, यही माटी मा दादा बाबा सब खपिया, नजर भले कामे पे बा मुला मन गीत के भाव मा बूढ़त उतिरात बाटे, हाथ मटका के गर्दन पे बदस्तूर चलत जात है, कहूँ कहूँ कुछ बून ढुरू की के नीचे तक फैल जात है, मुल वही से माटी के सुनरौता मा कोनो कमी ना आयावत, काबिस लगाए से आवा मा पाके के बाद बर्तनन पे खास चटक लाल रंग आई जात है। कुल सुखिया के मनसेदु चैतू के हाथे के हुनर आ जौन एक से एक बर्तन घड़िए धय देत है, आसान ना रहत 4 घंटा चाक पर उकरू मुकरू बैठब, करियाओं धय लेत है, सब पुरखन के

पुण्य प्रताप आए जवन ई खानदानी धंधा आज ले निभात बा। नाय तो यही खानदान में कितना जने हैं जे आज दूसर धंधा पकड़ लिए हैं। कुंभकार के बच्चा वही के चाह समोसा बेचे लाग हैं। सुखिया के चेहरा पे पल भयताई खटास उतरा जाए। नीमी के डारी पे एक कौआ काँव काँव करे लाग। सुखिया आपन मूड़े के पल्लू संभारिस। मनसेदू के लौटे का जून हो गए। माटी के कामे खातिर सवेरे से गा है। चैतू मटका हौदी परई पतकी कोहा कोसिया जाने कितना कुल बर्तन गढ़े में माहिर बा। ई गुण कुल खानदान से विरासत में मिला है। चैतू आई के नीमी तरे बिछाई खटिया पे धम्म से परी गए। गठी देह गजिन मोछ सांवर सूरत ठेहुना तक धोती और बदन पे बंडी। महेशे के अम्मा आज हम बहुत थक गया है। चैतू के बोली में थकान साफ झलकत रही। तनी पानी पिया दे तू। हाँ तब तक तू जुड़ाए ला, हम गुड़ पानी लेके आवत है। पानी पीला हम फिर थरिया लगा देव, सवेरे से गए है भुखान हो गया। बर्तन रंगाई के काम पूरा हो गए का, बिहान आवा लगावे के बाटे। हाँ दो चार पतकी बची बा वो हो जाए। महेशे के अम्मा लागत बा यही माटी में काम करत करत हमहू माटी हो जावे। सवेरे से लाग है तब जाई के कुछ काम भरे का इकट्ठा कह पाए। सुखिया का बहुत दरेग लाग गया। जात जात मनसेदू का नजर घुमाई के लखे लाग, जैसे कहत होए तुहार थकावट हमरी देही में समाई जाते, हम धन्य हो जाई। मौनी में गुड़ के डली थी के एक लोटा पानी के साथे सुखिया हाजिर बा। आसमान में बादर के एक चकती सूरज के ढांप लेस। सुखिया बेना हाकत है। पीढ़ा पे बैठा चैतू आगे खावे के थरिया। गिरस्ती के सारा सुख जैसे अंगना में उतरिया हुआ है। मुँह में कवर खात खात चैतू सुखिया का निहारत जात है। यस काहे लखत है आम का, कबो देखे ना है। सुखिया लजाई के मुस्किया देश। महेशे के अम्मा तू दिनों दिन और खूबसूरत हो जात हो। चैतू के आखिर में ईमानदारी रही। उ आपन बत कही जारी राखन। धंधा पानी कुछ ठीक ठाक चलत हो तो कोनो गहना गुरिया तुहें गढ़वाई दे। मुलाम जैसे केहू का माटी के कदरे ना रह गया, सब प्लास्टिक स्टील बेसाए लागे। चैतू के बोली में दर्द और चिंता दुइनों एक साथ उभरी आए। गहना गुरिया से पेट थोरो भरत है। महेश के बप्पा जिंदगी में तोरे साथे गटई जोरे साथे चली। दुई जून के रोटी मिलत रहे, माई रानी परिवार बने रहे, बस यतने बहुत बा। सुखिया एकदम संतुष्ट भाव में कही डारिस। महेशे बड़ा हो गया है, अब दसवां दर्जा में पहुंच गया है। धीरे धीरे वहू का अब चाक माटी के काम सिखावा। आखिर कुंभकार के बच्चा या तोहरों काम को छलुक करे। सुखिया राय मसेबिरा के लहजा में आपन बात आगे कहिस। ना सुखिया ना, हम ही नहीं है पुरखन के धंधा संभारे हैं, यह बहुत बा। आपन लड़के पढ़िए लिखी हैं, बड़ा मनई सेठ साहूकार बनी है, माटी में ना पैसा में खेली हैं। चैतू सुखिया के प्रस्ताव के विरोध में उतरिया। हाँ जरूर पढ़िए महेश एक बप्पा, लेकिन बेटवा का माटी में रुचि बाटे। वो तो कहत है वो यही के पढ़ाई पढ़े और बाप दादा के धंधा का बहुत आगे ले जाए। समझे चाहिए बात का। इंस्टाग्राम पे वही के अमृत कुंभ के धूम मची बा। सुखिया के बाती पे चैतू कुछ ना बोलें, जैसे भीतर भीतर कुछ गुनत धुनत जात हुए। हाथ अचई के चैतू दलानी में आई गए। दुई कस हुक्का के खींचन और बेटवा के बारे में सोचत सोचत अंहाई लाग गए। पुरवैया खूब ठंडान रही। दूर कहूँ बड़ेरी पे पेणकी संगीत तान छेड़े गावत है। बेटवा महेशे के माटी से बड़ा लगाव रहा। बहुत होनहार बड़ा संस्कारी लड़का। दुनों परानी वह पे जान छिरकत हैं। पुरखन के थाती से बहुत लाग लगाव बाटे महेश का। बप्पा के चाक माटी के हर काम अपने खास सोशल मीडिया हैंडल अमृत कुंभ पे डारत जात है। लाखन के सदस्यता सब्सक्रिप्शन बाटे, लाखन देखोइया हैं। एक एक पोस्ट पे पसंदगी के झड़ी लाग जात है। चैतू चाहत है बेटवा

0: पढ़ लिख के अफसरी करे, माटी से दूर रहे। मुला महतारी चाहत है बेटवा अपने रुचि के भविष्य चुने। कही जात है कि बेटवा और बछवा दोनों घरे के चिराग होते, इनके राह रोके के नहीं चाहिए। समय बखत नदी के धार हुए बहत जात है, पानी में ठहराव आई जाए तो घाट गन्हाई जाए। समाजों में ठहराव कहाँ बाटे, जवन बर्तन काल शादी ब्याहे पूजा पाठ में लागत रहा, आज वही के केहू पुछवैया ना रहेगा। नाय तो यही गांव में बरही ब्याहे यतना काम मिलत रहा कि कुहारन का मूड़ी उठावे के फुर्सत ना मिले। हुनर के कदर रही मुला आज कदर के आधार उपयोग होइगा। स्कूले से आई के महेश आज काबिस लाग बर्तनन के फोटो खींचे लाग। सऊक में इतनी ऊर्जा होते कि देही के जांगर बाढ़ी जाते हैं। नवा जोश नवा उमंग हर कोने से माटी में प्राण भरा लागत है। बप्पा देखो अपने कला के खूबसूरती और मशहूरियत, चारी ओर तेहरे हुनर के तूती बोलत बाय। बस यक्के चर्चा अमृत कुंभ अमृत कुंभ, सब कहते हैं यही कला के शहर में प्रदर्शनी लागे चाहिए। महेश बप्पा का अमृत कुंभ पे तमाम कुल प्रशंसा के आखिर दिखावे बतावे चाहत है। चैतू कौतूहल बस जाई के मोबाइल में झांके लागे। आत्म गौरव के बोध से भर गए, बोला माटी के काम से जिंदगी तो न चले। दुखी मन से महेश के काने पे हाथ धरे। सौक प्रशंसा ठीक बा बच्चा, मुला ऐसे पेट न भरे, अपने पढ़ाई में मन लगावा, वही से जिंदगी पार होए। ये फोटो वीडियो मोबाइल सब मन मनसाइन खातिर ठीक बा, असल जिंदगी में इनके का काम। मौके से राही कहीं गुजरत उजागिर प्रधान बाप बेटवा के बत कही सुनत रहन। अमृत कुंभ के चर्चा वनहू के काने तक पहुंची रही। चैतू के बात के जवाब प्रधान दिहन, असल जिंदगी में अब यह काम आए चैतू, हमार तुहार जमाना गए, दुनिया बहुत आगे चली गए है, सबका साथे चले परे ना ही तो पछड़ जावा जाए। थोड़ी रुक के आगे कहे लागिन, चैतू भैया जुग बदलत बा तो दुनिया के जरूरतों बदलत बाट है, अब वही जरूरत के हिसाब से चाक घूमे चाहिए। महेशे श्रद्धा भरी नजरन से प्रधान का देखत जाते हैं। बप्पा के ओरी मुखातिब है, बप्पा अपनी माटी में बहुत संभावना बा, गांव में तरक्की भा है तो अब आपन बर्तनन के डिजाइन में तरक्की होइक चाहिए। मेर मेर के टोंटीदार मटका बनई जाए, हौदी नाद के जगह अब तमाम आकार प्रकार के गमला बनई जाए, भरुका कुल्हड़ शहर का सप्लाई की जाए, बहुत संभावना बा है यहाँ। सब तो ठीक बा बेटवा, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जरूरी बा, चैतू के लहजा में झिझक रही। बिल्कुल बप्पा, पढ़ाई तो जरूरी न है, हम यही माटी के बर्तनन पे पढ़ाई करबे, डिग्री लेब और यही तोहरे साथे माटी के क्रांति कीन जाए। सरकार माटी कला कौशल विकास का बढ़ावा देत बाटे तो गांव समाज का लाभ उठावे चाहिए, यही में फाइन आर्ट के डिग्री मिलत है, आगे बहुत संभावना बा, महेश बोलत गए। बात सुन के सुखिया गदगद हो गए, जैसे कोनो नई राह मिल गया होए। चैतू को मन हुलास भर गए, बेटवा का दोनों परानी करेजे में छपटाए लिए, आंसू गिरे लाग, पुरवैया और जुड़ाई गया। प्रधान सब अपनी गील आंखिन से निहारत जात हैं, अमृत कुंभ के दर्शन होएगा आज।
1: वाह भैया, कितनी बढ़िया रही ना सफलता की
2: कहानी रहा है। और देखो मैं एक प्रेरणा भी मिलते, हम सबको सीख भी मिलते कि जो अपन परंपरागत कार्य हैं गांव घर के, उनका थोड़ा कौशल बढ़ाए के हैं, कौशल के हैं निखार के हैं, और उनका भी नए तरीके से पेश किया जा सकता है दुनिया और समाज के साथ, और अच्छा मुनाफा भी कमाओ।
1: बिल्कुल, और आजकल मांग भी बहुत है।
2: बिल्कुल मांग है। तो देखो ये तो बात हो गए जो अपन गाँव के कौशल है वही की, अब साथ ही साथ थोड़ी बात हो जाए खेती के अपनी। तो देखो जो हम पंच खेती किसानी करी थे, तो इस समय देखो जैसे बहुत पंचन के वहाँ सब्जी लगी है खेतन में है और हरी फसल लगी है, तो मैं कीड़ा मकोड़ा जो है खूब नुकसान पहुंचावे की कोशिश करते
1: हैं। ये इस समय भी अगर बेल वाली फसलें लगी हैं अपनी खेत में, और अगर कहा थी कि भाई उकर देखभाल जरूरी है और

0: ओहिमे अगर रसायन डालत हैं
1: हाँ।
0: तो उनका बहुत सावधानी पूर्वक हम सब पर डालना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखो रसायन का प्रयोग हम पंच करे थे, लेकिन रसायन के यहाँ बहुत पंच भाई जो है उनका दवा जानत है, वो दवा नहीं है, वास्तव में जहर है। तो जहर के यहाँ जब हम लोग व्यवहार करी तो वो हिसाब से नहीं करी, जैसे कि अपन जो है समय का ध्यान रखी, ऐसी हवा उल्टी न चलत हो कि आप खेत में डाल रहे हो और आप के ऊपर रसायन आ रहा है। ठीक, दूसरे है कि आप चश्मा जरूर पहन लो, दस्ताना पहन लो, मुँह खूब ढंग से जैसे मास्क हो या अंगूछा से लपेट लो, जिससे कि सीधे सांस में हमका संपर्क न हो पावे।
0: बिल्कुल भी नहीं भैया। और अपने घर जो है जब रसायन डाल रहे हैं तो लड़का बच्चा को जो है दूर रखें, यूँ ना रहे कि खेत में लड़का बच्चा भी चले गए हैं साथ में, तो उनका दूर रखें। और जब रसायन डाल दें तो हाथ का दस्ताना निकाले के बाद भैया साबुन से बढ़िया से हाथ पैर धुल लें, और रसायन जब घर आवें तो नहा जरूर लें।
1: और इसके साथ साथ अगर शरीर में कोनो घाव है या कहीं कट गए है या
0: हाँ
1: कोई प्रकार का है तो बिल्कुल जो है इसका प्रयोग ना करो, क्योंकि उस शरीर का नुकसान पहुंचा सकते है। और जब आप रसायन का प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो धूल वाले हो चाहे आप पानी में मिला के कर रहे हो, उस समय आप कोई प्रकार का खाना पीना, चाहे कभी कभी पंच भाई बेंडी पिए लागत है, कभी चूना रगड़ के हैं तम्बाकू खाए लागत है, या बीच में अगर नाश्ता पानी कलेवा आएगा खेत में तो वो का करे लागत
0: करे
1: है,
0: लागत है।
1: तो ये सारे व्यवहार हम पंचन के यहाँ ना ही करे के हैं। उस समय जब हमका करना है तो काम करना, उसके बाद जैसा कि आप बतायो कि खूब अच्छे ढंग से साबुन से नहा लो, सफाई कर लो, उसके बाद में कोनो चीज़ खाओ पियो।
0: और रसायन डाले से पहले खाए पी के जाए चाहिए
1: हाँ।
0: खेत में। और
1: दूसरी
0: यू
1: है कि कई बार ये देखा जाता है कि पंच भाई क्या करते हैं कि जैसे कोनो डिब्बा लाए तो वहाँ से रसायन तो अपन निकाल लें, उसके बाद उसका धुल उल के हैं और तक घर ले आए, उमा कोनो सामान रख लेन।
0: हाँ।
1: कई बार तो पंच भाई का चुनौती बना लेते हैं कोनो उमा सामान,
0: नहीं भैया बिल्कुल
1: तो
0: नहीं,
1: ये प्रकार के व्यवहार बिल्कुल नहीं करे का है भैया। उसका जो का करना है कि अगर ये प्रकार के कोनो खाली बर्तन शीशी या कुछ मिलत है तो का जमीन में है मिट्टी खोद के है उसका दबा दो, जैसे कि उसका कोई औरों का नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल सही कहो भैया। और देखो अगर जो रसायन रहा था कीटनाशक का और जो कीट लागत थी उनका मारे के लिए रहा था उनका, ताकि अपने फसल का नुकसान न पहुंचाए, तो सोचो कि अपने वक्त अगर प्रयोग हम सब करबे
1: हाँ,
0: वो डिब्बे प्रयोग करबे तो
1: हाँ,
0: हम सबके खातिर कितना नुकसान दे हो जाए।
1: इसके साथ साथ और कई बार होते कि जैसे तालाब है या पोखर है तो वहाँ हम पंचका कहते थे कि वो बर्तन के साफ करी थे जिसमें रसायन रखी है, या जैसे व्यवहार कर जैसे जिसका टंकी कहा थे स्प्रे पंप जो है उसका छिड़ रहे हैं तो वह क्या वहाँ धुल दिए थे, तो ई प्रकार का न करे चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ तमाम जीव जंतु होते हैं जो पानी पिए थे, कई बार अपन पालतू पशु भी पानी पिए थे तो उनका भी नुकसान हो सकता
0: और
1: है।
0: जल में रहे वाले
1: हाँ जीव
0: भी
1: है
0: तो
1: उनका नुकसान हो सकता है। तो हम पंचन के लिए देखो रसायन प्रयोग करना आवश्यक है आज के समय में है, लेकिन सावधानी पूर्वक करो। और रसायन के अलावा भी और तमाम चीज़ें आ गई हैं जिनका भी अगर हम प्रयोग करें तो कीड़ा मकोड़ों से थोड़ा हमको राहत मिल सकता है।
0: इन सब का हम सबका ध्यान रखना चाहिए। और देखो एक सफलता की कहानी लेके आए हैं आज।
1: बिल्कुल, सफलता की कहानी जब आप लिखे होती है तो तमाम पंच भाई सुनते हैं, उसे प्रेरणा लेते हैं, कुछ जानकारी मिलते हैं, कुछ उनका साहस बढ़ते हैं, उत्साह बढ़ते हैं खेती किसानी में है। तो आज का है
0: आज भैया है सफलता की कहानी उन्नत बागवानी, और सफल किसान है सत्येंद्र कुमार पटेल भैया, और बहुत नीके तरीके से बातचीत करे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो सुना जाए दोनों पंच के बातचीत, अपने सभी और पंच भैया भी सुने।
1: बिल्कुल,
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं फतेहपुर जनपद के खजुहा ब्लॉक के बाबूपुर गांव के सत्येंद्र कुमार पटेल भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। सत्येंद्र भैया आप बागवानी के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके बागवानी से जुड़ा हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, हम ये बताना चाहते हैं कि खेती हमारा पुश्तैनी धंधा रहा है और उसमें बागवानी भी शामिल रही है। तो हम इसके पहले एयरफोर्स में थे तो 2001 में जो है हम ऐसे जुनून आया कि हमें अपना एनवायरनमेंट ठीक सही करना है और साथ में खेती भी होती रहे। तो इस क्रम में हमने पहले आंवला का प्लांटेशन कराया, आंवला के बाद फिर हमने नींबू का प्लांटेशन कराया और कटहल का और आम का और बेल का। उद्देश्य हमारा ये था कि हमारा एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और पर्यावरण दूषित होने से हमारे या हमारे समाज में हमारे देश में बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। तो ये था कि हम जितना हम फसलों से पैदा करते हैं कमाई करते हैं उतना ही हम अपने बागवानी से पैदा कर सकते हैं, उसमें दूसरा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि अच्छी खासी जो है एनवायरनमेंट क्लीनिंग हो जाती है, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है।
2: तो कुल रकबा कितना है बागवानी का आपका?
3: डॉक्टर साहब हमारे बागवानी में 6 एकड़ जो है नींबू लगा हुआ है और 2 एकड़ में आम और कटहल और बेल लगा हुआ है।
2: अच्छा, तो 6 एकड़ में जो नींबू की बागवानी कितने

0: पेड़ हैं लगभग?
1: 372 पेड़ हैं जो 6 एकड़ में लगे हुए हैं।
0: और आम, कटहल और बेल,
1: ये मिक्स में लगे हुए हैं। करीबन 40 पेड़ हमारे आम के हैं, 40 पेड़ तकरीबन कटहल के हैं और 5 पेड़ हमारे पास बेल के हैं।
0: तो कोई खास वैरायटी इन फलदार वृक्षों की लगाए हैं आप?
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बेल 3 प्रजातियों का है, नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 6 है और नरेंद्र 9 है। तो इनकी खासियत हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये बेल ऐसा बेल होता है जिसमें रेशे बहुत कम पाए जाते हैं और पका हुआ होता है बेल, थोड़ी सी भी अगर इसमें चोट पहुंचा दी जाती है तो ये फट जाता है। और इसको अगर ऐसे भी सादा भी हम खाना चाहें तो बहुत मीठा होता है, और अगर इसका हम जूस बनाते हैं तो उसमें चीनी नहीं डालनी पड़ती, बिना चीनी डाले ही इतना मीठा होता है कि हम उसको जो है शरबत बना करके पी सकते हैं।
0: नींबू की कोई खास वैरायटी लगाए हैं आप?
1: नींबू की खास वैरायटीज में हमने सर्च किया कई जगहों पे, साइंटिस्ट लोगों से भी संपर्क किया हमने, तो नींबू की खास प्रजाति में जो सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है वो देसी नींबू कागजी जो कहलाता है वही मानी जाती है।
0: कागजी,
1: कागजी नींबू
0: वही लगाया है आपने?
1: वही लगाया हुआ है हमने सब।
0: तो रोपाई आपने किस सन में की थी नींबू की?
1: रोपाई हमने की थी 2011 में की थी।
0: 2011
1: जी,
0: यानी लगभग 15 साल?
1: 15 साल हो गए।
0: और रोपाई में अंतरण क्या रखा है?
1: हमने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग अपनाया था, 27 फीट दूरी लेकर के हमने चले थे। हर पेड़ से पेड़ की दूरी जो 27 फीट और लाइन टू लाइन की जो दूरी है वो 27 फीट है।
0: अच्छा जी, यानी वर्गाकार लगाया है?
1: जी वर्गाकार लगाया है।
0: और आम, कटहल और बेल?
1: आम की जो डिस्टेंस है, जो आम की दूरी है करीबन 35 फीट पे लगी हुई है और बेल करीबन 20 फीट पे लगा हुआ है, कटहल भी करीबन 25 फीट की दूरी पे लगा हुआ है।
0: तो ये सब जो भी बागवानी आपने लगाई है 2011 में?
1: ये 2011 में हमने नींबू का प्लांटेशन किया था, इसके पहले हमारे कटहल और आम हमने इसके पहले लगाया था।
0: अच्छा, तो ये बताएं कि क्या दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक आपकी बागवानी में?
1: दिनचर्या में ये आता है कि हम निरीक्षण करते हैं सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि काम और भी होते हैं किसानी के कामों में, और इसमें हम मॉनिटर करते हैं या देखते रहते हैं कि इसमें इसकी पत्तियों में कोई खराबी तो नहीं आ रही, पेड़ में कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, और जहाँ कहीं भी हमें शंका होती है या परेशानी होती है तो हम जो वैज्ञानिक हैं हम उनसे संपर्क करते हैं और इसके बाद उसका निराकरण करते हैं।
0: जो बागवानी है, चाहे नींबू के पेड़ हैं, आम है, कटहल है या बेल है, फलदार वृक्ष की भूख मिटाने के लिए आप खुराक देते होंगे साल में?
1: जी जी जी।
0: कब कब?
1: मेन अगर हम नींबू की बात करें तो मेन खुराक हम लोग देते हैं जब फसल की खात्मा होता है तभी जो है, जैसे नींबू में हम सितंबर में देते हैं और इसके बाद जनवरी में देते हैं।
0: दो बार
1: देते हैं।
0: तो गोबर की सड़ी खाद, कुछ रासायनिक खाद की मात्रा भी देते होंगे?
1: जी डॉक्टर साहब, ज़्यादातर तो हम इसमें गोबर की खाद और वर्मी कम्पोस्ट डालते हैं और कभी कभी नीम की खली भी डालते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स देना पड़ता है,
0: जैसे
1: DAP और यूरिया।
0: कुछ अलग से जल विलेय उर्वरक का भी छिड़काव करते हैं क्या?
1: नहीं, ऐसा तो जल विलेय उर्वरक का छिड़काव हम नहीं करते हैं।
0: सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं अपने बागों में?
1: खासतौर पे सूक्ष्म पोषक तत्वों का तो जैसे हमने बर्मी कंपोस्ट की बात बताई आपसे, बर्मी कंपोस्ट से उसको फीड कराते हैं और जो हमारा गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद को सड़ा करके हम उसको डालते हैं
0: तो उससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है।
1: जी जी जी।
0: तो फलत कब से कब तक रहती है नींबू में आपके यहाँ?
1: नींबू की मेन जो फसल होती है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर रहती है, जो सबसे बड़ी फसल मानी जाती है
0: 4 महीने के।
1: जी। और बाकी तो नींबू तो ऐसे 12 मास ही होता है, तो थोड़ा सा लगा रहता है, दिसंबर में दूसरी फसल आती है। मेन फसल जो मानी जाती है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आती है।
0: तो इस समय क्या स्थिति है आपके नींबू के बागों की?
1: इस समय हमारा नींबू लगभग मेच्योर हो गया है, फल सारा मेच्योर हो गया है और बस पकने की स्टेज में आ रहा है।
0: तो क्या कुछ तोड़ाई बीच बीच में करते रहते हैं?
1: जी जी जी। अब हम उसको जैसे जो मेच्योर फल है उनको हम तोड़ करके मार्केट में भेजने लगे हैं।
0: शुरुआत हो गई?
1: जी।
0: तो मार्केट कहाँ तलाशते हैं?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर साहब। हमारा जनपद एक फतेहपुर एक पिछड़ा जनपद है माना जाता है, लेकिन हमें खुशी तब होती है जब हमारे जनपद का नींबू जो है लखनऊ मंडी में जाता है, कानपुर मंडी में जाता है और इसका हमीरपुर मंडी में जाता है, बांदा में जाता है, तो वहाँ पे जब ये बात आती है कि कहाँ का नींबू है तो बात आती है कि फतेहपुर का है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे जनपद का नाम कहीं ना कहीं जो है उभर करके सामने आ रहा है।
0: तो क्या व्यापारी आपके बाग पर आते हैं या आपको मार्केट तक जाना पड़ता है?
1: हमको मार्केट तक ले जाना पड़ता है।
0: नींबू की बागवानी की बात चल रही है तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण

0: करते हैं आप नींबू में, कटहल में, आम में और बेल में पूरे साल?
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बता दें कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज करके या जो कीटनाशक होते हैं कम से कम यूज करके हम जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पर जाते हैं। जैसे बोडो मिक्सर एक अच्छा खासा जो है फंगीसाइड
0: बनाते हैं
1: जी, बोडो मिक्सर हम बनाते हैं
0: यानी फफूंदी नाशक के
1: जी
0: लिए।
1: जी जी और उसका छिड़काव हम दो बार, कम से कम दो बार हम अपने नींबू में करते हैं, और वो नॉन केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल्स उसमें नहीं होते हैं, और वो पूरी तरीके से जो केमिकल फंगीसाइड्स होते हैं उसके बराबर काम करता है और उसे बेहतर काम करता है और सस्ता रहता है।
0: सस्ता रहता
1: जी,
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वो सस्ता रहता है, सस्ते में हम बेहतर काम कर ले जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत जरूर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन खुशी इस चीज़ की होती है कि हम कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें और अच्छा प्रोडक्ट, मतलब जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो, वो ऐसा प्रोडक्ट हम मार्केट में भेजें और सब लोगों के लिए अच्छा हो।
0: कुछ हानिकारक कीटों की भी समस्या आती होगी?
1: हाँ, आती है। जैसे नींबू में अगर हम बात करें तो जो पत्तियों का रस चूसने वाले रस चूसक
0: कीट
1: कीड़े
0: हैं।
1: कीट कीड़े लगते हैं, और कैंकर जैसी बीमारी पैदा हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है।
0: पूरे साल का आंकड़ा देखें तो 6 एकड़ आपकी नींबू की बागवानी और 2 एकड़ में आम, कटहल और बेल की बागवानी, कुल 8 एकड़।
1: जी,
0: कितनी लागत गिरती है पूरे साल में? उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू तकरीबन हमारे यहाँ 20 से 25 टन पैदा होता है जो मेन फसल
0: यानी
1: है।
0: लगभग 200 से 250 कुंतल।
1: जी, और बेल तो कम पैदा होता है क्योंकि 5 ही पेड़ हैं, वो जस्ट अपने यूज के लिए होते हैं। आम में है तो आम में वैरायटीज है हमारे पास, जो है चौंसा है और आम्रपाली है और दशहरी है, ये प्रजातियाँ, सफ़ेदा है, तो ये भी काफ़ी हद तक जो है हमें अच्छी फसल, अच्छा उत्पाद,
0: आमदनी दे
1: आमदनी
0: देते।
1: दे देता है।
0: तो कुल मिला जुला करके आपकी बचत कितनी होती है साल में?
1: लगभग हमारी बचत 10 से 12 लाख रुपए हो जाती है।
0: हो जाती है।
1: जी,
0: जो अब तक का आपका उन्नत बागवानी का तजुर्बा है, नींबू उत्पादन का, कटहल उत्पादन, आम और बेल उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हम तो ये सलाह देना चाहते हैं, केवल किसान भाइयों को ही नहीं, सामान्य जनमानस को सलाह देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी खाली जगह मिले वहाँ पे पौधा लगाएं, किसी भी पसंदगी का पौधा लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो और
0: और फलत भी मिले,
1: फलत भी मिले,
0: खुद भी खाएं और बेचें भी।
1: बेचें भी। तो एक एक सामान्य सा जो कैलकुलेशन आता है कि जैसे हम अपनी जो बेसिक क्रॉप्स करते हैं, धान, गेहूँ, ये पैदा करते हैं, उसे कहीं ज़्यादा हमें जो है फ़ायदा मिल जाता है अगर हम बागवानी पे जाते हैं, और उस बागवानी को अगर हम साइंटिफिक ढंग से या वैज्ञानिक तरीके से हम अगर उसको कार्यान्वित करते हैं तो।
0: क्या बागवानी के बीच में कुछ सह फसल भी लेते हैं?
1: हम जब नींबू हमारा छोटे पौधे थे तो हम उसके बीच में जो है दो फसलें ले लेते थे, एक चना ले लेते थे और इधर गर्मियों में मूंग की फसल ले लेते थे, लेकिन चूंकि अब पौधे जो है काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनके बीच में इतना जगह नहीं बची है कि हम उसमें जो है सह फसल ले लें।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारा मोबाइल नंबर है 94-53-74-95-68, 9453-74-95-68, 94-53-74-95-68।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने हमें, थोड़ा मैं इसको एक अंग्रेजी में कोट करना चाहूँगा कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज बट इट्स ए जर्नी ऑफ स्ट्रगल,
0: यानी संघर्ष
1: जिंदगी
0: है।
1: संघर्षी जिंदगी है। खासतौर पर बागवानी में जब हम अगर नींबू की बात करते हैं तो नींबू एक ऐसी बागवानी है जिसमें जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें कांटों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और पूर्णतया चैलेंजिंग बागवानी अगर होती है तो नींबू की ही होती है। अगर हम फल तोड़ते हैं तो कांटा खाते हैं, दवा डालते हैं तो कांटा लगता है हमारे, और उसकी साफ सफाई करते हैं तो कांटा चुभता है, तो कांटों से लड़ना पड़ता है तब जाकर के ये सब पैदा होता है नींबू के बारे में अगर हम बताएं तो।
0: और इन कांटों से जूझते हुए आप एक अच्छे बागवान हो गए हैं, अच्छी फलत ले रहे हैं और उनकी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार पटेल भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप वायुसेना से रिटायर होने के बाद अपने गांव में उन्नत बागवानी कर रहे हैं जिसमें 6 एकड़ नींबू के पेड़ हैं, 2 एकड़ में आप आम, कटहल और बेल की बागवानी कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए।

0: और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बेने भैया, देखो सफलता की कहानी उन्नत बागवानी, यह विषय पर कितनी बढ़िया अपन कहानी सुनाएं, जो उनकी सफल किसान रहे सत्येंद्र कुमार पटेल भैया और उनसे उतने नीचे तरीके से बातचीत करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों पंच का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब एक गौनई के बरिया हो गया है,
2: तो गौनई कौन लई है आज?
1: आज हम भैया लेके आए हैं निर्गुण। अच्छा। हैं और इका सुना रहे हैं सहेंद्र राम मौर्य और वह साथी भैया, और बोल हैं सखिया रुचि रुचि, तो सुना जाए भैया।
2: चलो सुना जाए।

0: विनय भैया
1: हाँ।
0: वाह भैया कितना आनंद आएगा ये गौनई में ना, कितनी बढ़िया गौनई रही। और
1: यो रहा निर्गुण।
0: हाँ
1: तो निर्गुण में है शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और होते।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो देखो एक परोक्ष रूप से जो है जीवन का उपदेश होते हैं मां, कि जैसे व्यक्ति कहा गया है कि हर व्यक्ति के यहाँ आना है, इस संसार
0: जाना
1: से
0: जाना
1: है। तो एक संदेश होते है गीत में है, निर्गुण में है। और अब देखो जो है हमको लगा तुम बाजार गई रहो, बहुत सारा झोरा जंतरा बांधे बैठी हो, भाव तो आपको ना बता रही हो।
0: भैया भाव तो हम लेके आए हैं और बैठ रहे हैं बतवाइन के लिए बैठे हैं भैया, तो बता दें जाए। और चार मंडी को बाजार भाव लेके आए हैं लखनऊ।

0: सीमा
1: हम्म,
0: कि जैसे व्यक्ति को कहा गया है कि हर व्यक्ति के यहाँ आना है, इस संसार से
1: जाना
0: जाना
1: है,
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो एक
1: भैया।
0: संदेश होते है गीत में है, निर्गुण में है। और अब देखो जो है, हमको लगा तुम बाजार गई रहो, बहुत सारा झाड़ा जंतरा बांधे बैठी हो, भाव ताव को ना बता रही हो।
1: भैया भाव तो हम लेके आए हैं और बैठ रहे हैं, बतवाइन के लिए बैठे हैं भैया, तो
0: बताओ।
1: बता दें जाए। और चार मंडी के बाजार भाव लेके आए हैं, लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या मंडी के। और ये थोक बाजार भाव है। लखनऊ मंडी में गेहूं दड़ा है 2,590 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में है 2,585 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2,540 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 2,585 रुपये प्रति क्विंटल। और भैया चावल कॉमन लखनऊ मंडी में है 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 3,450 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या मंडी में 3,070 रुपये प्रति क्विंटल। काली सरसों की बात की जाए भैया, लखनऊ मंडी में है 6,800 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में है 7,300 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 6,600 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में 6,600 रुपये प्रति क्विंटल। और भैया मटर सफ़ेद की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में है 4,480 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में है 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 4,200 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में 4,280 रुपये प्रति क्विंटल।
0: और देखो अब कुछ भाव हमारे उत्तर हैं सब्जी तरकारी के, तो हम बता दी पंच बहन के
1: हाँ
0: हैं।
1: भैया,
0: देखो जो है टमाटर पका रहा 2,850 रुपये प्रति क्विंटल लखनऊ में है, 2,770 रुपये प्रति क्विंटल रहा कानपुर में, और गोंडा में है थोक भाव रहा 3,050 रुपये प्रति क्विंटल, और अयोध्या में है रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज लाल की अगर बात की जाए तो लखनऊ में है 1,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा, कानपुर में 1,330 रुपये प्रति क्विंटल रहा, गोंडा में है 1,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा, और अयोध्या में रहा 1,450 रुपये प्रति क्विंटल। लहसुन की अगर हम बात करें तो लहसुन रहा 7,520 रुपये प्रति क्विंटल लखनऊ में है, 8,200 रुपये प्रति क्विंटल कानपुर में, और गोंडा में रहा 9,400 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में रहा 7,150 रुपये प्रति क्विंटल। बैंगन जो रहा लखनऊ में है थोक भाव रहा 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,850 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2,180 रुपये प्रति क्विंटल, और अयोध्या में रहा 2,100 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ पारी रही लखनऊ में है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल, और कानपुर में रहा 4,375 रुपये प्रति क्विंटल। अब आप एक चीज़ कहती हो कि आलू क्या भाव रहेगा,
1: हाँ भैया,
0: तो आलू का भी भाव पंच बहन का बता दी कि आलू सफ़ेद रहा 880 रुपये प्रति क्विंटल लखनऊ में है, 760 रुपये प्रति क्विंटल कानपुर में, गोंडा में रहा 950 रुपये प्रति क्विंटल, और अयोध्या में रहा 900 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये
1: भैया
0: तो रहे बाजार के
1: हाँ,
0: भाव।
1: बाजार के थोक बाजार भाव रहे। और देखो अब मौसम जो है बहुत गर्मी हो रही है,
0: हाँ
1: बहुत
0: मौसम
1: तेज
0: तो
1: घाम हो, तो भैया
0: बिल्कुल
1: दोपहरिया में तो कहूँ निकरे के नामन कहा।
0: बिल्कुल
1: और यह समय सबसे जरूरी है कि अपन ध्यान रखो, अपने हराह गुरु का ध्यान रखो, सब चीजन का, लड़का बच्चा का भी ध्यान
0: अपन
1: रखो।
0: फसल पाता का भी ध्यान रखो कि खेत के लगातार निगरानी करते रहो,
1: हाँ
0: अगर
1: भैया,
0: लागत हो कि सिंचाई करके आवश्यकता है तो
1: बिल्कुल भैया,
0: सिंचाई जरूर करो। और कल के कार्यक्रम बता दो पंच बहन के।
1: हाँ भैया, कल के कार्यक्रम में लोकायतन हुए वार्ता, सशक्त श्रमिक समर्थ भारत। वार्ताकार हुई हैं राकेश कुमार सिंह भैया। और अपनी खेती किसानी में हुए खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन और इस पर जानकारी दे हैं डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह भैया और बातचीत करे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और भैया देखो
0: हाँ,
1: अपने जो बैठकी है वो मन पता लिखे बारी है, चिट्ठी पते
0: बिल्कुल
1: लिखे
0: पता पता बताओ
1: और
0: बैंक
1: पता
0: के।
1: बता दें जाए। लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 2,6,0,0,1।
0: ई पते पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजिए, अपनी जिज्ञासा है, अपनी कोई प्रश्न है वो हम तक भेज सकते हो, और हम कोशिश करेंगे उनको अपने कार्यक्रम में शामिल किया जाए। अब देखो घड़ी का इशारा बड़ा सख्ती से हो रहा है कि पंच बहन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

0: ले आ गया ना किड बैग।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और ख़ास तौर पे यहाँ एयरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि

0: देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
3: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और

0: पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
1: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए हैं और प्रस्तुत है स्वास्थ्य वार्ता। स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के अंतर्गत, पहले सुनिए ये वार्ता जिसका विषय है रेबीज से बचाव और वार्ताकार हैं सुनील यादव।
9: नमस्कार, मैं सुनील यादव, चीफ फार्मासिस्ट हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में। मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में SIHFW में लगातार तमाम सारे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन रहा हूं। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जन स्वास्थ्य का विषय है, रेबीज एवं पशु के काटने पर सावधानियां, इस पर चर्चा करूंगा। हम लोग हर जगह इस चीज को कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ऐसा चीज है ये कि जहां पे प्रिवेंशन ही सब कुछ है, रेबीज में प्रिवेंशन ही सब कुछ है, और अगर रेबीज हो गया तो 100% ये जानलेवा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से रोकी भी जा सकती है अगर हमने उसका वैक्सीनेशन करा लिया या समय पे प्रिवेंशन का इलाज ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि रेबीज एक वायरल रोग है, लैसा वायरस से होता है। ये संक्रमित पशुओं के काटने से, खरोचने से या उनकी लार, उससे खुले घाव या म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। अगर ये होता है तो आपको केवल वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना ही लगाना है। ये ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और एक बार अगर रोग के लक्षण प्रकट हो गए तो आप 100% मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि इसके बारे में आप जानकारी रखें, जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। इसकी एपिडेमियोलॉजी को अगर समझते हैं हम, तो विश्व स्तर पे लगभग हर वर्ष 26,000 से लेकर 55,000 लोगों की डेथ रेबीज के कारण होती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों लोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर या अन्य पशुओं को काटने का शिकार होते हैं। कुछ देशों में चमगादड़ के काटने से भी ये रोग हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और भारत को अगर हम देखते हैं तो अधिकांश जो भी मामले आते हैं वो आवारा कुत्तों के ही काटने से हो रहे हैं, और बच्चों में ये जोखिम बहुत ज्यादा पाया जाता है। चिकित्सालयों में हमने देखा है कि बच्चों की संख्या भी बहुत होती है, क्योंकि वो अक्सर पशुओं के साथ जब खेलते हैं तो सावधानी नहीं बरतते, या उनकी ऊंचाई कम होती है बच्चों की, और पशु उनको आराम से अपना शिकार बना लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई कुत्ता या कोई अन्य पशु काट ले तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो जैसे ही कुत्ता काटे या चाटे तो तुरंत घाव की अच्छी तरह सफाई करनी है। अब सफाई करने का इसका एक गाइडलाइन बनी हुई है। उस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि काटे हुए स्थान को कम से कम 15 मिनट तक साबुन से धोना है और बहते हुए पानी में धुलना है। अगर आपके पास

का पानी टैप वाटर आ रहा है तो टैप के नीचे वो पार्ट कर लें शरीर का जहाँ पे कुत्ते ने काटा है या जानवर ने काटा है या चाटा है, और साबुन लगाते रहिए। अगर आपके पास टैप वाटर नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए और पानी को उस पे गिराते रहिए और धुलते रहिए। ये सबसे सरल उपाय है और संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। और घाव पर आपको घर में कुछ नहीं करना है, कोशिश ये करें कि कोई भी पट्टी नहीं बांधेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि लोग अक्सर चिकित्सालयों में आते हैं तो पट्टी बांध करके आते हैं, तो आपको पट्टी नहीं बांधना है। धुलने के बाद आप कोई एंटीसेप्टिक जैसे पोविडीन आयोडीन है या जिसको बीटाडीन के नाम से आप लोग जानते हैं वो लगा सकते हैं। गांव में एक मिथ है, हम लोग चिकित्सालयों में देखते हैं कि लोग जब आते हैं कुत्ता काटने का मरीज लेकर के तो घाव पर मिर्च लगाए होते हैं या हल्दी लगाए हुए होते हैं। इस मिथ को तोड़िए, घाव पर कोई मिर्च नहीं लगाना है, कोई हल्दी तेल मिट्टी चूना राख किसी प्रकार का कोई लेप जो है घरेलू न लगाइए। ये ऐसी प्रथाएं जो है नुकसानदायक हो सकती है और संक्रमण को और फैला सकती है। घाव की सफाई के तुरंत बाद आप तुरंत सरकारी जो भी चिकित्सालय आसपास हो वहां जाइए, अगर सरकारी चिकित्सालय नहीं है तो निजी चिकित्सालय पर भी जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 5000 से लेकर 50000 के एरिया में हर जगह उपलब्ध हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं या जो बड़े चिकित्सालय हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी जगहों पे एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों उपलब्ध हो गया है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि स्थानीय चिकित्सालय जो सरकारी चिकित्सालय है वहां पे जाएं और वहां के चिकित्सक से तत्काल संपर्क करें। चिकित्सक ये तय करेंगे कि ये जो बाइट है वो बाइट किस प्रकार की है और उसमें कौन सी दवा कौन सा इंजेक्शन लगाना आवश्यक है। हम अगर सार्ट में बात करते हैं तो जो गाइडलाइन है WHO की, उसमें पशुओं की काटने की घटनाओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया है, Grade 1, Grade 2 और Grade 3। Grade 1 में केवल पशु छू लिया या आपने पशु को छू लिया, उसके द्वारा त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए चाट लिया उन्होंने या ऐसी जगह चाटा जहां पे स्किन ब्रोकन नहीं है, ऐसे मामलों में इसको Grade 1 कहा जाता है और यहां पे वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती। Grade 2 दूसरी श्रेणी है ये, इसमें त्वचा में हल्की खरोच आ जाती है और इसमें जो है एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता होती है। Grade 3 ये गंभीर होती है जिसमें गहरा घाव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है यानी कि रक्त बह रहा होता है, किसी वाइटल आर्गन यानी महत्वपूर्ण आर्गन पे काट लिया हो कुत्ते ने या जानवर ने, चेहरा गर्दन सिर या हाथ जो अपर लिम्ब है बॉडी का उस पे अगर काट लेता है तो वहां से वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में आसानी होती है, इसलिए ऐसी जगहों को हम लोग Grade 3 में रखते हैं। या किसी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर संक्रमित जो पशु का लार है वो सीधा उस पे लग गया हो तो इसको भी जो है Grade 3 में ही माना जाता है। तो इस मामले में जहां पे भी Grade 3 होता है वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि सीरम होता है इसको लगाया जाता है और वो घाव पे ही लगाया जाता है जिससे कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट ना करने पाए, वायरस को इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है उसी जगह पे घाव और उसके आसपास ये लगा दिया जाता है। हालांकि इसमें एक चीज और है कि अगर वैक्सीन पहले से किसी को लगी हुई है या किसी पेशेंट को 7 दिन हो गया है वैक्सीन लगाए उसके बाद दोबारा उसको बाइट होती है या गंभीर बाइट होती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने की आवश्यकता कम होती है। अगर कोई भी जानवर काट लेता है तो उसमें ये लोग कहते हैं कौन से जानवर के काटने से इसको लगाना है, तो केवल कुत्ता ही नहीं, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया या कोई अन्य संक्रमित स्तनधारी पशु अगर है तो उसके काटने से फैल सकता है। कुछ लोग ये जरूर पूछते हैं कि चूहे के काटने से होता है कि नहीं, तो गाइडलाइन ये कहती है कि जो जंगली चूहे हैं या जो घर में नहीं रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पे मोटे चूहे रहते हैं, तो अगर वो काटते हैं तो वहां पे भी वैक्सीन लेते हैं। कितने इंजेक्शन लगाए जाने हैं, अब आप अस्पताल में जाएंगे तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक इंट्राडर्मल लगता है जो दोनों बाहों पे लगता है, एक इंट्रामस्कुलर लगता है जो मांस में लगता है। अगर इंट्राडर्मल आप लगाते हैं तो 4 बार विजिट अस्पताल में करनी है और अगर मांस में लगता है तो 5 बार विजिट करनी होती है। अगर पहले से टीका लगा हुआ है किसी व्यक्ति को तो अगले 3 महीने के बीच में बाइट होने पर संभवतः वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। और अगर 6 महीने 3 महीने से ज्यादा हो गया है तो उसे 2 टीका और लगेगा, वो A1 साइड लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा, वहां पे रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर पालतू कुत्ते ने काट लिया तो उपचार की आवश्यकता नहीं समझते, ये बहुत आवश्यक है कि उपचार करना है आपको और अस्पताल तक जाना है। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो निश्चित रूप से आप उस कुत्ते का एंटी रेबीज टीकाकरण जरूर करा लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर रेबीज नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आप लोगों को हमेशा हम लोग एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, तो आप याद रखिए कि पशु काटे तो घबराए नहीं, घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं, डॉक्टर से संपर्क करें, वैक्सीन लगवाएं। हाई रिस्क कैटेगरी में अगर आप हैं यानी आप पशुओं के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने कुत्ता पाल रखा है या आप रेबीज के किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो प्री एक्सपोजर वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, 3 डोज उसकी वैक्सीन की लगती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसे सही समय पर उपचार लेकर के पूरी तरीके से रोका जा सकता है, थोड़ी सी जागरूकता आपकी जान बचा सकती है और दूसरे की भी जान बचा सकती है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार तथा समाज को भी रेबीज के प्रति जागरूक

0: बनाए।
1: धन्यवाद।
2: रेबीज से बचाव इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सुनील यादव की वार्ता। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वार्ता जिसका विषय है किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत, और वार्ताकार हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा।
3: डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं पोस्टेड हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में एज अ कंसल्टेंट मेडिसिन। आज हम बात करेंगे गुर्दे से संबंधित बीमारी और उसके बचाव के बारे में। गुर्दे से संबंधित बीमारी कई प्रकार की होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं उसको। एक्यूट किडनी इंजरी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। मेनली क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है वो गुर्दे से संबंधित किसी भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी जो कि 3 महीने या उससे ज़्यादा परसिस्ट करती है तो हम इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, एक तो जो कि गुर्दे से संबंधित कारण है किडनी की साइज छोटी हो जाए, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और सबसे मुख्य जो कारण देखा जा रहा है कि हमारे समाज में सोसाइटी में डायबिटीज़ जो एक पैंडेमिक के रूप में हो गई है और इसका मरीज ध्यान नहीं रखता है डायबिटीज़ का, उचित दवाएँ समय पर जाँचें और प्रॉपर परहेज प्रिकॉशन नहीं लेता है डायबिटीज़ कंट्रोल को लेकर के, वो नेग्लिजेंस करता है जिसके कारण गुर्दे की समस्या शुरू हो जाती है। गुर्दे ठीक होते हैं लेकिन डायबिटीज़ मर्ज की वजह से गुर्दे के काम में खराबी आ जाती है। तो ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहे, उसका इलाज प्रॉपर ना हो, प्रॉपर कंट्रोल ब्लड प्रेशर का ना हो, तो भी गुर्दे में समस्या आ जाती है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिससे अगर हम प्रॉपर मेंटेन रखें तो हम गुर्दे की बीमारी से बचा सकते हैं अपने आप को। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये 2 गुर्दे के दुश्मन होते हैं, तो ऐसे में हमें समय पर प्रॉपर स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए। और जैसे ही शुगर बढ़ के HbA1c बढ़ के मिले 6.4 से ज़्यादा तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने किसी भी कंसल्टेंट को दिखा करके उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कराना चाहिए। तो ये रही बात मुख्यतः कारण की। अब इसका बचाव किया जा सकता है, हम रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करें, हम डाइट में प्रोटीन इंटेक अपना रखें, जंक फूड्स अनहेल्दी फूड्स इसको अवॉइड करें, और किसी भी प्रकार का जैसे कि किडनी स्टोन है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसका समाधान हम कर लें तो भी हमको गुर्दे खराब होने से हम उसको बचा सकते हैं। कोई भी ऐसा मरीज जिसको कि कुछ लक्षण हम बताना चाहेंगे, जिसको कि पैरों में सूजन आ जाए, पेशाब से साबुन के फेने जैसे झाग बनने लगे ज़्यादा, अर्ली मॉर्निंग फेशियल पफिनेस कहते हैं, सुबह उठने के बाद आंखों के चारों तरफ सूजन रहती है जो कि दोपहर तक कुछ कम हो जाती है, और पेशाब से संबंधित कुछ लक्षण हैं जैसे कि पेशाब का फ्लो प्रॉपर ना होना, पेशाब कम होना, सांस फूलना, चलने में सांस फूलना, सीधे लेटने में सांस फूलना, खाना खाते समय जी मालिश करना या उल्टी जैसा महसूस होना, भूख कम लगना, ये सारी समस्याएँ अगर हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से मिल करके किडनी से संबंधित कुछ जांचें करा के, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, और अगर डायबिटीज़ का मर्ज भी है मरीज को तो HbA1c और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो UACR जो कि 30 मिलीग्राम पर ग्राम से कम होना चाहिए नॉर्मली, और 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, और 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा अगर है तो ये मैक्रो एल्बुमिन यूरिया कहा जाता है, ये अगर है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये शुरुआती हो सकता है कि गुर्दे की खराबी की शुरुआत हो। ये कुछ लक्षण हैं जो अगर मरीज में हैं, इंसान में हैं, तो किडनी से संबंधित समस्या को लेकर के अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए खान पान में भी कुछ आपको, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किडनी साइज़ नॉर्मल है तो किडनी की बीमारी से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि खान पान में अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी का इनटेक प्रॉपर रहे आपका, कोई भी दवा खास करके दर्द की दवा जिसके हम NSAIDs कहते हैं, NSAIDs का ओवरजिलस यूज़, अब्यूज़ ऑफ NSAID नहीं होना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन जैसे कि अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए, ये सब करके हम गुर्दे को सेफ रख सकते हैं। और अगर इस तरह के कोई लक्षण आप में हैं, आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, और जो लक्षण मैंने बताए इनमें से कुछ भी लक्षण अगर आपके शरीर में आपको दिख रहे हैं तो एक बार ज़रूर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में 30 नंबर कमरे में 8 से 2 मेरी OPD होती, वहाँ ज़रूर आकर के एक बार अपने आप को दिखाएं और उचित परामर्श देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अपने गुर्दे को बचाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि NSAID अब्यूज़ जो कि दर्द की दवाओं का अपने मन से ओवर द काउंटर लेकर के एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें, दर्द की वजह क्या है उसका इलाज करें, न कि दर्द की दवा से दर्द का इलाज करें। इसी तरह से कुछ भ्रांतियां लोगों में हैं

0: की शुगर अगर हो गया है तो वो अपने डॉक्टर को बिना दिखाए कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह की लोकल प्रिपेयर्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिस पे कोई खास स्टडी नहीं हुई रहती है, और फायदे का तो पता नहीं लेकिन नुकसान वो ज़रूर करेगा। चूँकि गुर्दा क्या होता है कि एक प्रकार की शरीर की एक छन्नी होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं शरीर में वो किडनी के ही द्वारा फिल्टर आउट होकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकलते हैं। कोई भी अगर हम हैवी मेटल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसा हैवी मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल कुछ खा रहे हैं जो कि किडनी से फिल्टर होने में किडनी को इंजरी कर रहा है तो वो गुर्दे के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए कोई भी इलाज या कोई भी दवा बिना अपने डॉक्टर के उचित परामर्श के ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपका सीधे आपके गुर्दे पे प्रभाव करेगा और गुर्दे आपके ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो टेक अवे मैसेज सिर्फ यही मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रहेगा कि अपने गुर्दे को बचाना है तो प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, हेल्दी डाइट रखनी है, डाइट में प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट हो जो कि एक हेल्दी एडल्ट के लिए 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे का है, और पानी खूब पीते रहें, अननेसेसरी की दवाओं के इस्तेमाल से बचें, अगर शुगर के मरीज हैं तो शुगर का कंट्रोल प्रॉपर रखें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते रहें, नियमित जांचें कराते रहें, और डायबिटीज़ जिसको है उसको हर 6 महीने साल भर पे UACR की जांच और क्रिएटिनिन की जांच नियम से कराते रहना चाहिए ताकि अगर कुछ बढ़ रहा है तो समय रहते हम उसको अलर्ट हो जाएं और उसे कंट्रोल करने में सक्षम हों।
1: किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत, इस विषय पर भी आप सुन रहे थे डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा की ये वार्ता, और इसी के साथ ही आज का स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: अंतराल के पहले आपने सुना बंटी और बबली फिल्म का गीत, आवाजें थी सौम्या लॉय और शंकर महादेवन की। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों को फिल्म राजा में।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ ही अब वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर रविन्द्र प्रताप सिंह का काव्य पाठ।
1: मेरी 3 कविताएं हैं जो मनुष्य, प्रकृति और मशीन के साथ द्वंद्व की स्थिति को दर्शाती हैं। पहली कविता है मशीन में उलझा हुआ आदमी। उलझा हुआ मशीन में मन से आदमी, भावनाएं पीसता उलझा सा आदमी। उलझा हुआ स्वयं में दिखता है आदमी, खुद से भी कितना दूर जाता है आदमी। लोहे सी धड़कने हैं पिसता हुआ है स्वर, लोहे सी धड़कने हैं पिसता हुआ है स्वर। स्क्रीन पे उलझी हुई सहमी हुई नजर, कोड में बातें सभी, कोड में पहचान है। बेड़िया मशीन की पहने हुए है आदमी। केबिलों के तार में उलझा हुआ है मन, केबिलों के तार में उलझा हुआ है मन। स्क्रीन पर ही चैट में दिखता है अपनापन, खुद से सवाल पूछ कर खुद से ही तर्क में, खुद से सवाल पूछ कर खुद से ही तर्क में। मिलता नहीं उसे इससे भी कोई हल, फिर घूरता मशीन को वे ला के देती हल। उलझा हुआ मशीन में मन से है आदमी। नकली चमक है आँख में नकली खनक हंसी, नकली चमक है आँख में नकली खनक हंसी। खुद से नहीं है प्रीत यह स्क्रीन में फंसी, उलझा हुआ मशीन में है मन से आदमी। सूरज उगा था कब, कब का ये ढल गया, कब शरद ऋतु पड़ी कब ग्रीष्म आ गई। भागता है मन भागता समय, स्वयं को सुने अवसर नहीं मिला। उलझा हुआ मशीन में है मन से आदमी, भावनाएं पीसता उलझा सा आदमी। ऐसे भी कई क्षण करता है खुद से प्रश्न, मैं ये जो हूँ खड़ा हूँ यंत्र या आदमी। भागता है मन भागता समय, स्वयं को सुने अवसर नहीं मिला। उलझा हुआ मशीन में मन से आदमी। ये भावनाएं बोझ हैं ये क्या है उलझने, ये भावनाएं बोझ हैं ये क्या है उलझने। ये मानवीय हैं या ये सब मशीन हैं। उलझा हुआ है मन से मशीन में आदमी, हर तरफ है रंग हर तरफ कृत्रिम ग्रंथ। ये प्रकृति से मिली हैं या ये भी मशीन हैं। फिर आत्मा जगाती तू बैठ आदमी, कुछ देर खुद से बात कर कुछ सोच आदमी। हैं जो ये भावनाएं उनको सहेज रख, यंत्र सब तो ठीक हैं पर यंत्र उनको रख। ये कविता मशीन और मनुष्य के बीच के द्वंद को दर्शाती है। आगे मैं एक बारामाता परंपरा में एक कविता पढ़ना चाहूँगा। इसमें चैत्र माह से लेकर फागुन तक के विभिन्न महीनों में एक व्यक्ति का क्या दिनचर्या होती है, उसकी क्या होती है, उसको दर्शाती हुई कविता है। प्रत्येक छंद में एक महीने का वर्णन किया गया है। चैत्र है बसंत अब भी जीवंत, है बसंत अब भी जीवंत। फसल खड़ी है पक खेतों में, स्वर्णिम भाव लिए मन में, पुनः हरियाली की आशा जीवंत। है बसंत अब भी जीवंत, फसल खड़ी है पक खेतों में, स्वर्णिम भाव लिए मन में, हरियाली की आशा जीवंत। है बसंत अब भी जीवंत। वैसाख तपती धूप दिखे अंगार, तपती धूप दिखे अंगार, अन्न भरे हैं सब भंडार, प्यासे खेत कुएं जलकम, भरा है श्रम फल से जीवन। तपती धूप दिखे अंगार, अन्न भरे हैं घर भंडार। अगला ज्येष्ठ मास की है। पवन थपेड़े आंधी बनते, शुष्क खेत मन में सद्विचार, कृषक सोच में वर्षा की धार, है बारिश का इंतजार, है बारिश का इंतजार। अषाढ़ मास की है। घनघोर घटाएं बिजली की चमक, गिरता जल धरती पर अमृत बन, गीतों संग

0: धान रोपता जीवन, हर्षित ग्राम और कुल जीवन। सावन धरती से नपतक है नृत्य, हरा भरा हर कार्यव्रत, ले समृद्धि की आस प्रबल, कृषक वृंद का मन समृद्ध। धरती से नपतक है नृत्य, हरा भरा हर कार्यव्रत। अगला मास भादों का। झूम रही हैं फसल खेत में, झूम रही हैं फसल खेत में, मन उमंग में नृत्य कर रहा, व्योम घटाओं को ले विह्वल, हो रहा प्रसन्न कृषक मन ही मन। अश्विन हर तरफ पर्व त्योहार मने, बाले स्वर्णिम खड़ी खेत में, श्री अन्न धान में है मकरंद, धरती पर फैली है सुगंध, हर तरफ पर्व त्योहार मने, है दीप ज्योति उत्सव आनंद, घर भरा समृद्धि का ले आनंद, हर श्रम का सुफल आज सम्मुख, कितना पुलकित संतुष्टि पल, है दीप ज्योति उत्सव आनंद। कार्तिक मास का। फिर मार्गशीर्ष आता है, श्रम साध्य समय आया फिर आज, हर पल उत्सव में बजे साज, शीत हवाएं ओस नमी, खेतों में फिर से कृषि बीज यत्न, श्रम साध्य समय आया फिर आज। अगला मास पौष। पौष माह का है आगाज, सुबह सुधल का कोहरा आज, पौष माह का है आगाज, सुबह धुंधल का कोहरा आज, ठितराती है फैली शीत, खेतों में फिर अंकुरित बीज। माघ आस धूप की लेकर आज, माघ मास का है आगाज, हर्ष और विश्वास भरा मन, कृषक हरसता हरा भरा मन। फाल्गुन महीने का। धरती पर फैला है बसंत, धरती पर फैला है बसंत, पीत कलेवर में धरा प्रसन्न, फसल पकी है खड़ी सुनहली, परिश्रम फल ले आती होली, धरती पर है फैला बसंत, फसल पकी है खड़ी सुनहली, परिश्रम फल ले आती होली। ये बारहमासा परंपरा में कविता रही। अब एक अंतिम कविता है जहाँ पर एक स्मृतियों का चित्रण है। गांव के रास्ते दिखे ओ आज अरसे बाद, गांव के रास्ते दिखे ओ आज अरसे बाद, छोड़कर जिनको चले थे हम दोपहरी बाद, देखा उन्हें मुड़ मुड़ दोबारा स्वप्न में हर बार, पर दूर वे होते गए हर माह ऋतु के पार। विस्मृत हुई पगडंडियाँ वे घास के मैदान, विस्मृत हुई पगडंडियाँ वे घास के मैदान, मिट गई जाने कहाँ वह गंध पावस आज, मन के भीतर गूंजते हैं फिर भी वही सब स्वर, याद वह आती रही नीम बरगद छाँव, आते रहे वे याद, ठंडी सड़क लहराती फसल, खेत की मेड़ें सिकुड़ती जा रही हैं और हरियाली सिमटती जा रही है, कई उन्नत परिपाटियां संस्कृति की स्मृति में सिमटती जा रही हैं, कई उन्नत परिपाटियां संस्कृति की स्मृति में उलझती जा रही हैं, क्यों खो रही निर्मल जलधार, नदियां भी सिमटती जा रही क्यों, प्रकृति की सांसें उबासी ले रही, बोझ प्रदूषण का गना गहरा रहा, मिट्टी में रसायन घुल रहे, मृदा कण है क्लांत, हवा भी है हांफने सी लगी, है कहानी गांव में अब भी बहुत, उन्हें सुनने वाला नहीं कोई बचा, है कहानी गांव में अब भी बहुत, उन्हें सुनने वाला नहीं कोई बचा, स्मृति हमें उस गांव की अपनी प्रकृति जड़ से निरंतर जोड़ती, हर छाँव में उस गांव की एक स्मृति सी खड़ी, हर गली के मोड़ पर एक कहानी गूंजती, हर छाँव में उस गांव की एक स्मृति सी खड़ी, हर गली के मोड़ पर एक कहानी गूंजती। चलो फिर से कहानी ढूंढते हैं और उस स्मृति के कई वृत्तांत लिखकर फिर दोबारा छोड़ते हैं, चलो फिर से कहानी ढूंढते हैं और उस स्मृति के कई वृत्तांत लिखकर दोबारा छोड़ते हैं, संस्कृति में चलो फिर घूमते हैं, विस्मित हुए कुछ बिंब फिर से खोजते हैं, विस्मित हुए कुछ बिंब फिर से खोजते हैं।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह सेवन का कहानी पाठ, और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है।

0: व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संजय श्रीवास्तव के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की लिखी इस भक्ति रचना के साथ।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में श्रोताओं अब लीजिए सुनिए डॉक्टर योगेश प्रवीण की लिखी है भक्ति रचना संजय श्रीवास्तव की आवाज में।

सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में श्रोताओं ने आनंद लिए संजय श्रीवास्तव के गाए भजनों का। आपके साथ संगत करता थे तबले पर ठाकुर प्रसाद मिश्रा, हारमोनियम पर दीपक कुमार चौबे, कीबोर्ड पर विजय कुमार सैनी और बांसुरी पर अलका सिंह। और इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हुए और प्रस्तुत फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में आपको सुनवाने जा रहे हैं आशिक बनाया आपने फिल्म का गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की, गीत के बोली के समीर ने और संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का।

अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की गाई सी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी

147 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक

0: कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्ष

0: वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो जो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार।

0: प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
1: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
4: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group

0: आते हुए इसे जामे शराकत दारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैतिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। ये माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमदोरफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तआवुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि एआई का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तआवुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वफूद की सतह की बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 11 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें लेबर माइग्रेशन, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आला तालीम, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एक एआई चेयर का कयाम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सियाहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस अकेडमी और स्लोवाकिया की अकेडमी ऑफ

0: करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कात्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल के सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि आईडीएफ इसराइली शहरियों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुहैया मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैन अल-अक़वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है जिसे आलमी तेल सप्लाई के पांचवें हिस्से की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त हो सकेगी। अमन के इस माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां आला सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, उनके पास खाम तेल के वाफिर जखायर मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल के खातिर ख्वाह जखायर को बरकरार रखे हुए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरमा सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ये इंकशाफ किया। फर्टिलाइजर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी वंदना प्रियाशी ने कहा कि मुल्क में फर्टिलाइजर्स का जखीरा मामूल के मुताबिक है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा कार्गो दिशा बहिफाजत आबनाए हुरमुस पार कर गया है। तवक्को है कि जुमेरात को ये दहेज बंदरगाह गुजरात की दहेज बंदरगाह पहुंच जाएगा। रेलवेज की वजारत ने शिमाली रेलवे की अंबाला डिवीजन के लिए 201 करोड़ रुपए मालियत के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कवच मुल्क में तैयार करदा खुदकार रेल तहफुजाती निजाम है जिसे ऑपरेशनल सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजह किया गया है। रेलवे की वजारत ने गुजरात में अहमदाबाद डिवीजन के लिए भी 140 करोड़ रुपए के कवच प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अहमदाबाद के साइबर जराइम से मुतालिक महकमे ने नीट इम्तिहान में हुई धोखाधही में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में राजस्थान और बिहार से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद के साइबर जराइम के महकमे में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस शरद सिंघल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान से हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमान जाली सोशल मीडिया चैनल चला रहे थे जिनमें वो नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान के पर्चे बेचने का दावा कर रहे थे। वजारत दिफा ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए रियासती डायरेक्टोरेट्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। इस फैसले से मुल्क में एनसीसी रियासती डायरेक्टोरेट्स की कुल तादाद बढ़कर 19 हो गई है। वजारत ने वाजे किया है कि नए डायरेक्टोरेट्स की तश्कील से मरकजी सतह पर मुनाकिद होने वाले बाकायदा कैंप्स जैसे योम जमहूरिया की परेड का कैंप और ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में शिरकत करने वाले कैडेट्स की तादाद में इजाफा होगा। मुल्क के हसिस बाजार के अहम इशारे आज के कारोबारी सेशन के अख्तिताम पर तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के ऐलान के बाद सरमायाकारों का रुझान मुस्बत हुआ है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के मैच में स्वीडन ने ट्यूनेशिया को 1-5 गोल से करारी शिकस्त दी। आज के दीगर मैचों में अमरीका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बहामी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबराह इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरून मुल्क तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। रात के 9:30 हुए हैं और प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रवाह ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

नमस्कार दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आप सबका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू आपके साथ। साथियों, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, उम्मीद और चुनौतियां आती जाती रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है वो है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। साथियों, कहते हैं जैसी सोच वैसा जीवन। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं यानी कि पॉजिटिव हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आसानी नजर आती है और जीवन में नई ऊर्जा, नई एनर्जी का संचार होता है। तो भाई, हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया जब एक पॉजिटिव सोच ने किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में आपकी मदद की हो? तो अपना अनुभव, अपनी याद इस बारे में हमसे ज़रूर साझा करिए। और आपके पत्र आपके mail@gmail.com पर फिलहाल इन्जॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: yes, yes. 써요, 이렇게.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। साथियों, पॉजिटिव सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आखिर है क्या चीज? साथियों, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करना है। जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारी थॉट पॉजिटिव होती है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा टेंशन कम होती है, हमारा तनाव कम होता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। चलिए फिलहाल कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के पहले ईमेल को, जो कि हमें लिख भेजा है देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और साथ ही साथ मास्टर अल कबीर तामोरिया जी ने, और इन्होंने ये ईमेल हमें भेजा है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, और ये सुनना चाहते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण, सुदेश, राकेश पंडित और पूनम भाटिया की। तो लीजिए, आपकी पसंद पर ये ट्रैक पहुँचा रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत शुक्रिया।

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चला है 9:41 और हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज की अगली मेल को, जो कि हमें लिख भेजा है संबलपुर कांकेरी से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव ने। और ये लिखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार सकारात्मक सोच के कारण संभव सभी जो असंभव काम होते हैं हमें वो संभव लगने लगते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि ये जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। सही दृष्टिकोण और विचारों से असंभव को संभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने फागुराम जी। एक पॉजिटिव थॉट, एक छोटा सा थॉट, एक सकारात्मक थॉट हमारे निराशा भरे जीवन को ढेर सारी आशाओं से भर सकता है, बस बशर्ते कि हम उस पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे लाएं, अपने जीवन में कैसे उसे लागू करें, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और भाई इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हम सुबह जल्दी उठें, योग करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉक पर जाएं, तो इससे हमारे जो जीवन है, जीवन शैली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हम ला सकते हैं। फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। आपने सुनना चाहा है आशा फिल्म का गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

साथियों, एक बार एक व्यक्ति रोज शिकायत करता था कि उसके जीवन में केवल परेशानियां, केवल समस्याएं हैं। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, एक मित्र ने उसे एक खाली कागज दिया और कहा, इसमें अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां लिख दो। जब उसने लिखा तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि क्या इस कागज में कुछ खाली जगह भी है, क्योंकि खाली जगह कुछ रह गई थी। उसने अपनी कुछ परेशानियां लिखी और पेज में कुछ स्पेस खाली रह गया था। तो उसके फ्रेंड ने जब पूछा कि इस पेज में, इस कागज में कुछ खाली जगह भी है, तो उसने कहा हाँ। तो मित्र बोला, उसका फ्रेंड बोला, ठीक उसी तरह जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन खुशियां और अवसर भी हैं। यदि नजर केवल समस्याओं पर होगी तो अवसर दिखाई ही नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहूंगी कि भाई, हमें अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में उनका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। आज परेशानी है तो भाई कल खुशियां भी आएंगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को हमें इस ओर घुमा देना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगली मेल को, जो कि हमें लिख भेजा है किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से। और ये लिखते हैं हमें ईमेल राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनी राम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू राम प्रसाद, देवी शंकर शुक्ला और कृष्ण कुमार सिंह जी ने। और ये सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका यागनी की आवाज़ों को फिल्म साजन चले ससुराल में। तो लीजिए, आपकी पसंद का ट्रैक आपको सुनवा रहे हैं। एंजॉय करते रहिए, आकाशवाणी लखनऊ साथ में सुनते रहिए।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। और साथियों, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:51। और क्योंकि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों से जुड़ी, तो आप ही अपने विचार हमसे साझा करें, हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। ईमेल एड्रेस एक बार फिर सुने, apkeemail@gmail.com। अगला ईमेल हम तक पहुंच चुका है हमारे इस कार्यक्रम का, जो कि हमें लिख भेजा है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललोहा जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम शिखार, ऋचा गुड़िया, बबलू राजेश और विजय पांडे जी ने। और ये कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक बात है कि हमें एक छोटी सी चिड़िया से इतनी बड़ी बात सीखने को मिलती है कि वो कैसे अपना आशियाना बनाती है, कैसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे खाना जुटाती है। भाई, इससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़, प्रेरणादायक चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। इतनी अच्छी बात हम तक पहुँचाने के लिए विजयपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल कार्यक्रम में आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कामचोर।
1: तुमसे बढ़कर

साथियों, कार्यक्रम अब धीरे धीरे पहुंच रहा है अपने आखिरी पड़ाव तक। तो एक छोटी सी सीख आप सबसे जरूर साझा करूंगी कि जीवन में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हमारे अनुसार नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी रिएक्शन कैसे होंगी, ये सब हमारे हाथ में होता है। इसलिए हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रखिए और विश्वास रखिए कि बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है और वो कह रही है कि हम जल्दी से शामिल कर रहे हैं हमारे आज के अगले ईमेल को। पहला ईमेल हम शामिल कर रहे हैं ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा का। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा का। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी का भी हम ईमेल शामिल कर रहे हैं। साथ ही ईमेल आया है हमें ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुखान, अरजान अब्बास और अब्बास परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। जल्दी से आपको हम सुनवा देते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

कार्यक्रम में एक और ईमेल हमें बहुत दूर से क्योंकि आया तो हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। ये ईमेल हमें आया है ग्राम बमाना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से और ये इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है चंडीगढ़ से और ये ईमेल हमें लिख भेजा है रोशनी रावत जी ने। तो रोशनी रावत जी हमें ईमेल करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इंजॉय करिए प्यारा सा ट्रैक।

साथियों, विचार बदलते हैं तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। इन्हीं प्रेरणादायक बातों के साथ मुझे यानी मीनू को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति। तब तक नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडिया वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के

0: आस्था, यह कथा है सत्य, निष्ठा, आत्मविश्वास एवं अपने धर्म में आस्था की। यह कहानी नहीं है, एक सत्य कथा है उस युग पुरुष की, जिसने अपने अदम्य साहस, त्याग, धर्म निष्ठा एवं संकल्प से मृत्यु के मुंह को मोड़ दिया। यह कथा है स्वामी विवेकानंद की। वर्ष 1898 में अप्रैल मई के महीने में कलकत्ता नगर में भयानक प्लेग फैला। पूरे नगर के स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, नौजवान महामारी के प्रकोप से सूखे पत्तों की तरह मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय स्वामी विवेकानंद दार्जिलिंग में अपने आश्रम में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे।
1: क्या यह मार्ग स्वामी जी के आश्रम की ओर जाता है?
2: जी हाँ, आइए, हम उधर ही जा रहे हैं।
1: आप कहाँ से आ रहे हैं?
2: हम तो दार्जिलिंग के निवासी हैं। जब भी स्वामी जी यहाँ दार्जिलिंग में होते हैं, हम उनके दर्शन एवं प्रवचन के लिए अवश्य आते हैं। आप कहाँ से आए?
1: मैं तो आसनसोल से आया हूँ। बहुत दिनों से स्वामी जी के दर्शन की अभिलाषा थी। उनके विचार अत्यंत ही ओजस्वतापूर्ण होते हैं, एक नई चेतना जागृत करते हैं।
2: जिस पर उसके गुरु की कृपा हो, वो व्यक्ति ईश्वर के निकट हो ही जाता है। स्वामी जी सदैव अपने गुरु के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। गुरु की प्रेरणा से ही वो दिन रात मानव सेवा में रत रहते हैं।
1: कौन है स्वामी जी के गुरु?
2: स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनकी कृपा से ही स्वामी जी सच्ची भक्ति एवं संत मार्ग पर चल रहे हैं। आइए, हम आश्रम पहुँच ही गए हैं।
3: भक्त जनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वामी जी प्रार्थना कक्ष में अपने गुरुदेव के ध्यान में बैठे। मैं अभी उन्हें आपको संबोधित करने हेतु आग्रह करता हूँ। तब तक आप धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें।

0: गुरुदेव, चित्त अत्यंत विचलित है। मानव समाज पर कितनी विपदाएं हैं, बीमारी, भूख, लाचारी, गरीबी, जात पात का भेदभाव, कितने कष्ट हैं। पूरे देश को मुझसे अपार अपेक्षाएं हैं, किंतु मैं तो अपने को असहाय पाता हूँ। कैसे सहायता करूं इनकी? गुरुवर, मुझे दिशा दीजिए, मुझे दृष्टि दीजिए, मैं क्या करूं?
1: नरेंद्र, धर्म मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाता है। मानव सेवा ही ईश्वर की पूजा है। प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। सच्ची भक्ति दिखने से नहीं, स्वयं मिटने से प्राप्त होती है। उठो, समस्त समाज को सेवा और साधना का संदेश दो।
0: जैसी आज्ञा गुरुदेव। ओम नमो।
2: प्रणाम स्वामी।
0: केष्टो, तुम कब से आकर बैठे हो?
2: स्वामी, आप गुरुदेव के ध्यान में तल्लीन थे। सभागार में भक्तगण आपके संबोधन के लिए आतुर हैं।
0: अच्छा, तो चलो चलते हैं।
3: स्वामी जी की जय।
0: शांत हो जाइए। भारतवर्ष दर्शन और अध्यात्म के चिंतन का देश है। ये भूमि मृदुता, सौम्यता और स्नेह की जननी है। विश्व भ्रमण से हुए अनुभवों के आधार पर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आप सभी से कह सकता हूँ कि अभी हमारा देश इन सब गुणों में अन्य देशों से बहुत आगे है। बहुत से महान कार्य किए जाने हैं और ये सारे कार्य आपके द्वारा ही होने हैं। ये भारत भूमि है। सन्यासियों को भी राजनेताओं जैसा सम्मान दिया जाता है। ये इस देश के नागरिकों की ईश्वर और ईश्वर के भक्तों में श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसा केवल इस देश में होता है और ये इस देश का विलक्षण गुण है। मैं दिन के उजाले की तरह साफ देख रहा हूँ कि आप सभी के अंदर एक अनंत शक्ति निहित है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, उठिए, इस शक्ति को जगाइए और मानव की सेवा में लगा दीजिए।

0: जीवन को निष्क्रियता का जंग लगाने से कहीं अधिक सार्थक है कि आप अपने आप को मानव कल्याण के पथ पर बलिदान कर दें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न कर लो। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस संदेश को आत्मसात करके आप अपने घरों को प्रस्थान करें। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। क्या बात है केशतो?
1: स्वामी, कोलकाता से बैनर्जी बाबू आए हैं।
0: अच्छा, कहाँ हैं? उन्हें बाहर क्यों बैठा रखा है? जाओ, यहीं बुला लाओ।
1: जी।
2: प्रणाम स्वामी।
0: आइए बनर्जी दादा, आइए। कैसे आना हुआ?
2: कोलकाता की दुर्दशा देखकर मन विचलित हो गया था स्वामी, इसीलिए आपके चरणों में चला आया।
0: सुना है वहाँ कोई बड़ा रोग फैल गया है?
2: बहुत भयंकर स्थिति है स्वामी, वहाँ प्लेग नाम की बीमारी फैली है। जीवन मृत्यु में भेद ही मिट गया है और गरीब बेचारे तो पत्तों की तरह झर रहे हैं। कुछ करिए स्वामी।
0: बनर्जी बाबू, रुकेंगे आप तो अभी?
2: जैसा आप आदेश देंगे वही करूंगा।
0: ठीक है, सायंकाल भोजन के समय आपसे भेंट होगी। गुरुदेव, कोलकाता में भयानक रोग फैला है, लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों गुरुदेव, क्यों? पृथ्वी पर इतनी विपदा क्यों आती है? क्यों प्रभु, क्यों?
3: नरेंद्र, विपदाएं ही मनुष्य के चरित्र, आचार और व्यवहार की दिशा निर्धारित करती हैं। तुम इतना विचलित क्यों हो रहे हो?
0: गुरुदेव, ये कैसी महामारी है? मानव जीवन तृण तृण होकर बिखर रहा है, सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं।
3: तुम कोलकाता चले जाओ नरेंद्र।
0: कोलकाता तो मैं चला जाऊं गुरुदेव, किंतु मैं अकेला वहां क्या कर पाऊंगा?
3: तुम अपना कर्तव्य करो नरेंद्र। यदि किसी समस्या से भय लगे तो बजाय भागने के उस समस्या का सामना करो, ईश्वर अवश्य सहायता करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
0: ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।
1: भोजन तैयार है स्वामी जी।
0: अच्छा अच्छा, और बनर्जी बाबू?
1: वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अच्छा ठीक है केशतो, सभी भिक्षुओं को बुला लो, प्रातःकाल कोलकाता जाना है।
1: अचानक?
0: तुम जाओ और सबको बुला लाओ। भक्तों, कोलकाता में महामारी ने विनाश का तांडव मचा दिया है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं। ऐसे में हम सब कल ही कोलकाता चलेंगे।
4: स्वामी जी, हमें वहाँ क्या करना होगा?
0: सिसकते मानवता की सेवा, दीन दुखियों पर अपनी दया और स्नेह की वर्षा।
5: स्वामी, हमारे पास ना तो संसाधन है और ना ही धन, हम वहाँ क्या कर पाएंगे स्वामी?
0: स्वयं पर भरोसा, अपनी शक्ति को पहचानो। शक्ति जीवन है, निराशा मृत्यु है। आपके इस प्रश्न को सुनकर बहन निवेदिता की याद आ गई। मेरे विचारों से प्रभावित होकर वो इंग्लैंड से भारत आ गईं और भिक्षुणी बन गईं, और अब कोलकाता में एक गांव में स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। उन्हें न संसाधनों की आवश्यकता है, न धन की और न ही मेरी। हमारा सबसे बड़ा साधन हमारी इच्छा शक्ति है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। कोलकाता में इस बीमारी से लड़ने के लिए निवेदिता बहन को भी इस अभियान में हमारा साथ देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। अब आप सब लोग प्रातः कोलकाता चलने की तैयारी करें।
6: स्वामी जी अपने स्वयं सेवकों के दल के साथ कलकत्ता पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कलकत्ता शहर तो मरुस्थल के सन्नाटे में डूब गया है। काली माता के शहर को प्लेग रूपी राक्षस ने अपने चंगुल में जकड़ रखा है। चारों ओर भय का वातावरण है। अंग्रेज सरकार के कड़े नियमों से डरे लोग अपने परिजनों की लाशों को सड़क पर ही छोड़कर भाग जा रहे थे। वो अपने परिवार में हुई प्लेग की सूचना तक को छिपा रहे थे।
0: नगर की स्थिति अत्यंत भयावह है। लोग बीमारी से कम उसके भय से अधिक मर रहे हैं। बीमारी के इलाज में सहयोग करने के बजाय नगर छोड़कर भाग रहे हैं।

0: हैं, मैं एक विशेष समिति का गठन करता हूं और इसकी सचिव होंगी भगनी निवेदिता। केशतो मुख्य पर्यवेक्षक होंगे। हम आज से ही नगर में जगह जगह सेवा केंद्रों की स्थापना करेंगे। केशतो के साथ स्वामी सदानंद, शिवानंद, आत्मानंद जगह जगह सेवा शिविर लगाएंगे। ये लोग गली कूचों में जाकर सफाई व्यवस्था देखेंगे, दवाई पहुंचाएंगे, मरीजों को चिकित्सा शिविरों तक लाएंगे और शवों का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करेंगे। इन सेवा शिविरों की स्थापना में बनर्जी बाबू सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही इनके संचालन के लिए डॉक्टर राधा गोविंद हमें सहयोग और सहायता देंगे।
1: स्वामी जी, हमें बनर्जी बाबू का सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन इस वृहद कार्य के लिए बहुत से कार्य सेवकों की आवश्यकता होगी, उसका प्रबंध कैसे होगा?
0: तुम चिंता मत करो केशतो, दीन दुखियों की सेवा के लिए निकले हो तुम। आज से तुम इस नगर के दरिद्र नारायण हो। स्वयं पर भरोसा रखो, देखना तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही होता चला जाएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, मैं एक प्लेग घोषणा पत्र बनाऊंगा। हमारी टोलियां इस घोषणा पत्र की प्रतियां घर घर वितरित करेंगी।
2: स्वामी जी, इस घोषणा पत्र में होगा क्या?
0: सर्वप्रथम मृत्यु के भय से मुक्ति का संदेश, जो सबसे बड़ा धोखा है। मन को सदा प्रसन्न रखो, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। दूसरा स्वच्छता का संदेश, अपना स्थान साफ सुथरा रखो। और तीसरा अफवाहों से बचाव, हम लोगों को आश्वस्त करेंगे कि अंग्रेज सरकार ना तो किसी को जबरन टीका लगाएगी और ना ही परेशान करेगी।
2: केशतो, देखो तो बाहर कौन लोग खड़े हैं?
1: अभी बताता हूँ।
0: बनर्जी बाबू, आप देखना, ये घोषणा पत्र इस प्लेग उन्मूलन अभियान में मील का पत्थर साबित होगा।
1: स्वामी जी, कुछ छात्र आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपकी अनुमति है?
0: बिल्कुल, अवश्य। युवा शक्ति ही तो देश की समस्याओं का समाधान उपलब्ध करा सकती है।
3: स्वामी जी प्रणाम। हम सभी छात्र कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यात्म एवं उपनिषद विषय पर शोध कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आप जैसे वेदों एवं उपनिषदों के विद्वान से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ है।
2: स्वामी जी, ये हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमें अध्यात्म, वेद और उपनिषद के गुप्त एवं गूढ़ अर्थों से अवगत कराएं।
4: आपकी ये कृपा हमें हमारे शोध कार्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।
0: वेद और उपनिषद का गुप्त ज्ञान, वाह! बीमारी के दानव ने पूरे कोलकाता शहर को अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है। तुम्हारे भाई बंधु भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और तुम लोग इस मानव त्रासदी से मुंह मोड़ कर मुझसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करना चाहते हो। जाओ, पहले अपनी पुस्तकें गंगा में विसर्जित करो, फिर मेरे पास आओ। इस समय सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा धर्म इन लाचार लोगों के आंसू पोंछना है। जाओ, पहले अपने सभी साथियों को साथ लेकर मानव सेवा के काम पर जुटो। ब्रह्म ज्ञान तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।
3: स्वामी जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी।
2: स्वामी जी, हम समझ गए कि नर ही नारायण है।
4: हमें तो असली ज्ञान प्राप्त हो गया। हम सौगंध खाते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों को साथ लेकर नगर में सफाई अभियान चलाएंगे।
5: स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय!
0: अरे केशतो, कहाँ हो? शीघ्र यहाँ आओ।
1: आज्ञा करे स्वामी।
0: मैंने कहा था ना तुमसे, चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो। नारायण स्वयं तुम्हारे भीतर बैठे हैं। देखो, आ गई स्वयं सेवकों की सेना। पूरे विश्वविद्यालय का युवा तुम्हारे साथ है। अब निकलो नगर में और इस प्लेग के दानों का ध्वंस कर दो।
6: भारत माता की
5: जय!
6: स्वामी जी की
5: जय!
6: भारत माता की
5: जय!
6: स्वामी जी की
5: जय!
7: नगर में प्लेग उन्मूलन का कार्य पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ हो गया। जगह जगह सेवा शिविर बन गए। मोहल्लों के लोग स्वयं आगे आकर अपनी गलियों की सफाई करने लगे। स्वामी जी का लिखा प्लेग घोषणा पत्र घर घर में बट गया। लोगों ने भय मुक्त होकर प्लेग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया।

0: किंतु यह बात नगर के कुछ रूढ़िवादी पंडितों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि स्वामी जी ने अपने सेवकों के माध्यम से नगर में ऊंच नीच, छूत अछूत, गरीब अमीर के भेदभाव को छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्हें यह कार्य धर्म के विरुद्ध लगा, तो उनका भी एक दल स्वामी जी से मिलने पहुंचा।
1: स्वामी जी हैं?
2: जी उपस्थित हैं। बताएं आपको क्या कार्य है।
1: अरे आप जो स्वयं सेवकों से पापाचार करा रहे हैं उस विषय में बात करनी है।
2: जी मैं अभी स्वामी जी से पूछकर आपको सूचित करता हूँ। स्वामी जी, नगर के दो पंडित आपसे मिलने आए हैं।
3: अच्छा, क्या समस्या है उनकी?
2: उन्हें स्वयं सेवकों के सेवा कार्यों पर आपत्ति है।
3: ठीक है, भेज दो उन्हें।
2: आइए, स्वामी जी आपको बुला रहे हैं।
3: आइए आइए, विराजिए।
1: मैं पंडित कमलाकांत।
3: आसन ग्रहण कीजिए।
4: मैं पंडित सूर्यकांत।
3: आइए आइए, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। सुना है कि आपको सेवकों के कार्य पर कुछ आपत्ति है।
4: घोर आपत्ति।

0: भेज दो उन्हें।
1: आइए, स्वामी जी आपको बुला रहे हैं।
0: आइए आइए, विराजिए।
2: मैं पंडित कमलाकांत।
0: आसन ग्रहण कीजिए।
3: मैं पंडित सूर्यकांत।
0: आइए आइए, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। सुना है कि आपको सेवकों के कार्य पर कुछ आपत्ति है?
3: घोर आपत्ति है।
2: हम पूछना चाहते हैं, जो सेवा कार्य नगर में हो रहा है वो आपकी सहमत से हो रहा है?
0: बिल्कुल।
3: ये तो घोर पाप है, धर्म के विरुद्ध है, ईश्वर से विद्रोह है।
0: कैसे?
2: क्या आप ईश्वर द्वारा निर्धारित नियति में व्यवधान नहीं डाल रहे?
3: केवल व्यवधान? अरे आप ईश्वर से विद्रोह कर रहे हैं।
0: क्या कह रहे हैं आप लोग? हम तो ईश्वर के बताए मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है। कृपया स्पष्ट करें कि हमसे भूल कहाँ हो रही है।
2: स्वामी जी, शास्त्रों में स्पष्ट इंगित है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, ईश्वर कोई न कोई विनाश लीला रचता है। धरती पर हो रहे पाप का नाश करने के लिए ही ईश्वर ने यहाँ प्लेग को दंड स्वरूप भेजा है। इस प्लेग से जिनका अंत नियति ने निर्धारित किया है, उन्हें बचाने वाले हम होते कौन हैं?
3: प्लेग पीड़ित इन पापी अछूतों को बचाकर आप विधाता के न्याय में बाधा डाल रहे हैं।
0: पंडित जी, आपके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतता है, क्यों है ना? तो धर्म ये भी तो कहता है कि बीमार, रुग्ण, तड़पते हुए मनुष्यों की सेवा करना महान पुण्य का कार्य है।
4: स्वामी जी के अकाट्य तर्कों के सामने रूढ़िवादिता के पैर उखड़ गए। पूरे कलकत्ता में प्लेग उन्मूलन ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। जगह जगह चिकित्सा शिविर खुल गए। लोग निर्भय होकर रोगियों को इलाज के लिए लाने लगे।
5: सिस्टर, कहाँ है आप? देख भी नहीं रही हैं। मरीज को डिहाइड्रेशन हो गया है, चलिए इसे फौरन ड्रिप लगाइए।
6: जी।
5: और ध्यान देना, बेहोशी में रोगी अपनी बांह ना हिलाए, वरना सुई निकल जाएगी।
6: जी बिल्कुल।
5: अरे भाई केस्टो, जो भी रोगी पानी मांगे तो याद रखना कि उसमें दवा मिला कर देना। और सुनो, बैनर्जी बाबू से बोलो कि यहाँ इस बाड़े के सारे नल बंद करा दें, ताकि कोई भी आदमी इन नलों का पानी ना पी सके।
7: जी
5: सिस्टर, सभी मरीजों को दवा दे दी गई है, और तुम उस कोने वाले मरीज को इंजेक्शन लगा दो, और उसके बाद मेरे साथ नए चिकित्सा शिविर चलो। और सुनो भाई केस्टो, हम बस एक घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ संभालो।
6: अरे
7: क्या बात है माई?
6: पानी, मेरा गला सूखा जा रहा है, पानी।
7: ठहरो ठहरो माई, मैं अभी पानी लाता हूँ।
6: हाय, मेरा दम घुटा जा रहा है, जल्दी पानी। पानी, मैं मर
7: जाऊँ। ये लो माई, पानी पी लो। माई पानी पियो, ईश्वर तुम्हें ठीक कर देगा। माई ये क्या बात है माई, तुम रुक क्यों गई? पी लो, ये पानी में डॉक्टर साहब ने दवा डाली है, तुम इसे पीते ही ठीक हो जाओगी माई। ये लो पी लो। क्या हुआ माई, आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं?
6: पहले ही बताओ, कौन जात हो
7: माई?
6: कौन जात हो तुम?
7: माई वैसे तो मेरे हाथ का पानी कोई पीता नहीं, लेकिन तुम बीमार हो माई, और यहाँ कोई और है भी नहीं, और नर्स दीदी को आने में समय है। माई ये पानी पी लो। माई माई पानी पी लो, तुम्हारी जान बच जाएगी माई।
6: ना ना ना, अब मरते समय अब तुम्हारे हाथों का पानी पीकर
7: माई, माई
6: अरे
7: माई मर गई। अरे पानी पी लेती तो जी सकती थी, मर गई लेकिन मेरे हाथ का पानी नहीं पिया।
4: चिकित्सा शिविर में उस बुढ़िया ने केष्टो के हाथ से पानी पीने के बजाय मरना उचित समझा। इस घटना से केष्टो विचलित हो गया। उसने सेवा कार्य छोड़कर घर वापस जाने का निर्णय लिया। अगले दिन वह स्वामी जी के कैंप में गया, जहां वो बैनर्जी बाबू से कार्यों की प्रगति की चर्चा कर रहे थे।
0: बनर्जी बाबू, अब तो लगता है सब काम अच्छे से चल रहा है, आप बताइए संसाधनों के स्तर पर क्या प्रगति है?
8: स्वामी जी, आपकी कृपा है, बटुकेश्वर दत्त मरीजों के लिए 100 पलंग भेज रहे हैं, साथ ही 10,000 रुपया भी देने का वायदा किया है।
0: वाह, ये प्रभु कृपा है। मैंने कहा था ना कि हमसे अधिक चिंता करने वाला एक ऊपर बैठा है।
7: प्रणाम स्वामी जी।
0: आओ केष्टो आओ।

0: मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। देखो अब हमें अपना मठ नहीं बेचना पड़ेगा।
1: स्वामी जी, बंग महिला समिति ने मरीजों को देखने के लिए कल से चार चार पारियों में 20-20 लोगों की ड्यूटी लगाई है।
0: इतने संसाधन मिल रहे हैं, तब तो हम एक दो नए शिविर दूसरे क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं। यहाँ का शिविर तो केष्टो इतनी अच्छी तरह से देख ही रहा है, क्यों केष्टो?
2: अवश्य स्वामी, किंतु
1: मैं चलूं स्वामी जी, नए शिविरों की व्यवस्था करनी है।
0: हाँ हाँ ठीक है, आप चलें, सायंकाल फिर आइएगा। केष्टो चलो हम तुम्हारे शिविर में मरीजों को देखने चलते हैं। अच्छा केष्टो एक बात बताओ, तुम इतने चुप क्यों हो? मैं देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि कल एक वृद्धा की मृत्यु हो गई, इसलिए तुम दुखी हो। परंतु केष्टो हम सबको तो नहीं बचा सकते, फिर भी देखो तुम्हारे प्रयास से पूरे कोलकाता पर हमने बीमारी से युद्ध करने का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया है। शीघ्र ही हम इस विपदा पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
2: स्वामी एक विनती है।
0: हाँ बोलो केष्टो।
2: स्वामी मैं वापस जाना चाहता हूँ।
0: क्या ऐसा क्यों कह रहे हो केष्टो? सेवा का ऐसा अवसर छोड़कर कहाँ जाओगे? और तुम्हारे बिना तो मैं अपंग सा हो जाऊंगा। भला तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया केष्टो?
2: स्वामी जी, कल एक बूढ़ी माँ ने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरे हाथों का पानी नहीं पिया, इससे मेरा मन आहत हो गया है स्वामी।
0: उसने तुम्हें अछूत समझा, वो भूल गई कि तुम्हारे रूप में स्वयं गोविंद आए थे उसे बचाने। जाति पात छोटा बड़ा, इसका उद्भव अज्ञान और स्वार्थ से होता है। तुम्हारी आंखों में आंसू? ना ना केष्टो, ये पराजय है। केष्टो छुआछूत भी एक महामारी है, प्लेग से बड़ी भयंकर महामारी, और हमें इससे लड़ना होगा।
2: पर कैसे प्रभु?
0: जैसे हमने प्लेग को चुनौती दी है, चलो चलकर रोगियों से मिलते हैं। मेरे बीमार बंधुओं, कल एक बूढ़ी माँ का निधन हो गया। कारण, उसने केष्टो के हाथ का पानी नहीं पिया। यदि वो पी लेती तो वो जल अमृत की तरह काम करता। आज मैं आप सभी को अपने गुरुदेव श्री राम कृष्ण परमहंस द्वारा की गई वेदांत की व्याख्या से परिचित कराता हूँ। इसको सुनकर आप स्वयं निर्णय लें कि कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन ऊंचा है और कौन नीचा। वेदांत के अनुसार संसार एक है और उसका मूल है आत्मा। जो भी जीव इस ब्रह्मांड में आता है वो इस आत्मा का ही रूप मात्र है। आत्मा एक है, आत्मा से अलग और कुछ नहीं है। अतः हम सब प्राणी एक हैं। फिर क्यों ना हम सबको समान दृष्टि से देखें? जो केष्टो है वही आप हैं और वही मैं हूँ। जब आप मेरे हाथ से पानी पी सकते हैं, दवा ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो भला केष्टो के हाथ से क्यों नहीं? इसीलिए कल केष्टो अपने हाथ से सबको प्रसाद खिलाएगा। आप देखिएगा, अमृत की वर्षा होगी और इस बीमारी का विनाश हो जाएगा।
3: कलकत्ता में प्लेग का रोग समाप्त हो गया। स्वामी जी केष्टो को साथ लेकर वापस बेलूर मठ में आ गए।
0: केष्टो, कोलकाता को रोग से मुक्ति मिल गई, हम अपने मठ में वापस आ गए। देखो यहाँ कितनी शांति है।
2: स्वामी जी, आपके प्रयास से लोगों का कितना भला हुआ। मन में एक शंका है स्वामी।
0: क्या शंका?
2: आपने उस दिन सभी मरीजों से ये कैसे कह दिया कि मेरे हाथ से प्रसाद खा लेने से उनकी बीमारी दूर हो जाएगी?
0: आस्था, ये मेरी आस्था का प्रमाण है। आस्था, अनासक्ति और सेवा भाव से किए गए कार्य सदैव ही इच्छित फल देते हैं। अब तुम जाओ केष्टो, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मैं थक रहा हूँ गुरुदेव, मैं थक रहा हूँ।
4: नरेंद्र, क्या तुम दुखी हो?
0: न दुखी हूँ न सुखी हूँ गुरुदेव, परंतु अब संसार में मन नहीं लगता। मैं थक रहा हूँ, मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ता जा रहा है। मैं शांति चाहता हूँ गुरुदेव।
4: तो आ जाओ, मेरे पास चले आओ।
0: आपके पास? आपके पास कैसे आ सकता हूँ गुरुदेव? कितने काम सौंप रखे हैं आपने, उन सबको भी तो पूरा करना है।

0: आसक्ति को अपने मन में स्थान न दो। नरेंद्र, तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। तुमने सेवा और सदाचार की जो अलख इस देश में जगाई है, वो भारत भूमि से दुराचार के जंगल को स्वाहा कर देगी। तुम्हारा शरीर ना भी रहे, पर तुम्हारी आत्मा तो रहेगी ना। आओ, अपने भौतिक शरीर को छोड़कर आत्मा में लीन हो जाओ।
1: जैसी आज्ञा गुरुदेव। ओ
2: स्वामी जी, बैनर्जी बाबू आए हैं, बहुत प्रसन्न हैं। स्वामी, स्वामी, स्वामी, बैनर्जी दादा, बैनर्जी दादा, स्वामी जी, स्वामी जी, हमें चोर कर चले गए बैनर्जी दादा। बैनर्जी दादा,
3: हाँ, हाँ केस्टो, देखो तो उनके शरीर से कैसा प्रकाश निकल रहा है।
2: अब उनके बिना कैसे रहेंगे, क्या करेंगे?
3: केस्टो, स्वामी जी के शब्दों को याद करो।
4: अपने आप को पहचानो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाओ।
5: 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म में लीन हो गए, किंतु उनकी शिक्षाओं ने उन्हें अमर बना दिया। प्लेग उन्मूलन की यह घटना एवं स्वामी जी का प्लेग घोषणा पत्र आज भी संसार में आपदा प्रबंधन में मानव की दृढ़ निष्ठा, लगन एवं संकल्प के रूप में याद किया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे नाटक आस्था, लेखक के अग्रवाल, साथी कलाकार प्रेम कांत तिवारी, सुष्मित त्रिपाठी, अतिश श्रीवास्तव, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अलका चौधरी, सुनील शुक्ला, स्नेहल श्रीवास्तव और अभिषेक यादव। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव का और निर्देशक हैं अतिश श्रीवास्तव।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए रविनाथ मिश्र का ताल पंचम सवारी में तबला वादन।

रविनाथ मिश्र का अभी आप सुन रहे थे ताल पंचम सवारी में तबला वादन। अब लीजिए सुनिए इन्हीं का ताल झपताल में तबला वादन।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे ताल झपताल में रविनाथ मिश्र का तबला वादन। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब समाचार हमारी दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने

0: का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल,

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात

0: करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
1: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
0: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
1: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
0: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
1: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति

0: दे दी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए,

0: नहीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
1: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर। तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है। और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
0: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
1: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
0: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
1: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने

0: वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
1: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
0: जी,
1: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
0: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
1: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
0: जी।
1: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
1: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर

0: उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम 0 बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही 0 आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो 0 है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?

0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit. The private sector has a trust deficit. Nonprofits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं और हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें ये अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।